0: قال ہے
1: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه

उन लोगों की बहुत सी मशवरतें अच्छी नहीं, हाँ उस शख्स की मशवरत अच्छी हो सकती है जो खैरात या नेक बात या लोगों में सुलह करने को कहे, और जो ऐसे काम अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए करेगा तो हम उसको बड़ा सवाब देंगे।

0: और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो।
1: والأرض وضعها للأنام
0: और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: इनमें
0: दो चश्मे बह रहे हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और इन बागों के अलावा दो बाग और हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? दोनों खूब गहरे सब्ज़।

ए नबी, तुम्हारा परवरदिगार जो साहिबे जलालो करम है, उसका नाम बड़ा बाबरकत है।

0: सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, रबीउल अव्वल की 19 और सितंबर की 2 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने अक़्वाम मुत्तहिदा और शंघाई तआवुन तंजीम के मंशूर के रहनुमा उसूलों के तहत तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान का अज़्म ज़ाहिर किया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने डिजिटल असासों के एक ज़िम्मेदार और शफाफ निज़ाम की तश्कील की अहमियत पर ज़ोर दिया है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने निजी शोबे पर जोर दिया है कि वो चीन पाकिस्तान इक्तसादी रहदारी के दूसरे मरहले की माशी सलाहियत को बरूबे कार लाने में कायदाना किरदार अदा करे। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मस्नूई जहानत, डेटा गवर्नेंस और जदीद टेक्नोलॉजीज के शोबों में तआवुन मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया है। गजा पर इसराइली फजाई हमलों में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। रात दुबई में ख्वातीन के T20 एशिया क्रिकेट कप में पाकिस्तान ने थाईलैंड को 35 रन से हरा दिया। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़्वामे मुत्तहिदा के रहनुमा उसूलों और शंघाई तआवुन तंजीम के मंशूर की मुकम्मल पासदारी करते हुए बैन अल-अक़वामी कवानीन के तहत तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार किया है। किर्गिस्तान के शहर बश्कीक में SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रवां साल के आगाज में SCO के एक रुकन मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी के नतीजे में खित्ते में पैदा होने वाले बड़े बहरान के दौरान पाकिस्तान ने मजबूती से अमन की हिमायत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इन मुश्किल हालात में महज एक मुखलिस और दयानदार सालिस और सहूलतकार का किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शंघाई तआवुन तंजीम के रुकन ममालिक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तरक्की, आफात से निपटने और सेहत के शोबों को तरजीह देने पर जोर दिया है। वो बिश्केक में SCO+ सरबराही इजलास से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने पानी की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि पानी को कभी भी हथियार के तौर पर या सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुश्तरका पानी के वसाइल से मुतालिक माहदों पर मुकम्मल तौर पर और बगैर किसी शर्त के अमल दरामद होना चाहिए। कायम-ए-मुकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने पाकिस्तान का मुतवाजन, मुस्बत और तामीरी तशख्स उजागर करने में जिम्मेदार और पेशावर ज़राए अबलाग के अहम किरदार पर जोर दिया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पाकिस्तान ऑब्जर्वर के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ फैसल जाहिद मलिक से गुफ्तगू के दौरान किया, जिन्होंने इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पार्लिमानी सिफारतकारी और पाकिस्तान का मुस्बत तशख्स उजागर करने में ज़राए अबलाग के किरदार से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एक ज़िम्मेदार, शफाफ और मुनज़्ज़म डिजिटल असासों के निज़ाम की तश्कील की अहमियत पर जोर दिया है, जो मुनासिब हिफाजती इक़दामात बरकरार रखते हुए जिद्दत को फ़रोग़ दे। वो पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। मुलाकात में वर्चुअल असासों और डिजिटल फाइनेंस के निज़ाम में उभरते हुए मौके पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें मालियाती मंडियों में ब्लॉकचेन और टोकनाइजेशन टेक्नोलॉजीज के मुमकिन इस्तेमाल भी शामिल हैं। मुलाकात में डिजिटल असासों, स्टेबल कॉइन्स, ज़ाबितों की पाबंदी के निज़ाम और डिजिटल मालियाती ढांचे से मुतालिक बैन अल-अक़वामी तरीक़ाकार का भी जायजा लिया गया। मनसूबाबंदी के वज़ीर अहसन इकबाल ने निजी शोबे पर जोर दिया है कि वह चाइना पाकिस्तान इक्तसादी रहदारी के दूसरे मरहले की मुआशी सलाहियत को बरूबे कार लाने में कायदाना किरदार अदा करे। वह इस्लामाबाद में 2025 से 2029 के लिए CPAC एक्शन प्लान पर अमल दरामद की पेशरफ का जायजा लेने के लिए मुनक़िदा इजलास की सदारत कर रहे थे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि बरामदात में इजाफा कौमी हंगामी ज़रूरत है और 2035 तक $100 अरब की बरामदात का हदफ मुआशी बका के लिए ज़रूरी है। उन्होंने मुसाबकती सलाहियत बढ़ाने और मेड इन पाकिस्तान को आलमी सतह पर मारूफ ब्रांड बनाने के लिए हुकूमत और निजी शोबे के दरमियान मजबूत तआवुन पर जोर दिया। उन्होंने तमाम सियासी कुव्वतों पर जोर दिया कि वह मईशत को मजबूत बनाने के साथ साथ खुद इहसार और बरामदात पर मबनी पाकिस्तान की तामीर पर तवज्जो दें। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मसनूई जहानत, डेटा गवर्नेंस और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के शोबों में तआवुन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया है। ये इत्तफाक की राय वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन शजा फातमा खाजा और सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी के सदर अब्दुल्ला बिन शरफ अल गामदी के दरमियान रियाद में लीप 2026 कॉन्फ्रेंस के मौके पर होने वाली मुलाकात के दौरान हुआ। शजा फातमा ने सऊदी अथॉरिटी के सदर को कौमी मसनूई जहानत और डेटा गवर्नेंस के एजेंडे के फरोग के लिए पाकिस्तान के जारी इकदाम से आगाह किया। उन्होंने मजबूत डेटा निजाम तश्कील देने और मुल्क के डिजिटल मईशत को मजीद मजबूत बनाने के पाकिस्तान के आजम का इहादा किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए अवाम और नौजवानों की सतह पर रवाबित का फरोग जरूरी है। वो चीनी सिफारत खाने के नाज़िमुल उमूर शी जुआन चियांग की क्यादत में एक चीनी वफ से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। राना मशहूद अहमद खान ने तालीम, हुनर, रोजगार, टेक्नोलॉजी और नौजवानों के वफूद के तबादलों के शोबों में पाकिस्तान और चीन के दरमियान तआवुन मजीद बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने चीन में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम सेक्रेटेरिएट के क़याम को नौजवानों के शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए दराजाती रवाबित का अक्कास करार दिया। चीनी वफ ने पाकिस्तानी नौजवानों के लिए मौके बढ़ाने की गर्ज से डिजिटल यूथ हब के जरिए चीनी जामियात और कंपनियों में उनकी मजीद शमूलियत के इम्कान तलाश करने में दिलचस्पी का इजहार किया है। तेल और गैस के तरक्याती इदारे OGDCL ने पाकिस्तान में तेल और गैस के पुराने कुओं को दोबारा फाल करने और मकामी सतह पर हाइड्रोकार्बन की पैदावार बढ़ाने के लिए अमरीका की तवानाई की एक मरूफ टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ मुआहदा किया है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब इस्लामाबाद में हुई, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी पेट्रोलियम मिर्जा नसीरुद्दीन मशहूद अहमद और अमरीकी नाज़िमुल उमूर इंटेल नेटली ए बेकर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। कंपनी तेल और गैस के ऐसे मौजूदा ज़खायर से मजीद फायदा हासिल करने में तआवुन फ्राहम करेगी, जहां कुदरती पैदावार में कमी आ रही है। स्पेशल सेक्रेटरी पेट्रोलियम मिर्जा नसीरुद्दीन मशहूद अहमद ने कहा कि ये शराकतदारी तेल और गैस की मकामी पैदावार ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिशों में मदद देगी और पाकिस्तान में तवानाई के वसाइल की दस्तियाबी में अहम किरदार अदा करेगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटली बेकर ने मुआहदे को अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तवानाई के शोबे में शराकतदारी का एक अहम संगे मील करार दिया है। हुकूमत ने आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल किया है। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 370 रुपये 92 पैसे फी लीटर हो गई है। इसी तरह पेट्रोल की कीमत 1 रुपये 8 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 343 रुपये 87 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फजाई हमलों में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारहियत में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 73,456 हो गई है। नेपाल में हालिया तबाहकुन सैलाब के बायस इलाकों की तादाद बढ़कर 1,050 हो गई है। नेपाल के हंगामी इमदादी इदारे के मुताबिक कम अज कम 4,000 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनमें 500 से जायद गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। मारूफ शायर और अदीब अहमद राही की 24वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वो 1923 में बरतानवी हिंदुस्तान के शहर अमृतसर में पैदा हुए। दिलकश फिल्मी शायरी के लिए मशहूर अहमद राही ने 100 से ज्यादा फिल्मों के लिए गीत लिखे। पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म हीर राजा के गीतों से उन्हें कौमी सतह पर शोहरत मिली। उनके पंजाबी शायरी के मजमूए तरिंजन ने आदमजी अवार्ड हासिल किया। अहमद राही को फन और अदब के शोबे में खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। वो 2002 में आज के रोज लाहौर में इंतकाल कर गए थे। रात दुबई में खवातीन के T20 एशिया क्रिकेट कप में पाकिस्तान ने थाईलैंड को 35 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 20 ओवर्स में 119 रन बनाए, जवाब में थाईलैंड की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बना सकी। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा خطہ پوٹھار، اسلام آباد، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت، اسلام آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 29، کراچی اور پشاور 26، کوئٹہ 20، گلگت 19، مری 15 اور مظفرآباد میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ جموں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 36، لہ 9، پلوامہ اور بارہ مولہ 18، جبکہ شوپیاں میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

listening. FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

0: आज की दुनिया का दोस्त, मालूमात और तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back. Hit music. On your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

0: We'll be back after this short commercial break.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: 101 FM।
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, SMS वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
4: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

सनम ओ जिगर तुम कहो क्या ही खबर कैसे कटी ये रातें हैं कहते हैं सब मगर कोई

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं FM 101।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: Hey, we'll be back after this short commercial break.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर, तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदाम करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: 101 FM।
3: To that one love in your life.

वेल जनाब, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम मौजी सामीन, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक खुशबाश, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत ही मज़े में होंगे, बखैर वाफियत होंगे और बिल्कुल हमारे साथ साथ होंगे। वेल जनाब, हमें कहते हैं FM 101 चैनल वीडियो पाकिस्तान लाहौर, एंड यस दिस इज योर होस्ट, योर दोस्त, योर वेरी ओन आजे, योर वेरी ओन मुंडा इज इन द हाउस ऑफ FM 101 लाहौर। फिर से आप तमाम सुनने वालों को, तमाम चाहने, तमाम सराहने वालों को इस हस्ती मुस्कुराती चेहचेहाती लहलहाती सुबह में खुश आमदीद कहते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम सुनने वालों ने आज के दिन का आगाज भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार अंदाज के साथ किया होगा, और इस दुआ के साथ कि आपको आपका आज का सारे का सारा दिन बहुत ही अच्छा, खुशियों भरा, बखैर वाफियत वाला दिन देखना और गुजारना नसीब होगा। वेल 9:17 हुए चाहते हैं पाकिस्तान का मयारी वक्त, और मेरा आपके साथ रहने का भी बहुत सारी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, बहुत कुछ होगा सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, हंसने को, हंसाने को, बोलने को, बुलवाने को, महसूस करने और करवाने को, और सबसे बढ़ के सीखने को, सिखाने को। वेल तारीख की बात कर लें तो जनाब आज तारीख हो चली है सितंबर की, क्या 2 हो गई है, और जबकि 21वीं सदी का 26वां साल यानी कि 2026 जो कि है अपने इख्तिताम की जानिब रवादावा, और वो आजकल है ना मामलात, काफ़ी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे कि कैसे ही ये साल अभी आया था, अभी जाने भी लगा है। तो ऐसे ही इंसान भी आते हैं, लोग आते हैं, अच्छे भले वक्त अयाम दिन माहो साल अयाम आते हैं लेकिन चले जाते हैं, तो हमने भी चले जाना है लेकिन असल बात, अहम बात यह है कि हमने कुछ ना कुछ अच्छा करके जाना है। इस तरह से वेल बात कर लेते हैं, 6 सितंबर भी जो है वो इस बिल्कुल इस महीने में जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, योम दिफाए पाकिस्तान 6 सितंबर के हवाले से। सन 1965 में जो पाकिस्तान की अफवाज ने जो कुर्बानियां दी थी, जो कारहाए नुमाया सर अंजाम दिए थी, इस हवाले से भी हम बात करेंगे और बिल्कुल इस हवाले से सेलिब्रेट किया जाएगा। वेल हम आपसे बात करेंगे, आपसे कुछ सवालात करेंगे, आज के दिन के हवाले से कुछ अहम मौजूदात हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, उनको ज़ेर बहस लाया जाएगा, और वो मैं कहता हूँ ना कि मौजू तो सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद बात को आगे बढ़ाना है। सो आज जनाब कोकोनट के हवाले से, क्या कहते हैं, नारियल कहते हैं इसको, इसका आज आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। कभी कभी आपने वो आवाज़ सुननी है ना कि सुबह सुबह वो आते हैं, जैसे पापड़ों वाले आते हैं तो नारियल वाले भी आते हैं, सो उनकी एक मखसूस आवाज़ होती है, इस पर भी हम बात करेंगे, वो आवाज़ हम लगाएँगे भी। तो उसमें एक ख़ास बात ये की जाती है कि हाजमे के लिए काफ़ी मुफीद होती है, इसके बहुत सारे फ़वाद होते हैं। स्किन के हवाले से इसका जो ऑयल है, जो तेल है, वो तैयार किया जाता है, बालों पे लगाया जाता है, इसको पिया जाता है, खाया जाता है, और इसका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा पिया जाता है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। कल एक और दिन मनाया गया था जो लेटर्स होते हैं यानी कि खतूत जो होते हैं, इनकी अहमियत आज भी बाकी है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे, और आपसे हम पूछेंगे कभी आपने किसी को खत लिखा है या आपको किसी ने लिखा है तो क्या लिखा है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा टोटका हो सकता है, कोई ऐसा कह लीजिए कि शोशा हो सकता है कि कभी किसी ने आपके साथ शेयर किया है। तो ये तमाम तर बातें आपने करनी है हमारे साथ, और आज के दिन के मौसम के हवाले से हम बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप कॉल करना चाहते हैं सो नंबर आपको बता देंगे तमाम नए सुनने वालों को, लेकिन 10 बजे के बाद आपकी लाइव कॉल्स को भी इंटरटेन किया जाएगा। इसके अलावा कुछ मौजूदात हैं, कुछ ख़बरें हैं, सैलाब के हवाले से हम बात करेंगे, आजकल के जो मामला हैं, क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हमने इख्तियार करना है, और इसके अलावा एक और अहम टॉपिक, जब मैं स्टूडियोज़ में आया तो यहाँ पर हमारी डीओ मौजूद होती हैं सुमैरा भट्ट, इन्होंने हमें कहा कि आजकल एक बहुत अहम इशू जो है वो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि बच्चे जो हैं आजकल, मेरे साथ भी इत्तेफाक हो चुका है, मैं भी अपना एक वाकया, एक रुदाद आपके साथ शेयर करूँगा कि हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं बगैर उनकी जो एक्सपायरी डेट होती है उसको चेक किए बगैर, सो उसका नुकसान क्या होता है कि हमें बहुत सारे जो एक जो
فوری طور پہ آپ کو ابتدائی جو طبی امراض ہو سکتے ہیں ان کے خطرات آپ کو لاحق ہوتے ہیں, اور بہت سارے ایسے ایشوز کا صحت کے حوالے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. سو اس حوالے سے ہم نے احتیاط کرنی ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے, خصوصاً اگر وہ کھانے کی چیزیں ہیں, بچوں کو اگر ہم دلا کے دیتے ہیں تو ہم نے اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کر لینی ہے. سو اس حوالے سے ہم یہ بات کریں گے, اور ایک آگہی جو ہے ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. یہ باتیں سون چلتی رہیں گی. ابھی ہم بڑھتے ہیں ایک ٹریک کی جانب. عاطف اسلم کی آواز میں عاطف اسلم جو ہے نا آج کل چائے ہوئے ہیں, اور وہ ہمیشہ سے ہی چائے ہوئے تھے, لیکن آج کل جو ہے ان کی کافی بات ہو رہی ہے. ان کا میوزک دوبارہ سے ریوائیو ہوا ہے, اور کس طرح سے انہوں نے ایک نئے انداز کے ساتھ, نئے طریقے کے ساتھ, ایک نئے ساز کے ساتھ, نئے انداز کے ساتھ جو ہے نا کچھ گانوں کو کریٹ کیا ہے. ایک ایسا ہی گانا, ایک ایسا ہی ٹریک صبح آئے نا البم میں سے یہ گانا لیا گیا ہے, کہتے ہیں لیٹس ہیو سم فن. سو اس ٹریک کے اس بار آپ سے ملاقات ہوتی ہے. سو اسٹے ٹیون, اسٹک اراؤنڈ, اینڈ یس ڈونٹ گو اینی ویئر.

आपके चुनाव वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं फरमान वन चैनल रेडियो पाकिस्तान लाहौर और मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं। आपको क्या कहते हैं ये बताने के लिए तरीकाकार इंतहाई आसान। यू कैन रीच मी अपॉन FM 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज, जहाँ पर आने के बाद आप पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर मुझ तक अपनी रसाई को यकीनी बना सकते हैं और कह सकते हैं जो भी आप कहना चाहते हैं, सुन सकते हैं जो भी आप सुनना चाहते हैं। तो हम रखेंगे आपकी तमाम तर फरमाइशों का तहे दिल के साथ ख्याल और इनका खैर मकदम किया जाएगा। यही होता है ना। 8:27 past 9 AM 9:27 पे चाहते हैं और तकरीबन डेढ़ घंटे तक का मेरा आपके साथ ये साथ है। थोड़ी सी लुकनेत है, कुछ मामला थे, मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा। एक्चुअली मुझे पिछले दिनों टॉन्सिल्स हुए थे, यही कहते हैं जो कनुवे होते हैं। सो मुझे ये मामला थे, काफ़ी बोलने में दुश्वारी थी, बहुत सारे इशूज़ थे, बुखार था, ये सब मामला। लेकिन बात कुछ यूँ है कि रेडियो का एक ऐसा नशा है, चाहे वो सुनने का हो चाहे वो सुनाने का हो, ये माना जब तक आप पूरा नहीं करते हैं तो ये आपको सुकून नहीं आता, आपको चैन नहीं आता है। बातें चलती रहेंगी, बात कर लेते हैं आज के दिन के मौसम के हवाले से, क्या कहता है आज का मौसम और क्या हालात वाकयात हैं आज के मौसम के लाहौर और उसके मजाफात में। मौसम की जब भी बात की जाती है आपसे हमेशा ये लाजमन कहा जाता है कि असल मौसम जो होता है वो इंसान के अंदर का, उसके दिल का, उसके मन का, उसके अंदर का मौसम होता है। सो कोशिश ये किया कीजिए कि अपने दिल की, अपने अंदर की, अपने मन के मौसम को औसम रखा कीजिए, क्योंकि वो मैं कहता हूँ ना कि जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, क्योंकि मौसम तो इंसान के अंदर होता है। सो अंदर के मौसम का आपने ख्याल रखना है। बाहर के मौसम तो आजकल काफ़ी शिद्दत और हिद्दत वाले हैं, क्योंकि हब्स है और बारिश है कि तकरीबन दो हफ्तों से होने का नाम उस तरह से नहीं ले रही है जिस तरह से आजकल पिंडी इस्लामाबाद में है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी तक लाहौर में ये नौबत, ये सूरत हाल नहीं है। सो सैलाब की सी कैफियत है, ये मामलात हैं इस मुल्क में। सो अल्लाह से हमने रहम की और रहमत की बारिश की जो है वो अपील है, दुआ है, वो करनी है। सो वेल बारान रहमत की भी उम्मीद है कुछ आइंदा 3 से 4 दिनों में, और हल्की फुल्की बूंदाबांदी के इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन आज के दिन के हवाले से बात कर लीजिए, आज मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो है 32 और मिनिमम जो आज रिकॉर्ड किया जाएगा वो है 27। इसके साथ साथ बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं है। हवा में नमी का तनासुब आज भी तकरीबन 70% के करीब रहेगा, यानी कि ये जो नमी का और हब्स का एक मिला जुला सा रुझान है ना, ये हमें आज भी महसूस करने को, फेस करने को मिलेगा। इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि शाम के औकात में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आज ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने वाली है। तो इस मौसम की अच्छी बात, बुरी बातों के साथ एक अच्छी बात यह है कि रात को मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन हमारे अंदरों में यानी कि कमरों में जो फील लाइक टेम्परेचर होता है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। सो कोशिश किया कीजिए कि अपनी जो हवादार जो खिड़कियाँ होती हैं, जो पर्दे होते हैं, इनको आप हटा लिया कीजिए और कोशिश किया कीजिए कि खुद भी नहा लिया करें और बच्चों वगैरह को भी नहला लिया करें। मौसम भी बहाना होता है, वो उनसे ऐसे नहाने नहीं आ। मैं अपनी बात करूं, आप तो नहाते होंगे, वैसे मैं आज नहा के आया हूं। सो ये मामला थे, ये बातें हैं, ये चीज़ें हैं, लेकिन हमने इनका ख्याल करना है। जोक्स अपार्ट ये बातें की जा रही हैं, लेकिन इस मौसम में नहाने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कोल्ड शावर लेते हैं ना, तो आपके जो पोर्स होते हैं, जो आपके मसाम होते हैं, ये थोड़े से इनकी जो अलाइनमेंट है वो अच्छी हो जाती है और आपकी स्किन स्मूथ होती है, आप थोड़े गोरे गोरे दिखते हैं। सो कोशिश किया कीजिए कि आप नहा लें, इसके साथ साथ ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कीजिए, नमकियात का इस्तेमाल कीजिए। बूढ़ों को और बच्चों को आपने खसूसी तौर पे जो है ना, वो बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलने देना है। और इसके अलावा बारिश होती है, नमी होती है, दीवारों को करंट वाले जो मुकामात हैं, जो बिजली के बोर्ड्स हैं, बिजली की तनसीबात है, खंबे हैं, तारे हैं, इनको ना तो आपने हाथ लगाना है ना ही बच्चों को लगाने देना है। मेरे वालिद साहब कहते थे कि परंपरा रहो नहीं तो बादो हंसरे होवोगे। तो वो जब हम हाथ लगाते थे बाद में हमें पता चलता था कि हंसना क्या होता है। तो बातें चलती रहेंगी, अभी हम आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं एक और ट्रैक। सो अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना या सुनाना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। तरीका इंतहा आसान, FM 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज। अभी अगर आप ऑफर कॉल करना चाहते हैं तो हम चलें आप पे मेहरबानी करते हैं, हम ले लेंगे। अभी आफिया खान मौजूद थी, आई एम नॉट रॉन्ग, अपने भाई के हवाले से दुआ की अपील की थी, असदुल्ला के नाम से जाने जाते हैं और शदीद बीमार हैं। सो हम ये दुआ करेंगे कि
رکھے پروردگار، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ تمام سماعتوں سے بھی اپیل ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کھینچیے گا۔ سو ابھی آگے بڑھتے ہیں، ٹریک شامل کرنا چاہوں گا سفر بائے نن ادر دین بیان، اور آواز ہے جناب اسفر حسین کی۔ ٹریک اس پر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، سو اسٹے ٹیون، سٹک اراؤنڈ، اینڈ یس ڈونٹ گو اینی ویئر۔

सनम ओ जिगर, तुम कहो क्या ही खबर, कैसे कटी ये रातें हैं, कहते हैं सब मगर।

जी मैं भागा भागा करके इरादा आया हूँ मिलो करके इरादा और खेचना। वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। और वेल 9:38 बजे आते हैं मेरा आपके साथ ये साथ कुछ ही लम्हा तक के लिए बाकी। ओके एक मिनट

ओके जनाब, 9:39 बजे आते हैं और मेरा आपके साथ ये 7:11 तक के लिए। अभी हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद थे। मौजू के हवाले से भी बात करेंगे, स्पेशली इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि जो एक्सपायरी जो अशिया होती हैं, चाहे वो खाने पीने के हवाले से हों या किसी भी तरह के इस्तेमाल के हवाले से हों, इनके बारे में हमने अपने आप को आगाह रखना है, अलर्ट रखना है। और इसके साथ साथ कुछ अहम मज़ीद मौजूद हैं, इन पर हम बात करेंगे। कुछ आपके पैगाम हैं, कुछ आपके मैसेजेस और कमेंट्स भी मौजूद हैं, इनको भी शो का हिस्सा बनाया जाएगा। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, यू आर मोर देन अ वेलकम। तरीका इंतहाई आसान। हम बात कर रहे थे आज जनाब, कुछ ऐसे मामला होते हैं, कुछ ऐसे मौजूद होते हैं जिनके लिए कुछ दिन मुतय्यन किए जाते हैं। आज भी एक ऐसा ही दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। एक छोटा सा पल है लेकिन बहुत ही खासियत का, अहमियत का हामिल है। जनाब, नारियल की बात की जा रही है और आज इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसकी अहमियत के हवाले से, इसके इस्तेमाल के हवाले से बात की जा रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको स्पेसिफाइड किया जाता है कुछ अयाम के साथ, कुछ दिनों के साथ, उनको डेडिकेट करने के लिए, उनकी इम्पोर्टेंस को तमाम तर अवामुन नास में उजागर करने के लिए, उन पर बात करने के लिए। नारियल, बहुत सारे ऐसे मामला, बहुत सारे ऐसे फल होते हैं, बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनकी क्या अहमियत है, क्या इस्तेमाल है, क्या फ़वाद हैं और क्या क्या खसूसियात हैं, जब इनके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या इनके बारे में हमें जानने का मौका मिलता है, तो तब हमें अंदाज़ा होता है कि ये कितनी बड़ी नेमतें हैं, कितनी बड़ी खासियतें इन तमाम तो चीज़ों में मौजूद हैं। मैं बात कर रहा था आजकल, बल्कि किसी भी आप चौक में चले जाते हैं, गलियों मोहल्लों में, जिस तरह से पापड़ों वाले आते हैं, पतीसों वाले आते हैं, वो क्या एक आवाज़ लगाते हैं ना कि हाजमेदार नारियल थे, मीठे मीठे नारियल थे, आप भी खाओ थे, बच्चियाँ भी ले के दियो। ये मामला थे, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि हमने ऐसी चीज़ों को ऐसे ही ठेले वालों से या जो एक ओपन एयर में इस्तेमाल की जाती हैं, बेची जाती हैं खाने पीने की अशिया, हमने इनको नहीं ख़रीदना। और अगर ख़रीदना भी है तो अच्छे से हमने इनको ख़ुद साफ़ करके और जरासीम से पाक करके इस्तेमाल करना है, अपने बच्चों को भी खिलाना है। नारियल के इस्तेमाल के वाले से हम बात कर रहे थे कि इसका जो ऑयल है वो बनाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, बालों के लिए इंतहाई मुफीद होता है। आपके स्किन की जो डिज़ीज़ होती हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, इनकी इनको ठीक करने के हवाले से काफ़ी इसका इस्तेमाल जो है वो कार आमद जाना जाता है। इसके अलावा हाजमे के लिए काफ़ी जो है वो कार आमद समझा जाता है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। नारियल का जो तेल है, जैतून के तेल की तरह पिया भी जाता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फ़वाद हैं। हमें याद है कि बचपन में हम कुछ ऐसे कैंडीज़ खाते थे, बहुत सारी ऐसी चॉकलेट्स होती थी, बहुत सारी ऐसी स्वीट्स होती थी, और कुछ आपको पता है कि कभी आपने बिल्कुल ऑब्वियसली खाए होंगे, गुलाब जामुन नहीं, रसगुल्ले कहते हैं, रसगुल्ले के ऊपर लगे होते हैं और जब मुँह में आते हैं रसगुल्ला ख़त्म हो जाता है, लेकिन बाद में वो जो आपके दांतों में एक क्या कहते हैं कि एक टेस्ट आता है, और वो कहते हैं ना कि चीज़ ख़त्म हो गई है लेकिन वो चस अभी जारी है। कुछ ऐसा ही मामला होता है। ये तमाम तो चीज़ें हैं, इस हवाले से हम बातें सोन करते रहेंगे और कुछ मज़ीद मौजूद हैं। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आपकी राय को भी हम शामिल करेंगे। एफ एम 101 लाहौर का फेसबुक फ़ैन पेज, यहाँ पर आने के बाद आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। कुछ ही देर के बाद आपके जो कमेंट्स हैं वो शामिल किए जाएंगे, लेकिन साथ साथ जो म्यूज़िक का तड़का है वो भी हम सोन शो का हिस्सा बनाते रहेंगे। 9:42 पर चाहते हैं और थोड़ा सा देसी माहौल बनाते हैं। आवाज़ शामिल करना चाहूँगा जनाब अली अब्बास लूनेवाला की, और इनके जो गाने हैं, इनका जो म्यूज़िक है, क्या ही बातें हैं। एक ऐसा ही ट्रैक, बल्कि मैं एक और गाना इनका आज मैंने निकाल के रखा है, अखियां के नाम से ट्रैक है। इसमें आँखों की तारीफ़ की जा रही है, महबूब की आँखों में क्या होता है, और जब आप किसी पहर में, किसी लम्हे में, स्पेशली अगर आप सुबह की इस पहर में अपने महबूब की आँखों का दीदार करते हैं, उसको देख के उठते हैं, तो आपको क्या महसूस हो सकता है। इस गाने में ये तमाम तर बातें की जा रही हैं। मिलते हैं इस ट्रैक इस पार, आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। में कहते हैं वन चैनल वीडियो पाकिस्तान लाहौर, मुझे मुस्तफा कहते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड एंड यस, डोंट गो एनीवेयर।

ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद कहते हैं शो कॉल्ड सिटी वाइब्स, और मुझे मुस्तफा कहते हैं। 9:50 हुए चाहते हैं, तकरीबन एक घंटे तक के लिए मेरा आपके साथ ये साथ बाकी है। बात कर लेते हैं मजीद मौजूदात के हवाले से। जनाब हंसना बिल्कुल बहुत अच्छी बात होती है, हम सब हंसते हैं, और हंसना सेहत के लिए, आपके मिजाज के लिए, चाहे वो आपकी ज़हनी सेहत है, चाहे वो आपकी जिस्मानी सेहत है, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये साइंस कहती है, मेडिकल साइंस कहती है, नफ्सियात की जो साइंस है ये कहती है कि ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही कार आमद होता है। लेकिन हम हंसते हैं बहुत सारे ऐसे मामलात के ऊपर, बहुत सारे ऐसे जोक्स हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हो सकते हैं या किसी इंसान के ऊपर हम हंस सकते हैं। लेकिन आज हम जिस हंसने के हवाले से बात करेंगे, अपने आप पर हंसना, या मामलात के ऊपर बहुत सारे ऐसे जोक्स हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हो सकते हैं या किसी इंसान के ऊपर हम हंस सकते हैं, लेकिन

हंसी आई है और किस बात पर हंसी आई है आपने शेयर करनी है। वेल जनाब, इस हवाले से मुझे कुछ ऐसे फरमोदात याद आते हैं ब्रूस ली के हवाले से। एक अजीमुशान फाइटर होते थे और मैं इनसे बचपन में बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। मैंने अपनी जो किक्स थी, मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने तकरीबन 7 से 8 साल कराटे शोतोकान जो है वो मैंने की है और तकरीबन मैंने ब्लू बेल्ट जो थी वो मैंने पास कर ली हुई थी। उसके बाद मार बहुत ज़्यादा पड़ी थी, आई मीन रोज़ ज़ख्मी हो जाता था, मैं भाग गया था वहाँ से। वेल, ये बातें चलती रहेंगी लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि ब्रूस ली कहते थे कि कभी भी अपने बारे में मजाक में भी अपने बारे में कुछ गलत मत कहिए, क्योंकि हमारी जो शख्सियत होती है, हमारा जो कह लीजिए कि जो एक सोचने समझने का एक क्या कहते हैं कि एक जो तनाजुर होता है ना, वो इस तरह से बदल जाता है कि हम अपने बारे में कुछ नेगेटिव भी अगर कहते हैं ना तो हम उस पर अमल करने लगते हैं। हम नहीं भी कहते, हमारी नफ्सियात कहीं ना कहीं वो अल्फाज, वो जज्बात, वो तमाम तर मामलात अपने अंदर बिठा लेते हैं और उनके ऊपर जो है ना लाशौरी तौर पर एक्ट करने लगते हैं। सो हम बात करेंगे कि क्या खुद पर हंसना जो है वो सेहत के लिए अच्छा होता है, आपकी चाहे वो जिस्मानी सेहत है चाहे वो आपकी नफ्सियाती सेहत, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। और जनाब, इस हवाले से आपने नोटिस किया होगा, गौर किया होगा कि कभी कभी ना अपनी किसी गलती पर खुद ही हमें बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है, अपनी किसी भूल को हम मजाक में उड़ा देते हैं या दोस्तों के सामने अपनी किसी भी ऐसी कोई वीकनेस हो सकती है, कोई कमज़ोरी हो सकती है, जब वो एक्सपोज होती है तो हम कहीं ना कहीं हंस के जो है बात को एक ऑन अ लाइटर नोट, लाइटर वे में हम क्या करते हैं, इग्नोर करवा देते हैं ताकि उसका ज़्यादा बतंगर ना बने। हमारी जो शख्सियत है, हमारी जो ज़ात है, उसको ज़्यादातर मौजू का एक सीरियस वे में जो हिस्सा है वो ना बनाया जाए। सो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हल्के फुल्के अंदाज में ना अपनी किसी कमज़ोरी को, अपनी किसी गलती को इस अंदाज में एक फन वे में ढाल के हम क्या करते हैं कि हम उसको इग्नोर करवा देते हैं और कर भी लेते हैं। लेकिन माहिरीन क्या कहते हैं, माहिरीन के मुताबिक खुद पर हंसने की सलाहियत हमारी ज़हनी सेहत, ताल्लुकात और मजमू खुशहाली जो होती है ना, जो हमारी कलेक्टिव हैप्पीनेस होती है, इस पर असर डाल सकती है। तो इस हवाले से एक तहकीक है और तहकीक का हवाला भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, लेकिन तहकीक जो है वो ये कहती है, इस तहकीक से हमें ये मालूम होता है कि ज़िंदगी को ना हल्के फुल्के और मज़ाहिया अंदाज में एक क्या कहते हैं कि एक फ़न वे में लेने से क्या होता है कि अमूमी तौर पर बहुत सारे फ़वाद होते हैं, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में अखज़ कर लेते हैं। ताहम ख़ुद अपना मजाक उड़ाने के मामले में माहिरीन क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अपना मजाक उड़ाने के मामले में तवील अरसे से मुख्तलिफ आरा जो हैं वो पाई जाती हैं। सो इस हवाले से मुहक्किकीन जो हैं वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ख़ुद पर हंसने का कौन सा अंदाज़ फ़ायदेमंद है, कब ये नुकसानदेह हो सकता है और इंसान अपने अंदर ज़िंदगी को ज़्यादा हल्के फुल्के अंदाज में लेने की सलाहियत कैसे पैदा कर सकता है। सो इस हवाले से एक क्या कहते हैं, एक रिसर्च की गई थी, एक जायज़ा लिया गया था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, तकरीबन ये 1990 की बात है कि जब ये मामला सर अंजाम दिया गया था कि 1990 की दहाई में माहिरीन नफ्सियात ने यह जानने की कोशिश की थी कि बाज़ जो बच्चे होते हैं, जो छोटे चिल्ड्रंस होते हैं, वो अपने हम जमात, जो उनके क्लास फेलोज़ होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मकबूल या बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनमें अपनी जगह नहीं बना पाते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत इंट्रोवर्ट था और मेरी ऐसी किसी से बनती नहीं थी, लेकिन जब हम बड़े हुए तो हम भी अच्छा खासा एक रीज रखते थे, हर किसी को अपने आसपास जो था जमगट्टा बनाए रखते थे। सो छोटे बच्चों की बात की जा रही है कि हम जमातों में वो ज़्यादा फेमस क्यों नहीं हो पाते, ज़्यादा अपनी जगह नहीं बना पाते और इन्हें समाजी तौर पर अलग थलग क्यों कद भी दिया जाता है और उनको रखना भी पड़ता है अपने आप को। सो तहकीक में ऐसे बच्चों की दो जो टाइप्स थी, जो नुमाया अकसाम थी, इनको सामने लाया गया था और इसमें देखा गया था कि कुछ बच्चे जो थे बहुत गुस्से वाले थे, बहुत ज़्यादा जारहाना थे, बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद भी थे, वॉयलेंट थे, जबकि दूसरे इंतहाई खामोश और दोस्तों के सामने दब जाने वाले, बहुत ही घुटे घुटे रहने वाले बच्चे थे। अब आपने ये बात गौर से समझनी है कि ये रिसर्च, ये तहकीक, ये एक्सपेरिमेंट आपके साथ क्यों शेयर किया जा रहा है। और जब हम अपनी ज़ात को एक फ़न वे में लेते हैं, आपने कभी देखा है, नोटिस किया है कि ज़िंदगी में, बल्कि आपके आसपास भी अगर आप देखें, कोई
बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है या बहुत ही कामयाब इंसान है, वाकई में कामयाब इंसान की बात की जा रही है, वो एक फन वे में, एक लर्निंग वे में, वो क्या कहते हैं कि चाइल्ड लाइक जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जो तजस्सुस होता है, उसके साथ आपको नज़र आता है, हंसता

0: वाइब्स कर रहा था आपको मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं बहुत ही घुटे घुटे रहते हैं, एक अजीब सी जो थ्योरी होती है वो अपने मुंह पे चढ़ाई होती है। और मैंने ये भी पढ़ा था कि बहुत सारे जो लोग होते हैं ना जो खामखा के इनसिक्योर होते हैं, बहुत ज़्यादा घुटे घुटे होते हैं और खामखा के मैनिपुलेटिव होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते हैं। इसी वजह से अपने आसपास के लोगों को लेकर इनसिक्योर होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं। लेकिन जो लोग वाकई में कामयाब होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में भी पुरसकून होते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी सुकून की जो कैफियत है ना वो फराहम करते हैं। सो इस हवाले से ये तहकीक ये कहती है कि इसमें दो तरह के बच्चों की नुमाया एग्जाम सामने आई थी, कुछ बच्चे बहुत गुस्से वाले थे और कुछ बच्चे बहुत ही खामोश और बहुत ही दब जाने वाले बच्चे थे। अब दोनों गरोहों में एक बात बहुत मुश्तरक थी, वो बात ये थी कि वो मजाक बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। सो आपने भी नोटिस किया होगा और हम सब में कहीं ना कहीं वो मादा होता है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो मजाक है, कोई ऐसी बात है, हम कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि नहीं ये बात नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम ट्रिगर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ ऐसे PTSDs होते हैं, कुछ ऐसे ट्रॉमास होते हैं, उनसे जुड़े कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हमें ऐसे मामलात का, ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है। वेल, इस बात से कतई नज़र दोनों ग्रोहों में एक बात जैसा कि मैंने बताया कि वो मुश्तरक थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। सो पहली ग्रोह के बच्चे जो थे वो छेड़ने पर गुस्से का, बहुत ही ज़्यादा तशद्दुद का इजहार करते, जबकि दूसरे ग्रोह के जो बच्चे थे दिल बर्दाश्त होकर, बहुत ज़्यादा मायूस होकर, बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि डिसहार्ट होकर ख़ुद को दूसरों से दूर कर लेते थे, अपने आप को तन्हा कर लेते थे, आइसोलेट कर लेते थे। वो किसी मजाहिया बात को भी तोहीन समझने लगे थे और ये मानने के लिए तैयार नहीं होते थे कि मजाक करने वाले की नीयत जो है वो बुरी नहीं हो सकती, वो अच्छी भी हो सकती है। सो इसके बरक्स समाजी तौर पर ज़्यादा पुरेतमाद जो बच्चे थे ना, दो तरह के बच्चों की टाइप्स आपके सामने शेयर रखी है कि आपके साथ शेयर की है कि जो दूसरी तरह के बच्चे थे उनकी समाजी तौर पर ज़्यादा पुरेतमाद बच्चे थे, दूसरों की छेड़छाड़ को नज़रअंदाज भी कर देते थे और ख़ुद भी इससे महसूस होते थे, बल्कि जवाब में वो भी मजाक कर देते थे। यानी इंसान को मजाक बर्दाश्त करने और ख़ुद पर हंस सकने का अंदाज जो है ना वो कहीं ना कहीं बचपन ही से उसके समाजी जो ताल्लुकात होते हैं, जो उसके रिलेशंस होते हैं, जो दोस्तियां होती हैं, उस पर असर पड़ते हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे और अभी न्यूज़ ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, शामिल करना चाहेंगे ख़बरों का वक्फा, वेल आपको ज्वाइन करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।
1: Coming up next, 101 News Headlines.

0: We'll be back after this short commercial break.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर, तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: 101 FM

0: ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। मुझे आज ये मुस्तफ़ा कहते हैं, शो कॉल्ड सिटी वाइब्स, और आपको क्या कहते हैं ये बताने के लिए तरीकाकार आपको बताया जा चुका है एफ एम 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज। इसके अलावा 04 2111 000 101 रबते का नंबर है। सो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं और मुझ तक अपने रसाई को यकीनी बना सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, बोर्दी जट साहब, लेकिन इनसे हम बात करेंगे। बल्कि एक और यहाँ पर शख्सियत मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, और बहुत सारी शख्सियात मौजूद हैं मेरे आसपास। बहुत अच्छी वाइब है आज की जो स्टूडियोज़ की है। वेल, हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम सलाम सर, मुस्तफा साहब की हाल है? ठीक हो सर?
0: सर अल्लाह का शुक्र है, तुसी सुनाओ, खैरियत नाल हो, ठीक ठाक हो?
1: हाँ जी सर, जबरदस्त सर, थोड़ी आवाज सुनी है, सालू नशा हो गया, सुकून इना को हो गया, तेरे दस नहीं सकते बहुत।
0: अच्छा अच्छा, नशा हो गया, चलो मैं क्या पता नहीं की हो गया। सर की कहना चाहोगे?
1: अच्छी सर, यही कहना चाहवागे कि तुसी सदा सलामत रहो, तो थोड़ी पूरी टीम
0: रात नू चलान आला ना, कोई गाना सोना जा गाना दस दियो। कलाम में जुम्मे नू चला दे, दोबारा दसना। अच्छा, नजरे करम, चलो ठीक है सर, मैं कोशिश कर रहा। सही है सर, बड़ी मेहरबानी, तुसी बड़ी देर ना मेरे नाल मौजूद, मैं तमाम सुन दसना चाहवांगा, बड़ा सबर है ताडा। चलो अपना ख्याल रखना, मैं समझा
1: कि सर कोई गल नहीं सर, गल हो गई, समझ लो यकीन, बॉस
0: ठीक है सर, ठीक है आवांगे। ओके जनाब, 10:06 बजाते हैं और आपके साथ गुफ्तगू शुनीद का सिलसिला भी जो है वो चल रहा है। इसके साथ साथ हम अपने मौजूदात के वाले से बात कर रहे थे, हम बच्चों की बात कर रहे थे, और बच्चों की नफ्सियात स्पेशली जब वो अपनी छोटी उम्र में होते हैं तो मज़ाक को बर्दाश्त करना, स्पेशली जो मौजू था वो मौजू ये था कि ख़ुद पर हंसना जो है वो किस तरह से आपकी तबीयत, आपके मिजाज पर असरानंदाज हो सकता है। तो कभी कभी खुद पे हंस लेना अच्छी बात होती है, लेकिन अपने बारे में जो मनफी राय है इसको कायम कर लेना, किसी के साथ शेयर कर लेना, और इस वे में शेयर करना कि उस पर यकीन कर लेना, ये किस तरह से आपको जो है अपनी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आपको पीछे धकेल सकती है। सो इस पे हम बात कर रहे थे, और एक एक्सपेरिमेंट था, एक मिसाल थी, वो आपके साथ शेयर की जा रही थी। यहाँ पे स्टूडियोज़ में मोहतरम काशिफ कुरैशी साहब मौजूद हैं, मेरे सीनियर हैं, और मुझे याद पड़ता है कि 2019 में जब मैं यहाँ पर एफएम 101 में ख्वाब लेकर आया था आरजे बनने का, यहाँ पर बोलने का, बल्कि यहाँ पर मैं सुनने ज़्यादा आता था कि ये जो आरजे होते हैं ये कहाँ पे बैठ के बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस तरह का सेटअप होता है, और मेरे लिए बहुत मैजिकल होता था वो तमाम तर जो मंज़र होता था। सो यहाँ पर काशिफ कुरैशी साहब होते थे, और मुझे तब शौक चढ़ा था ऐसी ना ऑडिशन देने का। सो इन्होंने मुझे यहाँ पर काफ़ी मोटिवेट किया था, और बहुत सारे ऐसे मामला थे। मुझे ये लगता है कि आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे इंसान होते हैं कि वो एक ना फरिश्ता बनकर आते हैं, एक ऐसा मोटिव बनकर आते हैं कि आप अपनी मंजिल, अपने पड़ाव पर कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं जहाँ पर आपको पहुँचना मकसूद होता है। सो वो एक ऐसा आसरा, एक ऐसा सहारा बनते हैं, एक ऐसी मोटिवेशन बनते हैं कि आपको लगता है कि सब आसान है, उससे पहले आपको लग रहा होता है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। सो ये भी एक ऐसी ही शख्सियत है, यहाँ पर इस्लामिक प्रोग्राम्स करते थे। सो थैंक यू सो मच सर, स्टूडियो से उस पार मौजूद हैं। सो ये बातें चलती रहेंगी, एक और कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम अपने मौजू पर आएँगे। अस्सलाम वालेकुम। ओके वेल, 04 2111 000 101 रबते का नंबर है, और एक और कॉलर को हम शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से?
2: मैं बिस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से।
0: बिस्मा बात कर रही हैं लाहौर से जी, बिस्मा क्या कहना चाहेंगी?
2: मैं ये कहना चाहूंगी कि स्माइल के बारे में, कि स्माइल करनी चाहिए, खुद पे हंसना चाहिए, और मैं तो हंसती रहती हूँ, और कई ऐसे मौके आए हैं जहाँ मैं, जैसे कि ना अभी कल मेरी मम्मा मुझे डांट रही थी, छोटे भाई बहन भाइयों के सामने मुझे डांट पड़ रही थी, तो मुझे शर्म भी आ रही थी कि यार सबके सामने मुझे इतनी मेरी इंसल्ट की जा रही है। उसके बाद जब वो थक गई, चुप जब हो गई, वो सब कुछ अपना गुस्सा निकाल के, उसके बाद मेरा छोटा भाई मेरी तरफ देखे ऐसे, जब मैंने उसकी तरफ देखा ना, तो मैंने जब मैं हंसी ना, मैंने स्माइल पास की, तो एकदम से ना जो प्रेशर था ना मेरे पे आया हुआ था, मुझे गुस्सा आया हुआ था, वो एकदम से मैं रिलैक्स हो गई। मैंने कहा है, मुझे इतनी शर्म से आ रही थी कि देखो बंदा ये साइड पे हो जाए, आगे पीछे हो जाए, बंदा तब कह देता है, सबके सामने ही मेरी कर दी है। तो इंसान को हंसना चाहिए, और इसी इंसान बड़ा रिलैक्स रहता है, खुद पे हंसना भी चाहिए। इस तरह एक ना वो मेरे पास इंसाइक्लोपीडिया का वो ना अकबाली ज़री का इंसाइक्लोपीडिया पढ़ा, वो उसने सुकरात ने बोला हुआ कि कभी कभी मैं बहुत ज्यादा मुझे अफसोस होता है या दुख होता है, गम होता है, तो मैं खुद पे हंसता हूँ, उससे मैं बहुत रिलैक्स हो जाता हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी थेरापी है, स्माइल करनी चाहिए खुद पे। तो बाकी आपका शो बहुत अच्छा है, मैं सुन रही हूँ, और
0: ये गाना लगा दी, कौन सा गाना,
2: एक गाना लगा दे आसिम अजहर का होगा आई थिंक, वो वाला यहाँ से स्टार्ट होता है, चांद कहता है और तारे भी सोचे,
0: अच्छा,
2: तू मेरी जान सोनी है,
0: तेरे पे मतलब वो बार दूं सब कुछ, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है,
2: ओके,
0: अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, अभी बिस्मा ने गालिबन सकरात की बात की थी, मुझे अभी वो याद आया कि कदीम यूनानी फ़लसफ़ी अफलातून जो हैं, इनके बारे में बात कहा जाता है, बल्कि इनका एक ख़्याल था, इस हवाले से हम बात करते हैं, आपको आसान अल्फाज में समझाने की बात करने की, उसके बाद एक और कॉलर को शामिल करेंगे। कदीम यूनानी फ़लसफ़ी अफलातून का ख़याल था कि मज़ा जो है बुनियादी तौर पर दूसरों से ख़ुद को बदतर समझने के एहसास से पैदा होता है। ये दोबारा समाज फरमाइएगा कि एक होता है ना सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ख़ुद को बेहतर समझना। अफलातून ये कहते हैं, हो सकता है आपको इख्तलाफ हो इस बात से, लेकिन इस बात की गहराई को समझना है कि मिजाज बुनियादी तौर पर दूसरों से ख़ुद को बरतर समझने के एहसास से पैदा होता है, ख़ुसूसन ऐसे लोगों के बारे में जो अपनी खूबसूरती या जहानत के बारे में हकीकत से ज़्यादा बुलंद राय रखते हैं। इन्होंने काफ़ी एक तल्ख बात कही है कि जिन लोगों में सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, अपने आप को ज़्यादा बदतर दूसरों से जानते हैं, ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, वही लोग जो हैं ना, वो कहीं ना कहीं मज़ाक का जो एलिमेंट है, जो एक कह लीजिए कि बहाना जो है, वो निकाल लेते हैं, बना लेते हैं। और देखा जाता है कि हमेशा मज़ाक जो है, जो मज़ाक है, जो फ़न है, वो उन्हीं लोगों से हो पाता है जिनमें इतनी ऑडेसिटी होती है कि वो अपने आप को कुछ समझते हैं। कभी कभी अपने आप को कुछ ज़्यादा समझ लेना जो है ना, वो अपने आप पर ख़ुद को हंसाने का भी एक सबब बन सकता है, और लोग भी आप पर हंसते हैं। ये मामला एक ऐसा ही वाकया बिस्मा ने भी शेयर किया, आप ये बता सकते हैं कि कभी आप ख़ुद पर हंसें, और वो क्या बात है, वो क्या वजह है। वेल कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम। ले
0: जी भाईजान, कौन गल कर रहे हो
3: जी?
0: हाँ जी, दसो अपना ना, दसो कौन गल कर रहे हो कितों?
3: लियाकत, लियाकत सन्ना बात।
0: लियाकत साहब, लियाकत साहब की हाल चाल ने, ठीक ठाक हो?
3: जबरदस्त।
0: अरे क्या बात है,
3: प्रोग्राम ही माशाल्लाह तो जबरदस्त चल रहा है, और बाबा अरसे के बाद ही मैं 101 से दोबारा एंटर हुआ हूँ।
0: अरे क्या बात है,
3: बात सुनिए तो अच्छा लगा।
0: अच्छा,
3: तो बात कर रहे हैं ज्यादा तो बेहतर है, ठीक है ना?
0: थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा
3: जी। जी
0: थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ काफी कम आ रही है।
3: मैं कह रहा हूँ खुद पे हंसना चाहिए,
0: ठीक है,
3: दूसरों पे ना हंसे।
0: हाँ,
3: वो फिर मसला गड़बड़ हो
0: जाए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है।
3: बस वैसे मुस्कुराना, हंसना और खुल के बात करनी चाहिए।
0: अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही,
3: यही है जिंदगी,
0: बिल्कुल ऐसे, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। इसमें कोई दोष ठीक हो गया सर, और कुछ कहना है? अरे सर आप भी खुश रहें, सलामत
3: रहें। माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम और आपको सुनते हैं, ठीक है, और ब्रेक लगी हुई थी 3-4 महीने से ना, 3-4 माह से।
0: अच्छा,
3: सुन ही नहीं रहा था और किसी से बात भी नहीं,
0: ठीक हो गया सर।
3: आपसे बात हुई, अच्छा लगा।
0: अरे सर बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।
3: ख्याल
0: ओके सर।

0: जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम भाईयान, की हाल है जी को?
0: सर मैं ठीक हां, तुसा सुनाओ ठीक ठाक हो?
1: हां जी बखैर अहमद ने मुकाला चन्नी अंदर से गल कर रहे हैं भाईजान।
0: अच्छा सर ठीक ठाक हो, खैरियत नाल हो?
1: अल्लाह शुक्र तेरा नाम जो मैं भूल गया से बाकी तेरा नाम मैं सुन रहा हूं।
0: मैं मेरा नाम ज्ञान छु मैं
1: शुक्र
0: है। ठीक है अपना ख्याल रखना।
2: जनाब 10:15 बजे जाते हैं और एक ट्रैक शामिल करना चाहूंगा आसी मजर की आवाज में, कहते हैं जिन माही, और ये ट्रैक में डेडिकेट करना चाहूंगा बोधी जेट को, सलीम दर्जी और जिन जिन का नाम लिया गया था। बिस्मा ने फरमाइश की थी और इफ आई एम नॉट रॉन्ग होपफुली ये गाना वही होगा जिनके बारे में बात की, जिस गाने के बारे में बात की जा रही थी। इस ट्रैक को मिलकर सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, वापस आते हैं। इस ट्रैक उस पार आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ मौजूद रहेगा। मैं कहते हैं फरमान वन चैनल वीडियो पाकिस्तान लाहौर, मुझे मुस्तफा कहते हैं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड एंड यस डोंट गो एनीवेयर।

0: वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हैं। 10:19 पर चाहते हैं आपके साथ गुफ्तगू शनीद का बातों का सिलसिला जारी है। कुछ ही देर के बाद आपके जो ऑनलाइन पैगाम हैं, जो पोस्ट पर कमेंट्स मौजूद हैं, इनको शामिल किया जाएगा और मैं देखूंगा अगर कोई काम की बात होगी तो हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। वेल, हमारे साथ अभी फरी मौजूद थी, मोहतरमा फरी बहुत ही प्यार मोहब्बत वाली हमारी लिसनर है। सो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं। ज़िया अंजुम भाई की सेहत के हवाले से बात हो रही थी। आप तमाम समातों से इल्तमास है कि उनकी सेहत के हवाले से दुआ कीजिएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा उनका हाजमे का थोड़ा मसला है, कुछ खा पी लेती हैं ना ऐसा वैसा। सो ये मामला है। वेल, 10:20 हुए चाहते हैं और हम बात करें कुछ मौजूद के हवाले से। कभी आप ख़ुद पर हंसे और कोई ऐसी बात है तो आप हमें बताएं कि वो ऐसी क्या बात थी जिस पर आपको ख़ुद पर हंसी आई थी, जिसकी वजह से आपको ख़ुद पर हंसी आई थी। इस पे हम बात करें, आपसे हम बात करेंगे। सो देखते हैं कौन है कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अरे यार क्या बात है, क्या बात है, बड़ी आपकी फुर्तियाँ हैं माशाल्लाह। अच्छा क्या बात है, माशाल्लाह सलामत में। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगी। हाँ जी, दोबारा बोलिएगा, थोड़ी सी आपकी आवाज कटी है मुझे लगता है। जी जी,
1: दुआ मांग रही
0: हूँ,
1: अल्लाह ताला उनको
0: सेहत अमीन अमीन।
1: तो मेरी तरफ से स्पेशल ना
0: जी, जरूर मैं, बल्कि आपका मेरे जहन में है, मैं अभी उनको थोड़ी देर बाद ना वॉइस नोट करूंगा। ठीक है, ओके। और कुछ कहेंगी।
1: बहुत सारी दुआएं हैं।
0: ठीक है,
1: बहुत सारी दुआएं
0: सिनेमा
1: पे भी अभी आएंगी।
0: हाँ जी, इंशाल्लाह ठीक हो गया।
1: मोदी भाई ने याद किया था। हाँ जी, बहुत सारी दुआएं।
0: जी जी जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया, सलामत में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।

0: हर जी सफर में हूँ तो इश्क है, जाने भी तू कैसे। आतिफ असलम की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गाना, आई डू होप कि आपने इस ट्रैक को इंजॉय किया होगा। उस्मान मुगल मौजूद थे और हमेशा ही की तरह बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत ही काम की बातें कर रहे थे। और सर बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मिस नगमाना को और मिस खदीजा मुराद को खसूसी तौर पर सलाम कह रहे थे। आज डॉग्स की खैरियत जो थी वो दरियाफ्त कर रहे थे और होपफुली आज डॉग्स भी ठीक ठाक होंगे। और आज इंशाल्लाह कल बल्कि जुमेरात को इंशाल्लाह आएंगे और आपसे गुफ्तगू शुनीद होगी। ठीक है, वेल 04221100101 हम बात कर रहे हैं ख़ुद पर हंसने के हवाले से। इस हवाले से कुछ फ़लसफियों की बातें भी मौजूद हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह की इस पहर में ये मुश्किल बातें ना की जाएं या इस तरह से की जाएं कि आपको भारी महसूस ना हो। सो साथ साथ आपसे हम गुफ्तगू का तड़का भी लगा रहे हैं, कुछ गाने भी शामिल कर रहे हैं। सो ये साथ साथ चलता रहेगा जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।
0: अरे सर क्या हाल चाल है?
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए मौसा भाई क्या हाल है?
0: सर नबी साहब अल्लाह का शुक्र है, करम मौला का, बताएं कैसे हैं?
1: जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
0: जी सर क्या कहना चाहेंगे?
1: सर जी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि लोगों पे हंसने से बेहतर नहीं है कि खुद इंसान खुद अपने आप पे हंसे।
0: मैं यही कह रहा हूँ, हाँ मैं यही कह रहा हूँ, खुद पे हंसे हैं कभी, किस बात पे हंसे हैं बता दें आज।
1: सर हंसना मैं अपने आप पे अभी तक इसलिए हंसता हूँ, एक जो है मेरा 2 साल हो गया मेरा मोबाइल गुम हुआ था।
0: अच्छा,
1: तो आज तक भी जब भी याद
0: आती है। अच्छा, आपने हैंडफ्री लगाई है मोबाइल में?
1: यस।
0: हाँ थोड़ा सा फासला रखें, इसको थोड़ा सा दूर करें, तार खींचो जरा। ओहो तुसी काले बंद करती है। चलें कोई नहीं, आप दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा, मैं ले लेता हूँ कॉल। ठीक है, वह 10:34 हुए चाहते हैं। हम बात कर रहे थे ख़ुद पर हंसने के हवाले से और साइंसी एक हमने आपके साथ तजुर्बा एक्सपेरिमेंट कुछ मामला शेयर किए थे कि क्या ख़ुद पर हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। इस हवाले से साइंस क्या कहती है, लेकिन इस हवाले से फिलोसफी क्या कहती है, फ़लसफ़ा क्या कहता है। सो फ़लसफे की बातें काफ़ी गहरी होती हैं, काफ़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन हम इनको एक आसान अंदाज में आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जनाब हमने अभी अफलातून का जिक्र किया था, वो ये कहते थे कि मज़ा बुनियादी तौर पर दूसरों से ख़ुद को बेहतर समझने के एहसास से पैदा होता है, ख़ुसूसन ऐसे लोगों के बारे में जो अपनी खूबसूरती या जहानत के बारे में हकीकत से ज़्यादा बुलंद राय रखते हों। सो इस हवाले से इख्तलाफ़ राय पाया जा सकता है, लेकिन मैं जो खूबसूरती या जहानत के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसमें ऑडेसिटी ज़्यादा है ना, जिसमें जिगरा ज़्यादा है, मुझे लगता है कि वही इंसान मज़ाक कर सकता है। अब मज़ाक एक ऐसी हिस्से लताफत है कह लीजिए कि आपकी ये भी एक आर्ट है, मतलब अपनी बात को एक फ़न वे में कहना, इस तरह से कहना कि तल्ख से तल्ख बात, सख्त से सख्त बात को भी एक ऐसे अंदाज में कह देना कि अगला बंदा या कोई भी गरोह, कोई भी मजमा जो है वो उससे मुतनफ़र होने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय उस बात को सुन के हंस दे और वह बात को सुन भी ले। मुझे लगता है कि अच्छा जो मज़ा होता है, जो फ़न होता है, वो यही होता है। सो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ अपने दोस्तों को भी कि मज़ाक करने में और मजाक उड़ाने में फ़र्क होता है। सो यहाँ पर हम उस मजाक की बात नहीं करें, हम अपने मजाक की बात करें, अपने साथ के मजाक की बात करें कि कभी आप खुद पर हंसे हैं। सो इस हवाले से चलिए हम और बात करेंगे। अभी आपकी पैगाम हम शामिल करते हैं कि नहीं, बल्कि हम आगे बात कर लेते हैं। सो जना मामला कुछ यूँ है कि सन 1951 में एक अंग्रेज़ फ़लसफ़ी थे थॉमस हॉब्स, इनके वाले से काफ़ी बात की जाती है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इनका जो ताल्लुक है सोशियोलॉजी के मैदान से भी काफ़ी रहा है। सो हमने जब अपने BS मैथ्स में मैं सोशियोलॉजी पढ़ी थी तो इनका काफ़ी जिक्र सुनने को मिला था। मुझे लगता है सोशियोलॉजी के बंदे हैं और फ़लसफ़ी भी अगर जाने जाते हैं। सो 1651 में अंग्रेज़ फ़लसफ़ी थॉमस हॉब्स ने भी बड़ी हद तक इसी ख्याल से इतफाक लिया। ताहम इनके मुताबिक इंसान कभी कभार अपने माजी की जो हमाकतें होती हैं ना, जो गलतियां होती हैं, माजी की हमाकतों पर हंस सकता है क्योंकि वक्त गुजरने के बाद ये हमें पता है कि हमें ये एहसास होता है। और थॉमस हॉब्स भी ये कहते हैं कि वक्त गुजरने के बाद हमें यह एहसास होता है, उस इंसान को यह एहसास होता है कि वो इस वक्त के मुकाबले में, उस वक्त के मुकाबले में अब ज़्यादा समझदार हो चुका है। सो कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको यकीन कीजिए, कभी आपको इत्तफाक़ हुआ है कि आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, अपनी फेसबुक आप स्क्रॉल करने के बजाय उसमें एक ऑप्शन आती है मेमोरीज़ की, उसकी मेमोरीज़ में जाते हैं, आपको कभी इत्तफाक़ हुआ आप जाइएगा देखिएगा कि आपने आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले जो बातें कही हैं, जो पोस्ट आपने की हैं, वो आपको कितनी मुजायका खेज लगेंगी, कितनी वो भोंडी लगेंगी, अनहोनी लगेंगी। आपको एहसास होगा कि यार मैं की कर ना रहा या मैं की कर दे रही हूँ। सो ये मामलत होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, आपको वक्त के साथ एहसास होता है कि आप जो पहले थे ना, अब आप उससे बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। सो इन बातों पर कभी कभी खुद पर हंसी भी आ जाती है, कभी कभी खुद पर गुस्सा भी आता है। सो ये थॉम्स हॉब्स की जो बात है ना कि इंसान कभी कभी अपनी माजी की हमाकतों पर हंसता इसलिए भी है क्योंकि उसको वक्त गुजरने के साथ ये एहसास होता है कि वो अब उस वक्त के मुकाबले में ज़्यादा समझदार हो चुका है। सो इस हवाले से हम बात कर रहे हैं और बातें सोन चलती रहेंगी, आपकी लाइव कॉल्स भी हम शामिल करेंगे 04111000101 पर। कुछ ही लम्हात बाकी हैं बल्कि हम आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम।
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं कैसे हैं?
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी शाम सुन रहे, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अरे क्या बात है सर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल आपकी शो सुन रहा हूँ मैं। ये आपने किस स्टोरी से बात कर रहा था?
0: मैं बात कर रहा हूँ कि कभी आप खुद पे हंसे हैं, किस बात पे हंसे हैं? आपको खुद पे हंसी आई है कभी कि यार ये मैंने क्या किया?
1: कभी कभी काम हम गलत कर लेते हैं, मुझे समझ नहीं आता। जब वो दूसरा मुझे सिखाता है फिर हम मुझसे खुद हंसी कि हम किस तरह पागल हैं।
0: कोई ऐसा काम किया आप बता दें, अगर बताने वाला है तो।
1: बिल्कुल कुछ इस तरह काम है जो बोरी वगैरह जमीन सामान वगैरह जो हम गलत तरीके से डाल रहा।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है सर, ठीक
1: हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा प्यार अपना आपका हमेशा खुश रहना।
0: अरे सर सलामत रहे, ओके ओके जनाब 10:40 हुए चाहते हैं और अपने मजीद मौजूद के वाले से भी बात करेंगे, मानसून के वाले से भी कुछ अलर्ट्स हैं, कुछ मामलात हैं आपके साथ वक्तन फवक्तन ये

0: ना यहाँ पे इलेक्शन वगैरह हुए हैं, काफी मोल पक्या ऐसी पिछले हफ्ते आए थे ना एक अद्धा
1: जी वो बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया।
0: अच्छा तुम मजे ले रहे हो फिर?
1: अच्छा पूरे बाजार में आज तक अभी बग्गी नहीं आई थी, बग्गी आई है बाजार में, रौनक लगी।
0: बड़े पैसे पूछे लुटाए हैं, मैं असल में
1: बड़े पैसे लगाए।
0: चलो चलो माशाल्लाह यही रौनक मेले होंगे ने, एंजॉय किया।
1: आप आए, आपका शो बहुत हमें इंतजार होता है।
0: अरे सर हमें भी आपका इंतजार होता है।
1: आपकी पूरी मैनेजमेंट को सलूट पेश करें और आरजे डॉक्स साहब के लिए ढेर सारी दुआएं।
0: अरे सर
1: और बीमारों के लिए दुआएं, जहाँ तक आपकी हमारी बात जारी से सलामती की दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: जिंदाबाद जी जिंदाबाद।
2: In these games, I congratulate the Kyrgyz Republic on its election as a non-permanent member of the United Nations Security Council for 2027-28 and on its successful chairmanship of the Shanghai Cooperation Organization in 2025-26. Mr. President, we are also very happy that Deputy Prime Minister Ishaq Dar and his team worked tirelessly for your election as non-permanent member in United Nations. Your Excellency, it is heartening to witness Kyrgyzstan's remarkable progress and development under your energetic leadership. Mr. President, Kyrgyzstan has made impressive economic gains.

0: All the way live from the federal capital city of Pakistan.
1: अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म और किर्गिस्तान के सदर के दरमियान बिश्केक में मुज़ाकरात हुए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर ने मजबूत डेटा निज़ाम तश्कील देने और मुल्क की डिजिटल मईशत को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। पाकिस्तान ने 5 साल और 10 साल की मुद्दत के लिए अमरीकी डॉलर में जारी किए जाने वाले 2 हिस्सों पर मुश्तमिल यूरो बॉन्ड की पेशकश का अमल शुरू कर दिया है। मारूफ शायर और अदीब अहमद राही की 24वीं बरसी आज मनाई जा रही है। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म शहबाज
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा।

वेल जनाब, वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज़ शरीफ का किर्गिस्तान का दौरा और इस हवाले से वहाँ के योम जमहूरिया के हवाले से बात की गई और कुछ मामला थे वो डिस्कस किए गए, कुछ माहदों पर दस्तखत किए गए हैं। सो जनाब, इस हवाले से आपने सुना, कुछ मामला थे, कुछ बातें थीं और इसी दौरान बिल्कुल वक्त हुआ चाहते हैं आपसे आज के लिए इजाज़त चाहने का। मेरे बाद आज आपके साथ मौजूद रहेंगी, आपका साथ देंगी आज ये वजीहा आसिम, आपसे गुफ्तगुशुनीद करेंगी, आपसे बातें की जाएंगी। मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत, इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया, सांस सुनो वफा की, तो आपसे अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बानो मेहरबान।

तमाम धड़कते दिलों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा, और अगर नहीं भी अच्छा जा रहा तो मैं हाजिर हूँ विद द सुपर डुपर शो लेडीज लाउंज। तो जी आपका और मेरा साथ रहने वाला है 11 बजे से 1 बजे तक। प्रोग्राम में शामिल करेंगे बहुत सी लेटेस्ट न्यूज, इंटरनेशनल डेज जो कि आज सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, कुछ आपकी सुनेंगे कुछ अपनी सुनाएंगे। अभी आपकी जमातों की नजर करने जा रही हूं एक जबरदस्त सा ट्रैक, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।

जी आप सुन रहे थे जबरदस्त ट्रैक साबत बातिन की आवाज़ में। तो सामीन आज सबसे पहले जो लोग बीमार हैं उनके लिए ढेरों ढेरों दुआएं और आज जिनकी बर्थडे है ना उनको मेरी तरफ से FM 101 की पूरी टीम की तरफ से मैनी मैनी बेस्ट विशेस ऑफ द डे, क्योंकि ये जिंदगी है, ये जहां है तो ही जहां है। आज है 2 सितंबर 2026, टाइम हो चुका है 11:09 इन द स्टूडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपसे वाबस्ता जितने भी लोग हैं वो भी ठीक ठाक होंगे। ठीक होने में सबसे पहले क्या चीज आती है, हर चीज से पहले खुश रहना। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपसे खुश होंगे। जो खुशी है ना वो आपके अंदर से निकलती है। तो अगर आप हमेशा मुंह बनाए बैठे रहेंगे या हमेशा डांट डपट करते रहेंगे या हमेशा गुस्से में रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द के लोग, इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, घर हो, दफ्तर हो, ऑफिस हो या कारोबार हो, वो भी थोड़ा सा ना माहौल ज़रा गुस्से वाला और अजीब और इंटेंस सा रहता है। तो इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाओ तो कम अज़ कम मुस्कुराहटे ही ज़िंदगी में बांटते चलो। सो बैक टू द नॉर्मल रूटीन। संडे के बाद जब मंडे आता है तो वो थोड़ा सा टफ लगता है। ट्यूसडे वेडनेसडे को सब काफ़ी हद तक बैक टू द नॉर्मल रूटीन में आ चुके होते हैं। और अगर बात करूं खवातीन के हवाले से, क्योंकि अब स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर ओपन तो जो माएँ हैं ना वो काफ़ी रिलैक्स हो चुकी होंगी, क्योंकि गर्मियों में जब छुट्टियां होती हैं तो कोई रूटीन नहीं होती, कोई नाश्ते खाने का किसी चीज़ का कोई टाइम नहीं होता। और आपको पता है मैं हमेशा एम्फसाइज करती हूँ कि वक्त को वैल्यू करना सीखें तो ही वक्त आपको वैल्यू करेगा।

तो जी, अगर आप प्रोग्राम में अपनी आवाज़ शामिल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 8111001001. यू कैन ऑल्सो मैसेज अस 8447 1. और हमारे एफ एम 101 के ऑफिशियल पेज पे तो आप मैसेज कर ही सकते हैं. सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर. अगर आप किसी को कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं. हम यहाँ बैठे हैं दिलों को मनाने के लिए. तो आपके दिल में कुछ भी है, आपने इस बात पर स्टिक नहीं रहना कि हमने जो है ना बिल्कुल बस टू द पॉइंट बात करनी है. ज़रूर टू द पॉइंट बात करें, लेकिन अगर कुछ दिल में है तो वो भी टू द पॉइंट कह दें, कुछ नहीं होता. तो आपका दिल हल्का हो जाता है ना, तो आप ना फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़िंदगी को आगे लेके चल पाते हैं. क्योंकि जब आप पुरानी चीज़ों को ही अपने दिल और दिमाग में होल्ड ऑन करके रखते हैं और आपको कोई नहीं मिल रहा होता कि किससे कहें, तो हम हैं ना. Here's a beautiful track coming your way. कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए FM 101.

वेलकम बैक, दिस इज योर दोस्त योर होस्ट आरजे वजीहा आसिम। प्रोग्राम है लेडीज लाउंज। मुजीब आलम पाकिस्तान के मारूफ और मकबूल प्लेबैक गुलकारों में शुमार होते हैं। वो आज के दिन पैदा हुए थे, 2 सितंबर 1948। उनका ताल्लुक पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी के उस सुनहरी दौर से था जब फिल्मी गीत लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी और जज्बात का अहम हिस्सा हुआ करते थे। मुजीब आलम ने अपनी खूबसूरत, पुरसोज और मुनफरिद आवाज़ के ज़रिए पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी में एक ख़ास मुकाम हासिल किया था। और ये नहीं कि सिर्फ उर्दू में, उन्होंने उर्दू के अलावा मुख्तलिफ ज़बानों में भी गीत गाए थे। और बहुत से अदाकारों के लिए अपनी आवाज़ जो है एज अ प्लेबैक सिंगर फराहम की। और उनका शुमार अपने दौर के कामयाब तरीन मेल प्लेबैक सिंगर्स में किया जाता है। और इसी वजह से उन्हें निगार अवार्ड भी दिया गया। इसके साथ साथ जो कैफी खलील है वो भी 2 सितंबर को पैदा हुए थे। अभी आपकी बातों की नजर करने जा रही है मुजीब आलम की आवाज में एक जबरदस्त सा ट्रैक। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक, प्रोग्राम है लेडीज लाउंज और मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट वजीहा से। अहमद राही पाकिस्तान के मारूफ पंजाबी शायर, नगमा नगार और अदीब थे। उन्हें पंजाबी शायरी में ख़ास मुकाम हासिल है और उनकी शायरी में मोहब्बत, जुदाई, इंसानी जज्बात और माशरती हकीकतों के भरपूर अकासी मिलती है। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है, वो 2 सितंबर 2002 में उन्होंने वफात पाई, 12 नवंबर 1923 को पैदा हुए थे। उनका असल नाम था शफकत अली और फिल्मी नाम अहमद राही। अहमद राही ने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए बेशुमार यादगार पंजाबी गीत लिखे। उनके गीतों में पंजाबी ज़बान की मिठास और जज्बात की गहरी नुमाया जो है ना अक्कासी कर करती थी। जैसे आज तो है ना, आजकल ज़्यादातर हम हर जगह देखते हैं कि उर्दू ही ज़्यादा है और बच्चों को भी सही तरह पंजाबी बोलनी नहीं आती, और ये एट टाइम्स ना बहुत फैशन समझा जाता है और बहुत एटिकेट समझी जाती है कि हमें पंजाबी का नहीं पता। तो ये बात जो है ना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हमें अपनी रूट्स से ना जब हम दूर रह के कुछ करते हैं ना तो वो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो पंजाबी जो है ना, तो हम पंजाब में रहते हैं, पंजाबी हमारी ज़बान है, तो इससे हमेशा जो है ना हमें मुंसलिक रहना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। और उनकी जो फिल्मी शायरी थी, उन्होंने पाकिस्तानी पंजाबी सिनेमा के सुनहरी दौर में अहम किरदार अदा किया। और उनके कलाम में मोहब्बत, इश्क और पंजाब की सकाफत, देही ज़िंदगी, इंसानी दुख और खुशियां, समाजी नाइंसाफ़ी, ये सब चीज़ें जो है ना उन्होंने अपनी शेर व शायरी में उन्होंने कवर की, क्योंकि तब ज़्यादा और कोई मीडियम जो है ना लोगों के पास नहीं होता था। ठीक है, आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो तब एक लिमिट में रह के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस पैदा करना ही played a vital role in that. तो जी हमारे जो प्रोग्राम की पोस्ट है ना वो भी हमारे ऑफिशियल FM 101 के पेज पे अपलोड कर दी गई है, सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और साथ साथ में आपके मैसेजेस भी जरूर प्रोग्राम में शामिल करूंगी, एंड आई बी टेकिंग यू ऑन ए कॉल्स आफ्टर 12 o'clock। और साथ ही बात होगी कि आज आपके किचन में क्या बन रहा है। क्योंकि ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है और जो माएँ होती हैं ना उनकी यही कोशिश होती है कि वही बनाए जो बच्चे जो स्कूल से कॉलेज से आके शौक से खा लें। और साथ ही आज मैं बात करना चाहूँगी रिश्ते जो होते हैं ना, जो आप शादी के लिए अपने मैच ढूंढ रहे होते हैं, रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं, उसके हवाले से भी। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि आजकल कुछ ऐप्स भी बन चुकी हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट भी हम अक्सर टीवी पे देख रहे होते हैं कि आप ऐप पे अपनी सारी डिटेल्स डाल लें और आपके साथ जो अच्छा फिट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो आपका क्या ख्याल है कि ये ऐसी ऐप्स होनी चाहिए कि इनको सही तरह के, या ये बहुत फ़ायदेमंद हैं या नहीं हैं? और आजकल ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पहले जैसे पहले ज़माने में होता था कि बस माँ बाप कर देते थे, जो भी अंडरस्टैंडिंग होनी होती थी वो बाद में खुद ही हो जाती थी अगर होनी होती थी तो, ठीक है ना। और वन ऑफ द रीजंस जो मैंने पहले भी एक दफ़ा डिस्कस किया था कि आपकी इतनी अर्ली एज में शादी हो जाती है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ और कॉपरेट और सब कुछ जो है ना आपने करना ही होता है। तो अब दोबारा से वो ट्रेंड आ रहा है कि जी लड़कियों की या लड़कों की, बहुत लड़कों की तो नहीं, क्योंकि ज़्यादा तर जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कियों पे ही डाली जाती है या फीमेल्स पे ही डाली जाती है कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, यू हैव टू कोऑपरेट, और ये एक ऐसी चीज़ है जो आजकल हमें अपने तमाम ड्रामों में भी नज़र आ रही है। जितने भी आजकल ड्रामे जो हैं, टीवी सीरियल्स जो हैं ऑन एयर किए जा रहे हैं, उसमें अगर खातून का ताल्लुक अगर एक मीडियम फैमिली से है या बहुत रिच फैमिली से है, मतलब जिस भी कैटेगरी से वो बिलोंग करती है, हमें यही देखने में आ रहा है कि ओनली द फीमेल इज़ द वन हु हैज़ टू कोऑपरेट एंड एडजस्ट। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर बहू हमने ड्रामा देखा पिछले दिनों, उसमें क्या था कि जी बहुत
वेल ऑफ फैमिली है, लेकिन फिर भी फीमेल इज़ द वन, औरत ही थी, शी इज़ द वन जो कि अपना पुट इन करी ही है एफर्ट घर को चलाने के लिए, घर को लेके चलने के लिए। हर टाइम उसने जो है अपने हस्बैंड के मुताबिक ही चलना है। हालांकि अगर उसके हस्बैंड ने कहा कि जी कि उसकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी जहां पर जाके उसे अवार्ड मिलने वाला था, तो उसके हस्बैंड ने कहा कि वो भी तुम्हारे लिए अटेंड करना ज़रूरी नहीं है, तुम घर देखो वो देखो, तो उसमें भी सोच में पड़ गई कि नहीं मुझे उस पर जाना चाहिए कि नहीं। तो दीज़ आर फ्यू थिंग्स जो कि आजकल हमारे टी वी सीरियल्स में भी ऑनर की जा रही है, और सिर्फ एक ड्रामे में नहीं, बहुत से ड्रामों में यही चीज़ डिस्कस हो रही है और यही चीज़ दिखाई जा रही है। दिस इज़ समथिंग कमिंग टू द सर्फेस दीज डेज। तो आपको क्या लगता है कि वाकई अर्ली मैरिजेस जो हैं वो ही होनी चाहिए, और वाकई में जो आप में अंडरस्टैंडिंग जो है वो पहले शादी से हो जानी चाहिए, या बाद में पहले की तरह बाद में जो होगा देखा जाएगा, या बाद में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता ना, बस यही होता है कि जी आपने इसे लेके चलना है। फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। और आपकी जो कॉल्स हैं वो मैं लूंगी ऑन एयर कॉल्स, आई विल बी टेकिंग आफ्टर 12 o'clock। अभी आपकी स्मार्टों की नजर करने जा रही हूँ एक जबरदस्त सा ट्रैक, सो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।

0: Okay. Ready? Action!
1: We will be right back after a short break. Stay tuned.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

वेलकम बैक, दिस इज योर दोस्त योर होस्ट आरजे वजीहा आसिम। जहां बात हो रही है आज अहमद राही की, तो हम फिल्म ही रांझा को कैसे भूल सकते हैं, उसी फिल्म का एक जबरदस्त ट्रैक प्ले करने जा रही हूं। नूर जहां की आवाज में कई मत जाइएगा, सुनते रहिए FM 101।

वेलकम बैक। आप सुन रहे थे ज़बरदस्त ट्रैक फिल्म ही रांझा से। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अब साथ साथ कुछ हम जो कमेंट्स हमें फेसबुक पेज पे मौसूल हुए हैं वो प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। फातिमा असलम ने हमें मैसेज किया है, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस प्रोग्राम फरी चबुर्जी लाहौर से। चबुर्जी लाहौर से उन्होंने हमें मैसेज किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बहुत प्यारी सी रेगुलर कॉलर हैं, लिसनर हैं। और वसीम अहमद ने हमें मैसेज किया है, आरजे वसीम अहमद ने, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ग्रेट शो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कॉम्प्लीमेंट फ्राम यू मैटर्स एंड मीन्स अलॉट। मुजीब आलम एंड अहमद राही, ग्रेट सेगमेंट, ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, फैंटास्टिक शो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नज़ीर खुसरो ने मैसेज किया है सोहबतपुर बलोचिस्तान से। और एजाज अली ने हमें मैसेज किया है शरफपुर शरीफ से। कवल नास पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, हमदुल्ला मला खेल है हमारे साथ। कोयटा से कहते हैं वेलकम टू द शो। और रमज़ान गुजर ने कहा है खुश आमदीद मैम वजी आसिम, वेलकम बैक, थैंक यू वेरी वेरी मच। और साइम तबस्सुम है हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम है और प्रोग्राम करने का अंदाज़ हमेशा बहुत अच्छा है, हमेशा की तरह बहुत अच्छा है। और अल्लाह पाक राज़ी हो आपसे और खुश रहो। मैं आपको पेरिस फ्रांस में सुन रहा हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी दूर से हमें सुना और मैसेज किया। और मुझे याद है आपने लास्ट टाइम भी मैसेज किया था और आपने जो सॉन्ग रिक्वेस्ट की थी वो मैंने प्ले की थी, ठीक है ना? तो और कहते हैं एक सॉन्ग लगा दो। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट अच्छा गाना है अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा, आपकी नवाजिश होगी, ठीक हो गया। आपको और आपके साथ आपकी पूरी टीम को मोहब्बत वरा सलाम और दुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू वेरी वेरी मच। आरजे वसीम अहमद ने कहा है ज़बरदस्त स्टार्ट, थैंक यू वेरी वेरी मच, कहते हैं गुड लक। और फिरोज़ आलम ने कहा अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम मदीना मुनव्वरा सऊदी अरेबिया, शो इज़ ऑलवेज गुड, शो इज़ गोइंग ऑसम। क्या बात है, आज तो मेरे लिसनर्स ने आज का यू मेड माय डे। आज हमें मदीना मुनव्वरा से भी मैसेज आ गया है, क्या ही बात है। और बहुत सी दुआएं भेजी हैं, कहते हैं अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको कभी कोई गम ना दे और हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और हमेशा हम आपके लिए अच्छे अच्छे शोज़ करते रहें। और कहते हैं कि नेक तमन्नाएं हमेशा आपके साथ। और फ्रॉम मदीना मुनव्वरा सऊदी अरेबिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज़ आलम जान। और एजाज अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, कैसे, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नईम टेलर ने हमें मैसेज किया है, आरजे 101 की पूरी टीम को सलाम, कहते हैं गुड मॉर्निंग कहा है उन्होंने, अच्छा म्यूज़िक, थैंक यू। और कवलनाथ ने पूछा है हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ। और देखिए हम जो है ना, आप हैं तो हम हैं, सही बात तो ये, ठीक है ना? तो कवलनाथ ने कहा है ज़बरदस्त शो। और मलिक मोहम्मद आदिल कहते हैं कि पीस बी अपॉन यू आरजे वजीहा आसिम, इंजीनियर मलिक सऊदी अरेबिया से आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आदिल आपका। और कहते हैं सुपर सुपर सुपर, क्या ही बात है। और वेलकम जी आयानू कहा है कवलनाथ ने। और कहती हैं कि एक और मैसेज किया है कि ग्रुप वालों की तरफ से, शमसी लिसनर रेडियो ग्रुप वालों की तरफ से सलाम सलाम और अच्छी सेहत तंदुरुस्ती की दुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ देखिए ना, हमारी सेहत तंदुरुस्ती की दुआ जो है ना हमारे सब लिसनर्स करते हैं, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। तो देखिए तो ही हम यहाँ पे आपके लिए अच्छे अच्छे शोज़ लेके आ पाते हैं, इट्स ऑल अबाउट यू नो टीम वर्क। और रमज़ान गुजर ने कहा है सुपर से भी ऊपर प्लेलिस्ट, वाओ मे ऑल टाइम फेवरेट सुपर हिट शो, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मज़ीद कुछ कमेंट्स जो है ना मैं प्रोग्राम में आगे शामिल करूँगी, ठीक है? आप हमें 4471 पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो जो मैंने बात की थी कि आपको क्या लगता है कि हमेशा जो आपकी शादी है या कोई भी रिलेशनशिप है उसको चलाने में हमेशा जो है ज़्यादा पुट इन एफर्ट जो है जो ख़वातीन को ही क्यों करना पड़ता है, और ये माइंडसेट जो है इसमें चेंज करने में ख़वातीन को
بہت زیادہ رول پلے کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے نا کہ شروع میں آپ خوشی خوشی سب رسپانسبلٹیز لے لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں یہ بھی کر لوں گی یہ بھی کر لوں گی سب کچھ میں کر لوں گی, جب وہ وقت آتا ہے نا جب آپ تھک جاتی ہیں یا آپ کی انرجی ڈرین آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر آپ جب کہتے ہیں جب آپ نو کہنا اسٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ سب کو برا لگنا شروع ہو جاتے ہیں, سب کو بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر کسی کے ساتھ کچھ اچھا کر رہے ہیں تو وہ یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یو آر ڈوئنگ اٹ, یو نو کہ آپ بھی بہت ایفرٹ ڈال کے بہت محنت سے وہ کر رہے ہیں, وہ اس بات کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کبھی نہیں کر پائے تو انہوں نے وہ 99% نہیں دیکھنا جو آپ نے کیا ہے, انہوں نے صرف وہ 1% دیکھنا ہے جو آپ نے نہیں کیا. اور آج کل یہ جو رشتے کرانے والی آنٹی والا تھوڑا 99% نہیں دیکھنا جو آپ نے کیا ہے, انہوں نے صرف وہ 1% دیکھنا ہے جو آپ نے نہیں کیا.

के मुताबिक वो मैच करके अगर आपको कोई दे दे तो देखिए कभी कभार ऐसा भी होता है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, हमने शुरू से सुना है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि अगर कोई आपकी तरह का नहीं है ना, कभी होता है कि एक इंसान बहुत चुप रहने वाला है, एक बहुत बोलने वाला है, तो भी आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है।

एक और जबरदस्त सा ट्रैक आपकी स्मार्टफोन की नजर करने जा रही हूँ। हे यू गो।

ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈ ਕਹਿੰਦਾ।

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और किर्गिस्तान ने इक्तसादी शराकतदारी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर ने मजबूत डेटा निजाम तश्कील देने और मुल्क की डिजिटल मईशत को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। पाकिस्तान ने 5 साल और 10 साल की मुद्दत के लिए अमरीकी डॉलर में जारी किए जाने वाले 2 हिस्सों पर मुश्तमिल यूरो बॉन्ड की पेशकश का अमल शुरू कर दिया है। रियाला ने सूबे भर में 3,500 से ज्यादा देहात के लिए तरक्याती मंसूबे शुरू करने की हिदायत की है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

वेलकम बैक आफ्टर द न्यूज ब्रेक. दिस इज योर दोस्त योर होस्ट आरजे वजीहा आसिम. प्रोग्राम है लेडीज लाउंज और आपका मेरा साथ रहने वाला है एक बजे तक.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: वेलकम बैक, दिस इज़ योर दोस्त योर होस्ट आरजे वजीहा। सेम प्रोग्राम है लेडीज लाउंज, और इस वक्त टाइम हो गया है इन द स्टूडियो 12:10 PM। हमारे साथ इस वक्त बहुत से कॉलर्स मौजूद हैं, चलिए हम लेते हैं आज की पहली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? वेलकम टू द शो।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया माशाल्लाह। मैं तो इंतजार कर रहा भी आपकी फरी की कॉल आ गई थी, अभी वेला सबर कर ली था भी आपकी फरी आवे सब तो पहले। हाँ, कोई गाल सुनी
0: है? अच्छी खाने पीने की चीजें वो बताती है ना, मजे की।
1: हाँ हाँ, क्या बात है, क्या यकीन करो। मैं क्या, चलो आपकी फरी दो तीन मिनट में जीत गया।
0: आपकी कॉल पहली मिल गई तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्या कहना चाहेंगे?
1: माशाल्लाह, कहना क्या है बाजी, माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है।
0: जैसे खवातीन की जो है ना कि शादी जो है वो कम उम्र में ही करनी चाहिए, या थोड़ा सा जैसे आजकल है ना थोड़ी सी लेट उम्र में भी शादी होना शुरू हो गई है, और जैसे कितना जो है खवातीन को रोल प्ले करना चाहिए?
1: हाँ, कम उम्र छोटी उम्र की शादी करो ना, तो फिर जी बेटी होंगी भैन होंगी मतलब बड़ी परेशान हो जाती, ज्यादा भी नहीं उम्र करनी है। आप कैसे ऐसे लोग ना मेरे पिंड कैसे काली भैन साड़ियाँ ना छुट्टियां हो गई, वैसे हुक्म यही है जो कि भैन जवान हो जल्दी शादी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, क्योंकि अल्लाह पाक का भी हुक्म है। हाँ, बहुत सारिया दुआवां साढ़े माशाल्लाह बहुत अच्छा चलो। जिन्हें साढ़े बीमार आ भाई साढ़े ना बहुत प्यारे आ रहे हैं जान जम खराब, अल्लाह
2: वालेकुम सलाम। आप जी क्या हाल, ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
2: गोपी जट गल कर रहे हैं, आप जी रानी के कंडे तो।
0: जी वेलकम टू द शो, क्या कहना चाहेंगे?
2: माशाल्लाह बहुत सोना प्रोग्राम से बहुत सोनी गल, आप जी सदा सलामत रहो।
0: शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत।
2: स्पीकर आप जी बाहर अंदर कमरे गल कर रहा सलाम मेरी आपी अलीला नु ते आपी सही साहबा रौनक ला दे, मेरी आपी कमल ला दे रजा चौधरी साहब नु सलूट, ते तुहानु दो हत्थां नु सलूट
0: और भी दो तीन फरमाइशें हैं वो भी प्ले करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, वेलकम टू द शो, कौन बात करें, कहां से?
3: इजाज अहमद बात कर रहे हैं नारवल
0: जी। इजाज अहमद क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा।
0: चले जी ठीक हो गया इजाज
3: अहमद। आप सुनाए कैसी हैं, दरबार खैरियत है?
0: हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक, कैसा लगा आपको शो?
3: मैंने ना तकरीबन वक्फे वक्फे से सुना है
0: तो ठीक है,
3: अभी कालों का सिलसिला जारी है। बोधी भाई आए हुए थे मेरा ख्याल।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: मैं रास्ते से गुजरता हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये रहते कहाँ है, लेकिन चलो जहाँ भी हैं
0: बात है। अगर आपको पूछना है या जानना है कि वो रहते कहाँ है तो हम नेक्स्ट टाइम जो है ना पूछ लेंगे, लेकिन देखिए वो हमेशा ये बताते हैं कि मैं रावी के कंडे से बोल रहा हूँ। ठीक है
3: जी, रावी से रोजाना गुजरता हूँ दोनों तरफ से, मुझे क्या पता रावी का कंडा तो बड़ा लंबा है।
0: अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चले जी ठीक हो गया। चले जी मोदी जलसा आपने सुन लिया है तो जरा जो है ना आपने एजाज अहमद को बताए ताकि थोड़ी सी इस्लाम दुआ हो सके आपस में, ठीक है ना। चाहे आप कमेंट सेक्शन में बता दें जी,
3: मेरी बरादरी है, मेरी बरादरी भी ऐसा ना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा सही है सही है सही है ठीक है ठीक है। चले जी मोदी जट साहब बेशक आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि आप कहाँ हैं ताकि जो एजाज अहमद है ना आपसे मुलाकात कर सके। जी जी
3: दूसरा जो मैं आपसे ये बात करना चाहता था, पिछले हफ्ते जो शो तो नहीं आपको पता लेकिन आपका दिन बड़ा है माँ का बुध का।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
3: आप अपना पूरे साल की बाजी ले गए।
0: क्या मतलब
3: बुध को बुध को 12 बिल अव्वल था ना।
0: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
3: आपका ये दिन था शो का लेकिन आपके लिए बड़ा अहम दिन आ गया क्योंकि ये हमारी ईद भी थी, हम आपकी विलादत थी नबी पाक की।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
3: ये दिन के हवाले से मैं आपको सलूट करूंगा कि आप बाजी जीत गए।
0: चले जी शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया।
3: बोधी भाई को बहुत सलाम है मेरी। तो
0: और देखिए ये तो इंसान का अपना सोचने का नजरिया होता है ना, ठीक है, तो अगर आपने इस तरह से सोचा तो बहुत शुक्रिया,
3: तो बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात करके।
0: चलिए
3: बहुत
0: शुक्रिया
3: आपके लिए,
0: शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो जल्दी से एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
4: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से?
4: मैं रिजवाना बात कर रही हूँ लाहौर से।
0: रिजवाना वेलकम टू द शो, क्या कहना चाहेंगी?
4: बस अच्छा शो है आपका, पहले तो समझ ही नहीं आई, गाने चल रहे थे जब मैंने लगाया तो फिर अब मैंने देखा तो आपका शो था, फिर नहीं है। बड़ा मजा आ रहा है, पहचाना नहीं पहचाना, पहले भी मैं करती रहती हूँ आपके शो में, मगर अब देर
0: आज दो तीन सिंगर्स जो है और जो राइटर्स हैं उनकी जो है उनके हवाले से बात हो रही थी तो इसलिए उनके हवाले से फिर उनसे मुंसलिक जो गाने थे वो प्ले करते रहे।
4: अच्छा वो आप तो कम उम्र की शादी का बता रहे थे ना?
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
4: कम उम्र की नहीं वैसे करनी चाहिए, तो बस कुछ वजह हो जाती है, मेरी 15 साल की एज में हो गई थी, मेरे अबू ने फिर 17 साल रखाई थी।
0: अच्छा।
4: तो समझ नहीं होती ना, समझ नहीं होती है, फिर मैंने अपनी बेटी की भी जल्दी कर दी 17 साल की उम्र में।
0: अच्छा,
4: तो
0: अच्छा,
4: बच्चों को जिधर ढालो अकल तो होती नहीं है ना, ऐसे जरा 20-22-23 साल उम्र होनी चाहिए,
0: एटलीस्ट 18 जो है, क्योंकि यही बात है ना कि अब जैसे कि अब जो है जैसे कि आपने भी 17 साल की उम्र में की, फिर भी आपने 2 साल लेट अपनी बेटी की शादी की आपकी 15, तो इंसान को जैसे जैसे आप उसको कहा जाता है अब बस समझते हैं यही आपका फर्ज है, आपने यही कह करना है क्योंकि
4: बस लड़के की उम्र भी कम हो तो फिर बिल्कुल भी नहीं समझ आती ना, लड़का जरा मैच्योर हो, लड़का भी छोटा हो लड़की भी छोटी हो ना।
0: तो जब आपकी 15 साल की उम्र में शादी हुई तो आपके हस्बैंड की क्या उम्र थी?
4: 23 साल।
0: अच्छा अच्छा अच्छा सही है सही है सही है,
4: मेरी 15 साल।
0: अच्छा अच्छा सही है सही है सही है सही है, तो आपकी बेटी भी ठीक है अपने घर में?
4: हाँ जी ठीक है शुक्र अल्लाह का, बस घर में होते ही रहते हैं छोटे छोटे मोटे, हाँ, तो होते ही रहते हैं, ठीक है, समझदार है मेरी बेटी, पहले पहले मुश्किलें होती हैं बाद में फिर आसानी हो जाती है।
0: हाँ, जब इतनी छोटी उम्र में शादी करो ना तो फिर समझदार ही इंसान होता है।
4: हाँ जी
0: वो ही जाता है
4: वो ज्ञान जो मैं आगे मैं काल तो कभी नहीं की उनकी ना कभी मिली है, तो माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे सेहत दे इस जमान में रखे, तो मेरी बेटी की भी तबीयत बड़ी खराब थी ना 3-4 महीने, उसका फिर पीछे का ऑपरेशन हुआ था।
0: अच्छा,
4: तो मेरा खुद भी पीछे छूट कर गया था, मैं तो मुश्किल से बची हूँ
0: उनके लिए,
4: बहुत दुआएं उनके लिए, बहुत दुआएं जानजम के लिए मेरे लिए। तो और वो भी जट का बना रहे कह रहे थे, मैंने कहा वो रावी का कंडा, हम भी उधर ही हैं रावी के कंडा उसी के साइड पे ना वो कृष्ण नगर सांदा है ना, साथ ही मुझे एक दिन कहती है रावी में पानी आ गया आप चली जाए, मैं कह मैं अकेली चली जाऊं, बच्चे तो सारे कोई किधर है कोई किधर है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी आज जो है ना बूंदी जट के एड्रेस की बहुत डिमांड आ गई है। चलिए जी आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया।
4: अच्छा शमीमा पी को और ये नीला को और ये क्या कहते हैं बर्फी वाले भाई और वो जो शहजाद साहब है बर्फी मारते हैं बड़ी प्यारी बड़े अच्छी बड़े अच्छे डायलॉग सुनाते हैं और क्या दुआएं मांग रहे थे, मैंने तो मेरे लिए कोई दुआ नहीं करता वो। हाँ
0: वो जो है ना आपके साथ है
4: वो साजदा नसीर है ना वो उसकी तबीयत खराब है अल्लाह उसको शेर दे, हमारी सारी पुरानी कॉलर है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल साजदा बहुत प्यारी प्यारी कॉलर है बहुत प्यारी बातें करती
4: है। तो आपको मैं फेसबुक पे देखती होती हूँ मगर फेसबुक पे मुझे नहीं आता कराना करना नहीं कुछ भी नहीं आता, हाली आपकी वो पोस्ट आ जाती है वो सबकी देख लेती है।
0: अच्छा अच्छा उस पे नीचे कॉमेंट की ऑप्शन होती है ठीक है अपनी बेटे से किसी को कहे एक दफा आपको बता दें दैट इज वेरी सिंपल। तो आप इतनी चीजें हैं आप उनसे भी पूछे ना कैसे करना है तो वो भी बता देते
4: हैं। नवासी जो है ना नवासी कॉल लंबी हो गई है।
0: हाँ जी बहुत
4: तो एसन खान को शमी मापी को ये सबको मेरी तरफ से सलाम और रूही रूही को भी वो एक है ना नई आई है।
0: हाँ जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल
4: बहुत लंबी कॉल हो गई।
0: ओके जी अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। हाँ जी तो जी मोदी जट अपना एड्रेस जो है ना प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में दे दें ताकि बहुत से जो हमारे कॉलर्स हैं वो रावी के कंडे पे ही रहते हैं तो वो चाह रहे हैं कि रावी के किनारे क्यों ना एक जो है ना बैठक हो जावे। तो ज़रूर आपने अब अगर आप कॉल करें तो अगर आप चाहें तो ठीक है अगर आप अपनी जो है ना प्राइवेसी रिफील करना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें बता सकते हैं अपना एड्रेस है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी एक गाना प्ले कर लेते हैं फिर आई विल बी टेकिंग मोर ऑफ योर कॉल्स। हियर यू गो।

0: जी वेलकम बैक। तो मैं कोशिश करूंगी कि आज मैक्सिमम सब लोगों की जो है ना फरमाइशें पूरी कर सकूं। तो इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके?
0: वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप?
1: थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, आपके शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत, मैंने आपके मैसेजेस भी तमाम प्रोग्राम में शामिल किए हैं।
1: थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। आज आपका सवाल क्या रखा हुआ था?
0: आज हम बात कर रहे थे कि ये जो रिश्ते कराने के जो मैच होते हैं ना, जो ये जो आजकल ऐप भी निकल आई है उस हवाले से, और जो शादी किस उम्र में आपको लगता है सही उम्र क्या है शादी की, ताकि लड़का लड़की सही तरह एक दूसरे के साथ?
1: शादी की उम्र जो है वो 18 साल होना चाहिए, और दूसरा जो रिश्ते जो है अच्छी तरह रिश्ते होना चाहिए, इसमें एक दूसरे को बात को समझते एक दूसरे की कदर में रिस्पेक्ट इज्जत कर लेना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमेशा हमेशा आप ना बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, और इतनी मुस्बत सोच रखने वाला इंसान ना हमेशा जिंदगी में तरक्की करता है।
1: ठीक है, और बहुत ज्यादा प्यार आपने अल्लाह पे करो।
0: चले जी, आपका बहुत शुक्रिया, कॉल भी ड्रॉप हो गई है। और ऐसा भी अक्सर होता है कि अगर ख्वातीन ना अगर कुछ भी अगर कोई डिसीजन ले लेना, तो उनको उसमें हमेशा गिल्टी फीलिंग ही रहती है, या उनको गिल्टी फील करवाया जाता है कि ना हाँ देखा ना तुमने अपनी मर्जी की है तो अब भुगतो, बजाय कि वो भी आपके अच्छे बुरे में हमेशा आपके साथ खड़ी होती है। तो अगर उससे कोई गलती हो गई है तो भी, जैसे अगर कोई प्लेट भी अगर ऐसे रंग की आ जाए ना जो अगर पसंद ना हो, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए जाते हैं, और ऐसा नहीं सोचा जाता कि लेट हर गिव अ चांस, ठीक है? तो कि बस यही सोचा जाता है कि जो औरत है ना उसे परफेक्ट ही होना चाहिए। और ऐसा भी अक्सर होता है ना कि आप जो प्रॉब्लम चल रही होती है ना उस पर फोकस नहीं करते, और जब वो उस चीज़ को ज़्यादा देर बर्दाश्त करके या उसको सह के जब उसके बारे में बोलती है, तो लोग आपके रिएक्शन पे ज़्यादा एक्ट करते हैं बजाय कि वो जो प्रॉब्लम है तभी एक्ट कर लें, ठीक है ना? कि वो जो चीज़ उसे तंग करी है, घर में कुछ ऐसा माहौल है या कोई ऐसी बात हुई है, और ये बात भी बहुत गलत होती है कि आप फैमिली के सामने जो है ना अपनी बहन बेटी या बीवी को, जैसे बहुत सी माएँ हैं वो अपनी बेटियों को भी यही कहती हैं हाँ मुझे पता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, यू हैव टू कोऑपरेट। तो आप जैसे सबके सामने उनका साथ ना दें, बंद दरवाज़ों के पीछे बस एक दूसरे का आप साथ दें, और जब एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने का टाइम होता है ना तो आप गायब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ साजदा, कैसी हो आज? आपके बारे में पहले भी बात हो रही थी।
2: हाँ जी, मैं सुन रही थी। और हमारे ना रिजवाना जी बहुत अच्छी ना कॉलर है पुरानी, और मैं अक्सर इनका नाम लेती हूँ, जिक्र करती रहती हूँ, इनके लिए बहुत ज्यादा दुआ। हाँ मैं रिजवाना जी, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं करती हूँ, आप हमारी अच्छी कॉलर है, आपको मैं याद करती रहती। हाँ जी, और मैं तो जी मैं टॉपिक के बारे में कहना चाहूंगी, लड़की की ना छोटी एज में शादी नहीं होनी चाहिए, कम से कम ना 25 के करीब होनी चाहिए निचोड़ लड़के की, क्योंकि छोटी
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। साजदा की आवाज हमें नहीं आ रही है। चलिए जी, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, वेलकम फरी जी, आपकी कॉल का बहुत बहुत बेसब्री से सबको इंतजार था।
3: आंटी वो कॉल भी मेरे से जब मिलती थी तो गाना लग जाता था, फिर मैं सब्र करती हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
3: आज हम ना सीमा और अरवी का स्टू बनाएंगे।
0: वाह जी वाह, क्या बात है, एक बिल्कुल
3: बड़ी मजे की है। तो आधा किलो कीमा ले लें, आधा किलो अरबी ले लें।
0: अच्छा,
3: आम रूटीन की तरह पकाना है, 3 प्याज डालने हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, टमाटर और हरी मिर्ची काट के डालने या पेस्ट बना के ना सारी चीजें कीमे के ऊपर डाल दें।
0: ठीक हो गया, और
3: नमक मिर्च जो है ना हल्दी जैसा, लाल मिर्ची 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, हल्दी थोड़ी सी, जीरा, सूखा धनिया, गरम मसाला।
0: टमाटर कितने डाले आपने? टमाटर कितने डाले आपने?
3: वो टमाटर डाल लेना जैसे आम रूटीन में कीमा बनाते हैं।
0: ठीक है ठीक है,
3: ऐसा कीमा बनाते हैं ना भून के इसको अच्छी तरह, अरबी जो है ना उसको अच्छी तरह धो के थोड़ा सा नमक लगा के रख दे, फिर इसकी जो होती है ना वो बाहर निकल आएगी, अच्छी तरह धो के ना इस चक्के उतारने हैं, चक्के उतार के इसको गोल गोल ना चकलियाँ जैसे गोल गोल नहीं होती हैं
4: जी जी जी जी जी,
3: में ऐसे काटनी है
4: ठीक है,
3: में घी डाल के या ऑयल डाल के ना इसको फ्राई करना है।
4: ठीक है ठीक है,
3: आलू फ्राई करते हैं ना ऐसे फ्राई करना है, फिर इसको ना ये चीनी के ऊपर डाल देना, चीना भुना होगा तैयार होगा ना तो ये फ्राई की हुई ना इसके ऊपर डाल देनी है।
4: ठीक है,
3: और इसी ऑयल में ना दो तीन प्याज ना धो के अच्छी तरह लच्छेदार काट के ना वो फ्राई करके ना ये चीने के ऊपर डालने हैं।
4: अच्छा, हार
3: भी डाली है ना वहाँ ये प्याज ना ऊपर डालने हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ना काट के हरी मिर्च डाल दे, थोड़ा सा धनिया डाल के ना इसको मिक्स करके ना थोड़ा 5 मिनट के लिए दम पे रख दे।
4: ठीक है,
3: आप सादा रोटी के साथ खाएं, व्हाइट चावलों के साथ खाएं, ये सफेद चावल जो बनाते हैं ना उबले हुए उनके साथ खा सकते हैं। चटनी बना ले, रायता बना ले, सलाद आजकल बड़े अच्छे खीरे आए तरे आई हुई है, चुकंदर है उसका बना ले, वो सलाद बना ले।
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
3: तो आज हम ना वो बनाएंगे चबल बना ले, ये जो स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी नहीं आड़ू आए हुए ना आड़ू का चबल बना ले,
4: अच्छा
3: ब्लेंडर में डाल के काट के ना उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल ले, तैयार करके चट में रख ले, और आधा आधा ग्लास इसका डाल के आधा ग्लास सेवन अप का डाल के ना तो इसके बाद ले आपका ना ब्रेकफास्ट और ये लंच और डिनर
4: हो जाएगा।
3: तो मुझे याद करते हैं इनके लिए बहुत सारी दुआएं, जो ज्या अंजुम हमारे आर्जी है ना बड़े प्यारे, ये थोड़े बीमार हैं, हम इनके लिए बहुत सारी दुआएं मांग रहे हैं, स्पेशल में दुआ मांग के अल्लाह पाक इनको सेहत या बड़ी जिंदगी दे,
4: आमीन आमीन।
3: आपके लिए भी दुआएं हैं, आप जब आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है।
4: चले जी, शुक्रिया बहुत बहुत, और आप भी जब जबरदस्ती रेसिपी लेके आती है ना हमें भी बड़ा अच्छा लगता है।
3: सबकी ट्यूब वालों के लिए शमीमा भी आएंगी, रजवाना ने भी जाती है, तो उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह भी मानो अल्लाह भी, और भी लाइन लगी हुई है।
4: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। तो आज बहुत ज़बरदस्त जो है ना इसको शेयर किया है, सबने ज़रूर ट्राई करना है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
5: वालेकुम सलाम, लियाकत बात कर रहा हूं
4: जी। लियाकत साहब वेलकम टू द शो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी जी बिल्कुल, हाँ जी। लियाकत आप ना अपनी जगह चेंज करें, आपकी आवाज़ में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है, क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है।
5: हाँ
4: जी जी, अब बोले।
5: हाँ चले बार वो मैं कमरे में हूँ।
4: अब क्लियर आवाज़ आ रही है, अब क्लियर आवाज़ आ रही है, अब जल्दी से बता दें हम क्या कहना चाह रहे थे।
5: हाँ मैं यही कहना चाहूँगा, देखे अकल होनी चाहिए और अकल आ भी जाती है जैसे जैसे मिलजुलते हैं ना लोग,
4: जी जी, जी
5: जैसे
4: जी,
5: जैसे
4: जी।
5: फैमिली में जाते हैं दूसरी और कई फैमिली में जाते हैं, अकल आ ही जाती
4: है, आ ही जाती है। जब आप वो गुजरते हैं ना उस सिचुएशन से तो फिर आपको पता चल जाता है कि क्या करना है।
5: ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी देर के बाद बात हो रही
4: है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेम है सेम है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह
5: हाफिज़,
4: अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, ये थे लियाकत, जल्दी से एक और कॉल ले लेते हैं, फिर हम सॉन्ग प्ले करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी आप?
4: हाँ जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
6: बस आपकी दुआएं माशाल्लाह जी, मोहम्मद शहजाद शाहबाद से आ गया जी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है और बड़ी खुशी होती है जी आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी तंदुरुस्ती रखे, बहुत बहुत दुआएं आपके लिए जी।
4: शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत।
6: तो माशाल्लाह, और जितने बहन भाई आ रहे हैं सबको मेरा सलाम, और ध्यान की बात करें उनकी तरह मैं दुआएं बहुत बहुत मांगता हूँ, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी तंदुरुस्ती रखे जी। तो आप मौजू पे बात करते, देखे जी जो आजकल वक्त है ना वो थोड़ा लेट ही शादी होनी चाहिए, क्योंकि वो समझ जाए जो बेटी बहन की जिस घर में जाना है वो काम संभाल ले, तो समझदारी जरूरी होनी चाहिए जी। थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, ज्यादा ज्यादा उम्र तो 18 साल के बाद भी हो जाए ना, 18 साल से कम नहीं होनी
4: होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है,
6: ठीक है ना। जब जल्दी शादी होती है तो फिर बाल बच्चे में ज्यादा बंदा फंस जाता है, और वो
4: मतलब परेशानी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है ना वक्त के साथ साथ।
6: हाँ जी बिल्कुल जी, फिर वो देखे ना, मेरी भी शादी वैसे जल्दी हो गई थी, लेकिन मसला है, लेकिन जो अच्छा है ना सोच के जो आदमी को भी ना अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए।
4: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। ओके जी,
6: बहुत बहुत मेहरबानी, सबको मेरा सलाम जी,
4: अल्लाह सलाम। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे जो मैक्सिमम जो हमारे लिसनर्स हैं ना, जो कॉलर्स हैं, नाराज ना हो और मैं सबकी जो है ना कॉल्स साथ साथ ले सकूँ। और आज देखें, आज एक जो है ना मेल जो है ना जो मर्द, उन्होंने भी कह दिया मेरी शादी जल्दी हुई थी, नहीं तो अक्सर ये रोना जो है ना खवातीन ही रोती रहती हैं। एक ज़बरदस्त ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।

0: तेरी जिंदगी थी वो,
1: मेरी जिंदगी है तू।
2: जी वेलकम बैक। एक और गाना जो कि हमें जो आज के फरमाइश की थी हमारे लिसनर ने, उन्होंने कहा था लास्ट टाइम भी मैंने कहा था और आपने प्ले नहीं किया, तो आज मैं सबके गिले शिकवे मिटा देना चाहती हूँ। यहाँ पे आपकी फरमाइश जो थी दिल साडा लोए दाते नहीं प्ले करने जा रही हूँ। हे यू गो।

0: नहीं नहीं करेंगे, और आपकी हम करते हैं, आप हमारी मैम है और खूबसूरत प्रोग्राम करती हैं और अपना कीमती टाइम निकाल कर आती हैं, और आपका बंडल ऑफ थैंक, आपकी इंतजामिया का बंडल ऑफ थैंक। और बाकी आखिर में जाते जाते एक छोटी सी बात ये करूंगा कि रिश्ता कराने वाला मैच मेकर और जो वारा जिसे कहते हैं, वो उसकी तो कोशिश होती है कोई कोई दो दो दिल बस जाए, जो दो घर बस जाए, लेकिन अल्लाह ना करे कोई अगर कमी पेशी हो जाए रिश्ते में, तो जितनी बदवा और जितनी गालियां मैंने ये रवारे को और ये मैच मेकर को देते हुए सुना ना, बस अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफ बचाए। अगर कामयाब हो ये तो दुआएं बहुत ज्यादा, अगर नाकाम हो तो सबसे ज्यादा बददुआएं भी इसी की।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा आपने।
0: और आखिर में जाते जाते जिया अंजम साहब के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता फरमाए। और इसके अलावा अनिला बाजी की कॉल को मैं मिस कर रहा हूँ, फरी बाजी और रुद्वाना बाजी और रियाज भट्टी साहब और खान बाबा की कॉल को मिस कर रहा हूँ, और आपके तमाम सुपरहिट लिस्टरशिप को बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, हमारे फैमिली चैनल नंबर वन हिट एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान को कामयाब करे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और हम ऐसे ही इस फैमिली में आते जाएं और चाहे जुगनी की तरह रोशनी फैलाते जाएं। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: जिंदाबाद जी, क्या जबरदस्त जो है ना एक एनर्जेटिक किस्म की कॉल थी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं आजकल बहुत से इश्यूज ऐसे चल रहे हैं, हमें रोज एक नई न्यूज मिलने को आ रही है कि जी छोटी बच्चियों से को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उनको किडनैपिंग से लेके मर्डर से लेके डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस जो है हमारे सामने आ रही हैं। तो देखिए इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी जो है ना कभी कभार ऐसा होता है कि लड़कियाँ जो हैं दिल छोड़ देती हैं, ठीक है ना, कि उनको कोई और जब नजर नहीं आती ना कभी कभार और

रियाज भट्टी ने हमें मैसेज किया है और बहुत से मैसेजेस किए हैं बल्कि हमें, और फिरोज़ आलम जान लिखा है प्लीज़ आखिरी गाना चला दें राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में, मेरा ये भ्रम था। ठीक है, हो गया जी, मैं ये ज़रूर, बिल्कुल एक दो मिनट रह गए हैं, नहीं तो जो है ना नेक्स्ट सेगमेंट में ज़रूर मैं ये गाना प्ले करूँगी। ठीक है, ये हम क्यू शीट में अपने ऐड कर लेंगे और तब प्ले कर लेंगे। ठीक है, अब जो है ना, और रियाज भट्टी ने कहा सुपर शो, सुपर शो, थैंक यू वेरी वेरी मच, कहते हैं ग्रेट फैमिली टॉक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें फिरोज़ आलम ने कहा है नाइस आवाज़, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त जो है अपने अख्ताम को पहुँचता है, और कैसे ये जो वक्त है ये दो घंटे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो जी बस मैं यही कहना चाहूँगी जाते जाते कि अपना बहुत ख़ास ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने प्यारों का बहुत ख़ास ख्याल रखिए, और हमेशा ऐसे दरख्त लगाइए जिसकी छाँव में आपने नहीं बैठना। और जो है सांसें चलती रही, दिल की धड़कनों ने वफा की, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले बुध सेम टाइम सेम शो, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।

के मामलात से अनजान तो न था, इस हक सर था कोई मेहमान तो न था, थी जिनके दम से रोंग के शहरों में जा बसे, वरना हमारे

हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई थी और उसमें जहाँ पर कई दूसरे मामलात हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे, वहाँ पर ये तय पाया था कि हमारी जो इस वक्त बायलेटरल जो ट्रेड है वो सिर्फ 16 मिलियन डॉलर है और इसके मुकाबले में हमारे जो बामी ताल्लुकात हैं वो इंतहाई बरादराना और बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। लिहाजा ये 16 मिलियन डॉलर की जो ट्रेड वॉल्यूम है बायलेटरल, ये इसकी ये आटे में नमक के बराबर है। तो मैंने वहाँ पे ये तजवीज़ पेश की थी कि हमें ये MOU जो साइन किया है जिसमें ये तय पाया कि 2 सालों में हम 16 मिलियन डॉलर से 200 मिलियन डॉलर पर लेके जाएंगे, तो मैंने वहाँ पर ये तजवीज़ पेश की कि हम बजाय MOU के हम एक मुआहदा साइन करें आज, जो कि एक कॉन्क्रीट स्टेप होगा ये 200 मिलियन डॉलर की ट्रेड को हासिल करने के लिए। तो जब हम रास्ते में जा रहे थे लंच के लिए, तो मैंने अपने भाई जनाब प्रेसिडेंट उनसे बात की कि मेहरबानी करके आप इसको पर तवज्जो दें और अगर हम इसको पर मुआहदा हम साइन कर सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो मेरे भाई प्रेसिडेंट जापारोफ ने मेरी तजवीज़ को मंजूर किया और यहाँ पर हवाई अड्डे पे हमने एग्रीमेंट साइन किया है। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ।

0: Hi, this is FM 101.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, SMS वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: This is FM 101, where your spirit is set free.
3: 101 FM.
4: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
5: This is FM 101.
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। To the one above, FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio.

0: bilateral trade volume to $200 million. Pakistan and Kyrgyzstan today signed several MOUs and agreements for promotion of cooperation in diverse fields. Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Kyrgyzstan at a meeting in Bishkek have exchanged views on regional and international developments. Pakistan says India's rejection of award by Permanent Court of Arbitration raises concerns. Now, the news in detail. Pakistan and Kyrgyzstan have agreed to strengthen their economic partnership. An understanding to this effect reached during talks between the Prime Minister Shehbaz Sharif and Kyrgyz President Sadir Japarov in Bishkek today.
1: Hi, this is FM 101.
2: Mausme barsaat ke liye zaruri ehtiyati tadabeer. तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीकाजात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
3: This is FM 101, where your spirit is set free.
4: 101 FM.
5: मूसलाधार बारिश और शदीद झालावारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती है और खतरा बन सकती है। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
6: दिस इज FM 101.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101
7: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर। ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: FM 101। सुनते रहिए FM 101।
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then this magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: और अब खबरें।
1: हाय, दिस इज एफएम 101.1
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीकाजात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।

0: secure.
1: Join the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Hands-on workshops and awareness sessions across 16 cities of Pakistan. Register now at cyberhackathon.pk.
2: An initiative of Ministry of IT and Telecom and Ignite.
3: मूसलाधार बारिश और شدید ज़ालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
4: This is FM 101.1.
5: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर, तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
1: मूसलाधार बारिश और शदीद झालावारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
2: This is FM 101.1.
0: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: Sunte rahiye FM 101.
5: Smile and dial 111-111-111 FM.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो।
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन, एक घंटा।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Hi, this is FM 101.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर, तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके

0: किनारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
1: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
2: दिस इज FM 101.1।
0: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

ऐसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात वो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है ना, बात करनी ना तुझको सुनानी सोचो।

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदाम करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
1: मूसलाधार बारिश और शदीद झालावारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
2: This is FM 101.1
0: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

And then there's magic. One above. FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: वो एक्चुअली
1: जी
0: जी वो एक्चुअली अपनी दोस्त से बात कर रही थी ना कि
2: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक वन अबव एफएम 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: आपके लिए FM 101 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक म्यूजिक
1: एंड देन देयर्स मैजिक वन अबव FM 101
2: Coming up next, RJ Talks. On your radio dial, keep it locked. Coming up next, RJ Talks. On your radio dial, keep it locked.
1: There's music, and then there's magic. One above. FM 101.

ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वक्त हो चुका है 10:15 और आज है 2 सितंबर 2026 का सिन है। FM 101 रेडी पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। आपके मेरे साथ होता है वो दर जमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। आई लव दिस प्रोमो, आई वांट टू प्ले दैट अगेन। मैं क्या जरा एक बार ये आवाज सुना दूं, मैं थोड़ा टाइम पे आ गया अच्छा।

ऑल राइट जी, वक्त हो चुका है 10:20 और आज है जी 2 सितंबर 2000 26 FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। और आपका मेरे साथ होता है जी बुधवार जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। एंड वी आर प्लेइंग विद द हेडफोन, यहाँ पे हमारे हेडफोन में थोड़े से मसाइल आ रहे हैं। हाँ अब भाई अच्छी बात, बेहतरीन, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। आगाज़ गुफ्तगू है इन्हीं अल्फाज के साथ कि ज़िंदगी में हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, हमारे पास बहुत सारे मामलात होते हैं, हमारे पास देखने सुनने कहने के लिए बेशुमार अल्फाज हैं, हमारे पास बहुत सारे नज़ारे हैं, हमारे पास बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं, हमारे पास इमेजिनेशन है, तखयलात है, हमारे पास सब्ज़ बाग है किसी को दिखाने के लिए, हमारे पास ख्यालाती दुनिया है खो जाने के लिए, हमारे पास हसीन आँखें हैं डूब जाने के लिए, हमारे पास ना जाने क्या क्या है, क्या क्या बात कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे घूम सकते हैं, हमारे पास ताकत है, ख्याल है जिससे हम जो दिल में चाहता है वो बना लेते हैं, हर उस रूठे हुए को मना लेते हैं जो कहीं दूर चला गया हो और जो कभी हमसे बात ही ना करे उसे अपना भी बना लेते हैं। इतना कुछ है हमारे पास करने के लिए, वो हैव सो मैनी थैंक्स टू डू, वी कैन सो मैनी थैंक्स डू एंड डज एंड बस मत पूछे। मगर खुदा ने एक बड़ी खूबसूरत सी सलाहियत हमें दी है, वो ये है तारीफ करने की, प्रेज करने की, खूबसूरती को जानने की, जांचने की। किसी शय को देखते हैं तो बेख्तियार हमारे अंदर से एक सदा आती है, यार ये कितना खूबसूरत मंजर है, ये खूबसूरत जगह है, ये खूबसूरत नज़ारा है, ये खूबसूरत चेहरा है, ये खूबसूरत आँखें हैं, ये खूबसूरत लब लहजा है। खूबसूरती महज आँखों से नहीं देखी जाती, कानों से सुनी भी जाती है, हाथों से महसूस भी की जाती है और सूंघी भी जाती है। हवा से खमसा है हमें मिले जिनसे हम महसूस करते हैं, देखते हैं, छू के, टच करके, सूंघ के, देख के, सुन के, हर तरह से। इतना कुछ है हमारे पास, फिर उसके बावजूद हमारे बेशुमार गिले शिकवे हैं, मेरे भी बहुत सारे गिले शिकवे हैं। बट आई बिलीव इन द एंड इफ यू हैव नथिंग बट यू हैव ऑल द सेंसेस, आपके पास कुछ है या नहीं है लेकिन महज आपके पास ये तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं, जिनको किसी भी चीज से खरीदा नहीं जा सकता, चाहे तो बेचा नहीं जा सकता। इतनी खूबसूरत चीजें, इतना कुछ है हमारे पास, और क्या ही चाहिए। शुक्र के दो कलमात अगर जबान से निकलते रहे, इन्हीं चीजों को देख के जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। जिंदगी में तमाम तर आसानियां तभी आती हैं जब हम खुशी की तलाश के लिए उन मुश्किलों को पकड़ना और थामना छोड़ दें। वो कहते हैं कि तमाम दिन मैं परेशान रहता हूँ खुशी के लम्हात के लिए। वो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हम क्यों ढूंढते फिरते हैं उनको बाहर, वो होते ही नहीं बाहर। खुशी हमेशा आपके अंदर से आती है, मेरे अंदर से आती है। ये हवा से खमसा का इस्तेमाल बाहर दूसरी अशिया को देखने के लिए किया जाता है। एक वो नज़र है जो खालिक ने मुझे दी जिससे मैं अपने अंदर झांकता हूँ, आप अपने अंदर झांकते हैं। एक वो समात है जिसे मेरे अंदर की आवाज़ सुन दी जाती है, जिसे मैं कहता हूँ मेरे ज़मीर की आवाज़ आई, वो अंदर से कहीं से आती है। और वो नज़र जो मेरा अंदर अपने आप को देख लेती है, अगर इन दो चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूँ ना, दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, जिंदगी आसान हो जाएगी। कुछ हो या ना हो, रात को सुकून की नींद आएगी। जाने वाले चले गए, मैं हूं, मुझे मोहब्बत रहेगी। मैं पसंद करता था, मैं पसंद करता हूं, मैं पसंद करता रहूंगा। मैं खुश था, मैं खुश हूं, मैं खुश रहूंगा। मैं रोना चाहता हूं, मैं रोता रहूंगा। सो इट डिपेंड्स ऑन मी, ये मैं का सारा मामला है, आपने क्या करना है, मैंने क्या करना है। मैं तो बस महज यही कहता हूं, कुछ करें या ना करें, शुक्र अदा करते रहें जो मुयस्सर है उस पे आपको और मुझे।
हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि हम हैं, बस इससे आगे और कोई बात नहीं, इससे आगे क्या ही बात की जा सकती है। थोड़ी देर के लिए आपने सोचना, मैं भी सोचूंगा। दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। दिस इज आज डॉक्स, यू कैन कॉल मी। जीरो 4221111 आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0421100101। आप मुझे बताएं, अगर आपके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं तो आप SMS करके अपना फीडबैक दे सकते हैं, कोई भी बात कहना चाहें। और एक मेरी लिसनर हैं जो मुझसे शदीद किस्म की खफा है और मेरा प्रोग्राम भी सुनती हैं, बड़े सख्त किस्म के अल्फाज भी बोलती हैं SMS करके मुझे मज़ा भी आता। आप मैसेज कर सकती हैं कुछ भी अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, 0101 लिखना, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना, इसको भेज देना 4471 पे। लेट मी नो यू गाइस आर लिसनिंग। और अगर इंटरनेट की रसाई है, आपने फेसबुक पे जाकर सर्च करना RJ_DOX, मेरी लाइव स्ट्रीम मिलेगी, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा सर्च कर सकते हैं FM 101 लाहौर एंड FM 101 चैनल पाकिस्तान। हिट मी विद योर कमेंट्स एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक, कुछ भी। मेरा कैनवस बहुत बड़ा है यार, मौजू में जो भी रखूँ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मौजू वैसे मैं रखता नहीं, सवाल ही पूछता हूँ। तो एक सवाल होता है मेरे पास जो मेरे अंदर से कहीं से आती है सदा, उसी पर बात करता हूँ, तो उसी पे बात होगी, क्योंकि मैं नारा मस्ताना, मेरे अंदर भी कभी कभी जो है ना ऐवें खुद साख्ता सूफी जाग जाता, मैं भी समझता मैं बड़ा बड़ा पन्ने खां हूँ, मुझे भी लगता है लेकिन मज़े की बात है लगता है हूँ नहीं and I know myself what I am. Stay connected, love yourself, trust me, कुछ करें ना करें love yourself, कर भी कहाँ जाना।

0: ऑल राइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 10:35 और आज है जी 2 सितंबर 2026। RFM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे टॉक्स। एंड ये साहब का मेरे साथ होता है जी बुध और जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। एंड कोई ना कोई सवाल होता है मेरे पास। एंड बहुत शुक्रिया जी जिन लोगों ने मुझे मेरी लाइफ में मैसेज किए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अहमद, आपका भी मैसेज आया, अहमद भट्ट, सच अ स्वीट बडी। और हमारे पास जो इंटर्न्स थे उनमें भी बड़े अच्छे अच्छे थे, हमारे इंटर्न्स सारे ही अच्छे थे। इनफैक्ट अली रज़ा हमारे आरजे हैं, आरजे अली रज़ा कहते हैं। पाजी कभी हाथ भी लिया करो, नहीं मैं लड़ना ही है, मैं नहीं हंसना। कवल नाज हैं, कैसे हैं आप? हाँ, लेट मी री स्टार्ट द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वक्त हो चुका है 10:36। मैं हूँ आरजे डॉक्स। आप लोग खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? मैंने प्रोग्राम रीस्टार्ट कर दिया, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं टाइम से पहले आ गया आज, है ना? ओके सॉरी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। अवैस हैं, उनका मैसेज आया हमारे पास कल पे, मोमिन ने इस्लाम किया, वालेकुम अस्सलाम। एंड रिजवान सिद्दीक, इस्लाम वालेकुम, लव यू सर, लव यू टू ब्रो। अहमद भट्ट, दैट्स ग्रेट इफ यू आर फाइन। शकील अहमद ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप बताएं, आप खैरियत से हैं? फराब जाल ने सलाम किया, गुड टू सी यू, थैंक यू वेरी मच। कह रही हैं लुकिंग गुड, सारे कह रहे हैं लुकिंग गुड। गैप वक्फे से देखा जाए ना बंदा अच्छा लगता है। ये तो मतलब है मैं छुट्टियां ही करे आकरम। बड़े जीदार हो साहब, दर्द को दर्द से मार रहे हो। हाँ जी, ये होर के में मरेगा जी, और किसी और तरीके से नहीं मरता। गुलाब, गुलाब, गुलाब गाफ से, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम, आज के बाद मैं भी बाबू शोना वाली पोस्टें करूंगा बस। ओके, करी जाओ। किन्ने रोके, अमरीना बिलाल ने वेलकम किया, वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। एंड मेरे साथ इस वक्त यार तुम्हारी स्लॉट नहीं है, तुम मेरे साथ कर कह रहे हो वैसे। इस्लाम है मेरे साथ बैठा हुआ, हमारा इंटर्न है और सुन यू कर रही है एज एन आरजे है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने शो में जो
0: बुलाया। नहीं, आप मेरे शो में आए हैं, गलत लफ्ज नहीं बोलते। आपने बुलाया, मैंने बुलाया, मैंने नहीं बुलाया। कोई हूँ 4 घंटे में इतने ही हैं, ये 2 बजे तक आप लोगों का सर खाने वाला है।
1: आपके साथ और बस मैं सुन रहा था कि आप बड़े जबरदस्त तरीके से आज तारुफ भी बहुत अच्छा करवाया शुरू में, और फिर उसके साथ जो है वो आज पैगामा जो है वो पहले ही पढ़ दिए, ये मतलब कुछ थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है।
0: वालेकुम अस्सलाम, जीशान साहब आए हैं, पायल की आले, मैं ना पढ़े बाद में ना लड़ेगा तो मेरे मैसेज नहीं पढ़ता मेरा दोस्त है। नहीं सर, मैं पढ़ लिया। हाँ जी जी
1: सर, पैगामात आज शुरू में ही ऐड कर ली, ये क्या सीन था? मतलब पहले तो आप जो लोगों के मैसेज होते हैं वो तो आखिर में ऐड करते ना? नहीं,
0: मैं मूड पे करता हूँ,
1: मतलब जब दिल किया
0: मतलब आ गए, पढ़ दिए साथ साथ, पढ़ लिए बस, ठीक है ना। हम क्यों मुंतजर रखें उनको जो किसी का इंतजार करना पसंद नहीं करते।
1: क्या बात है। तो शुरू में आप जिक्र कर रहे थे जो हमारा है कि हर बात पे हमें शुक्र करना चाहिए, शिकवे नहीं करने चाहिए।
0: हाँ।
1: तो मुझे उससे लग रहा था कि जो हमारे पास जो नेमतें हैं, तंदुरुस्ती जैसे कहते हैं कि 1000 नेमत होती है, हमें कम से कम इसके ऊपर बड़ा जो है वो अपने आप को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि कम से कम हमारे पास सेहत मौजूद है।
0: आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन आगाज जो होता है ना, आगाज करते हैं मेरा नाम है इस्लाम,
1: मतलब सीरियस बातें नहीं करनी।
0: मेरा नाम है इस्लाम।
1: जी, मेरा नाम इस्लाम।
0: मैं यहाँ पे, आप मेरी आवाज पहली दफा सुन रहे हैं यहाँ पे इंटर्नशिप के अलावा, को थोड़ा अपना तारुफ कराओ, सुनने वाले नु पता लग गए।
1: ये तो मैं भूल गया।
0: हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे साथ प्रोग्राम करना है तो फिर ये चीजें मैं आपको नोट करवाऊंगा।
1: बिल्कुल
0: ठीक है। सईदा बिनते खदीजा आई हैं, इस्लाम किया। सागर खत्री आए हैं, इस्लाम और प्यार, वालेकुम इस्लाम, मैं ठीक हूँ। यस, बड़े दिनों के बाद आपने देखा, फिर मेरे में कुछ चेंज नजर आ रहा है आपको? है नहीं आ रहा? हाँ जी, कौन है हमारे साथ?
1: ओ, सर मेरा नाम है इस्लाम और आप मुझे पहली दफा सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान में सरसद के साथ। मैं एक्चुअली इंटर्नशिप कर रहा था यहाँ पे रेडियो पाकिस्तान में, और फिर मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता माइक के ऊपर आ गया, और अब फाइनली जो है वो आपके साथ शो में बैठा हूँ।
0: हमारे पास हैं और भी इंटर्न्स हैं जो कि आप जल्दी सुनेंगे आज

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11। ओह माय गॉड, आई मिस द न्यूज ब्रेक मैन। ओह शिट, ओह डैम। एनीवेज 11:01 हो गए और खबरें निकल गई। 2 सितंबर 2026 का सीन है। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। और आज कमाल लुक है माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच सोहेल। सवेरा फलक हेलो, आपके हेलो से हेलोवीन वाली क्यों मुझे फील आ रही है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर काइंड मैसेज। एंड सवाल ये है कि अगर खूबसूरती का जो मेयार है जो आपको सिखाया गया, मुझे सिखाया गया, अगर वो ना होता तो खूबसूरती क्या होती? दिस इज द क्वेश्चन। और इसके लिए मैं कॉल्स भी लूंगा। थैंक यू वेरी मच शाहजेब, आपका बहुत शुक्रिया। कॉल्स लें। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, आपर बात कर रहा हूं
0: सोना। कौन बोल रहे? जी
1: लियाकत बात कर रहा हूं।
0: लियाकत साहब कैसे हैं?
1: शुक्र लगा भाई जान, आप बताएं ठीक है?
0: हां मैं भी ठीक हूं। बड़े अरसे के बाद आपकी कॉल आई।
1: हाँ वाह, ऐसे ही ऐसे बाबा अरसे के बाद ही सुना भी, बाबा अरसे के बाद ही
0: ना। अच्छा जी, बड़ी गल है।
1: तो खूबसूरती की बात कर रहे हैं आप?
0: हाँ मैं खूबसूरती की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ रहती थी, पढ़ती भी इकट्ठे थे क्लास में।
1: खूबसूरती
0: देखिए
1: कई जगह पे नजर आती है।
0: मुझे भी बताएं किधर है, मैं बड़े अरसे से ढूंढ रहा हूँ। कोई अगली दफा नजर आए ना तो उसका नाम नंबर जरा कोई इंस्टा कोई स्नैप कोई कोई रापता कुछ ले लेना,
2: कमेंट कर देना हमें।
0: जी
1: मैं ये कह रहा हूँ कि खूबसूरती इंसान की बातों पे भी होती है, कपड़ों पे भी होती है, ठीक है? और खूबसूरत सोच होनी चाहिए, बस ये सार है।
0: खूबसूरत सोच होनी चाहिए।
1: हाँ, जिस तरह सोचेंगे ना आप, जितना सोचेंगे
0: ओके,
1: और उस तरह खूबसूरती बिखरती जाएगी
0: ओके।
1: और खूबसूरत नहीं सोचेंगे तो फिर वो आप समझदार वो फिर ऐसे ही होता है।
0: मैं समझदार होता तो ये मैं सवाल आपसे पूछता।
1: अच्छा देखिए, एक होता है खूबसूरत,
0: मुझे नजर नहीं आ रहा, सुनाई दे रहा है।
1: एक होता है खूबसूरत, एक होता है हसीन।
0: एक है खूबसूरत, एक है हसीन, क्या फर्क है दोनों में बताएं? हेलो
1: जी जी।
0: हाँ जी हाँ जी, बताएं फर्क क्या है दोनों में?
1: मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताएं क्या दोनों में।
0: मैं तो खुद आप लोगों से

0: पूछना खूबसूरती क्या होती है?
1: नहीं, वो आपने खूबसूरती की बात की है, मैं हसीन की बात कर रहा
0: हूँ। तो मुझे खूबसूरती का नहीं पता तो हसीन का कैसे पता होगा? फिर अगर मैं हसीन बताऊंगा आप कहेंगे फिर जमील का बताएं। फिर हसीन और जमील दोनों का पूछ लेंगे, फिर मैं दोनों का कैसे बताऊंगा?
2: पहले आप हमें समझाए ना कि हसीन क्या होता है।
1: ये भी अच्छी बात है, ना कहीं से कहीं चले जाती है बात। हाँ,
0: थैंक यू वेरी मच लियाकत साहब, बहुत अच्छा लगा।
1: अच्छा लगा भाई जान आपसे बात।
0: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अल्फाज गुफ्तगू इनके नज़दीक खूबसूरती का मेयार है। अच्छा, सवेरा फलक कहती है आई एम फ्रॉम कराची। ओके, विश टू सी कराची, आई हैवंट बीन देयर, आई रियली वांट टू गो देयर। सोहेल थैंक यू वेरी मच जी, आपने कहा हेयर स्टाइल जचता है आपको, अच्छा थैंक यू वेरी मच। अस्मा कौसर हैं, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू, आई एम परफेक्टली फाइन, व्हाट अबाउट यू। सवाल यह है कि खूबसूरती का कोई मायार ना होता। अब खूबसूरती का जब भी जिक्र आता है ना तो कहते हैं देखने वाले की आंख में होती है खूबसूरती। अब मजेदार बात यह है कि आपकी आंख अगर आपका दिमाग काम ना करे बेकार है।
2: तो फिर क्या?
0: लेकिन सिर्फ एक रिफ्लेक्टर है, ओनली अ रिफ्लेक्टर। आप देखें तस्वीर बनेगी वापस चली जाएगी। वो जी देखने वाले की आंख में होती है, दिमाग के अंदर आपके मायार जो होते हैं उसका तायुन होता है। यू डिफाइन अ स्टैंडर्ड, देन यू डिफाइन सो मेनी स्टैंडर्ड्स, एंड उस पे फिर आप जज करते हैं कि इसकी आंख खूबसूरत, इसकी नाक खूबसूरत, इसका जिस्म, इसके होंठ, इसके गाल, इसके बाल, इसकी बातें,
2: इसके नैनक,
0: इसके नकूश, इसका उठना बैठना, ये चीजें खूबसूरत हैं। लेकिन वो आपके दिमाग में कहीं होता
2: है
0: और दिमाग में बिठाया जाता है। जिस तरह से मैंने पहले आपसे अर्ज की कि वो जो कबाइल हैं जिनमें बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी गर्दनें, उनके बच्चों के दिमाग में बिठाया जाता है। आप, मैं, नुमान नसीर भी आए हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम। अगर हम फर्ज करें अफ्रीका में पैदा हुए होते, वैसे थोड़ा ही फर्क है, जिड्डा को मैं काला सी ना, थोड़ा ज्यादा लेट पैदा होता मैं उत्थे ही जाना सी।
2: हाँ, थोड़े गंदे भी है।
0: अफ्रीका ही जाता फिर मैं, तो वहां पे जाके मेरे भी खूबसूरती के मेयार बदल जाते। मैं कहता हूं ये क्या यार, एशियन लड़कियां छोटी छोटी गर्दन वाली, बड़ी गर्दन वाली लड़की होती है खूबसूरत
2: हमारे लिए लेके।
0: तो मेरे दिमाग में मेयार होता ना, आंख का काम है देखना, आंख इन्फॉर्मेशन लेके दे देती। सो आई वांट टू चैलेंज द थ्योरी, ये जो थ्योरी है ना कि देखने वाले की आंख में नहीं होती भाई, ये आपके दिमाग के अंदर, आपका दिमाग बताता है, आपके दिमाग के अंदर वो फीड हो जाता है। अगर वो फीड ही ना किया हो
2: तो फिर क्या फायदा,
0: फिर आपके जहन में क्या होता
2: पता ही नहीं चलेगा,
0: फिर किस तरह से होता। फिर उसी तरह वो जांगली की तरह से, जिस तरह से वो पहली दफा किसी ने, वो टारसन की बात करेगा किसी और इस तरह के करेक्टर की जिसने पहली दफा अपने जैसा इंसान देखा जो जंगल में पैदा हुआ, उसके बाद उसने उसके नकूश को हाथ लगा के देखा, कहिए तो मेरे जैसा है, मेरे जैसा है। लेकिन उसे खूबसूरती का अंदाजा नहीं था, उसके अंदर पहली चीज क्या ट्रिगर हुई, सिमिलैरिटी,
2: कि ये
0: मेरे जैसा है, इसके जिस्म की वजा कता, उठना बैठना मेरी तरह का है। वहां से अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हुई। उस अट्रैक्शन के बाद उसके जहन में क्या आया कि इसके अंदर बाकी चीजें भी मेरे जैसी होंगी। साइकोलॉजी इसको कहती है हालो इफेक्ट, एच ए एल ओ। ये इफेक्ट क्या होता है, आप पे मुझ पे भी होता है। मैंने किसी को देखा मुझे अच्छा लगा ना, मुझे किसी की खामोशी अच्छी लगी, खामोश देखा और मुझे अच्छा लगा, देन आई रियलाइज हालो इफेक्ट क्या करता है, मेरे अंदर स्केचिंग करना शुरू करेगा। अच्छा ये खामोश तब है ये कॉन्फिडेंट होगा, अच्छा ये खामोश तब है ये जरूरत के वक्त बात करेगा, मुख्तसर बात करेगा या करेगी, ये बिला वजह मुझे ना तंग करेगा ना तंग करेगी। इस तरह की और चीजें, इसके पास ख्यालात के बहुत सारे अंबार होंगे, बहुत तखयलाती ताकत इसमें बहुत ज्यादा होगी, बहुत कुछ होगा। तो क्या कहते हैं कि जब आपको किसी एक की कोई चीज पसंद आ जाए, किसी फर्द की, तो आप बाकी सारी क्वालिटीज अच्छी अच्छी उसके अंदर तलाश करना शुरू कर देते हैं अनइंटेंशनली।
2: ये बात
0: होता है, सही है,
2: शुरू शुरू में शायद ऐसे होता है,
0: शुरू शुरू में ऐसे ही होता। अच्छा, आप कुछ कहने लगे थे, मैंने आपको बोलने नहीं दिया।
2: सर ये फिर मेरा आपसे भी ये सवाल आ जाता है, आपने जिस तरह से कहा ना कि हमारे जो दिमाग के अंदर आता है, जो हम सोचते हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर खूबसूरती के मायारात हैं, स्टैंडर्ड तय हुआ है, उसके मुताबिक हम उनको परखते हैं कि वो खूबसूरत चीज़ है भी या नहीं। तो हम पहले आंखों से देखते हैं क्या, जिनकी आंखें नहीं होती उनके लिए खूबसूरती कुछ नहीं होता उनके लिए?
0: बहुत अच्छा सवाल है, यही तो मैं कहता हूँ।
2: तो फिर जो आपका पॉइंट हुआ कि हम जो दिमाग के अंदर मायारात बना के बैठे हुए खूबसूरती के, फिर वही है जैसे आपने टार्जन की मिसाल दी कि उसने जो है ना वो टच किया और फिर उसने कहा कि हाँ ये मेरी जैसा है, तो खूबसूरत
0: तो ऐसे ही है।
2: इसका मतलब ये कि नजर का कोई ताल्लुक नहीं है खूबसूरत।
0: मैंने इसीलिए कहा मैं थ्योरी चैलेंज करना चाहता हूँ, देखने वाली आंख में नहीं होती, सोचने वाले दिमाग में होती खूबसूरती। वो देखने वाली आंख नहीं है, वो दिमाग है। मैंने एक शय को देखा नहीं, मुझे कहा गया फलां चीज हो तो बड़ी खूबसूरत है। अब मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की, मैंने कहा अच्छा ये होती है। फिर मैंने जाके कहा यार आज जब मैं कुड़ी देखी, शी वाज सो प्रीटी मैन, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, और मैं देखता ही रह गया। क्यों? कि मेरे जहन में पहले था कि बड़ी आंखें खूबसूरत होती हैं, वो मेरे जहन में बैठ गया ना। ये बिल्कुल तोहमात की तरह है जो जहन में बैठ जाती हैं, कि अगर काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो रास्ता बदल लेना,
2: तो
0: तोहमात की तरह बैठ जाते हैं खूबसूरती के मेयार।
2: उसको मान ले, क्या बात,
0: सख्त बात तो नहीं कर गया मैं, कॉल ले लेता हूँ। हेलो,
2: सीरियस हो गया।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: जनाबे अली,
1: बहुत खूबसूरत है मेरा डांस।
0: हाय हाय,
1: बहुत खूबसूरत है मेरा डांस, खुदा ऐसे गुफे बनाता है काम।
0: हाय हाय हाय, क्या बात,
1: बुलाने मोहतरम।
0: मैं कहता हूं जिदे शो च जांदे हो ओदी तुसी तारीफां चुक के रख दे पूरियां।
1: आप अंदर से भी खूबसूरत है और बाहर से भी आप खूबसूरत है।
0: शुक्र है आप सज्जन नहीं है, नहीं तो आपने खोल देना था मुझे।
1: आप उत्पादों के साथ है, फलाव पेश करता हूँ इसके हाथ मालक
0: आप कहना चाह रहे हैं आप बहुत उस्ताद हैं। मैं समझ रहा हूँ आपके जज्बात, मुझे समझ आ रहे हैं।
1: उत्पाद मोहतरम में एक नजम लिखी हुई है
0: जी, सुनाइए।
1: आप इधर दो लाइन में है, याद है
0: जी? सुनाइए सुनाए सुनाए।
1: वो चांद की सूरत है नगुंचे की तरह है, आपको कह रहा हूँ।
0: हाँ हाँ सुन रहा हूँ।
1: वो चांद की खूबसूरत है नगुंचे की तरह है, इंसान है मेरे जिस्म के हिस्से की तरह है।
0: ओए,
1: वो चांद की सूरत है नगुंचे की तरह है, इंसान है मेरे जिस्म के हिस्से की तरह है। दांत में उसकी मोहब्बत में महकता ही रहूंगा, दांत में उसकी मोहब्बत में महकता ही रहूंगा। वो शख्स गुलाबों के जजीरे की तरह है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, छा गए सर, छा गए, थैंक यू वेरी मच।
1: दो बंदों को सलाम देना चाहता हूँ। एक तो मेरी बेटी है, ये आती है मंदरा से, आती है जी आपके शो में, कभी कभी मेरा ख्याल आपके शो में आती रहती है। ये सिद्रा कुरैशी है बेटी, मंदरा से आती है। इसके अलावा हमारे जनाब शायद इंसारी साहब है हैदराबाद से, आपका शो भी सुन रहे हैं।
0: शायद इंसारी साहब का मैसेज भी आया हुआ है जी, बहुत शुक्रिया शायद साहब,
1: शो सुन रहे हैं जी। और मेरे रूहानी उस्ताद है शायद इंसारी साहब।
0: अच्छा, आपके रूहानी उस्ताद हैं
1: जी? मेरे रूहानी उस्ताद है ना, तो आप तो उस्तादों के उस्ताद है ना। तो इसके अलावा उस्ताद मोहतरम में मेरी बेटी है, ये लाहौर से इस्लामाबाद उनकी शादी हो।
0: आपने दो नाम कहे थे, आप तो चार पाँच बोल गए
1: जी। उस्ताद मोहतरम वो है रिमशा बेटी है इस्लामाबाद से, जो लाहौर से शादी हो गई है, इस्लामाबाद आ गई है, हमें सलाम देते हैं, मेरी बेटी है
0: जी। ठीक, थैंक यू वेरी मच।
1: अलावा मेरी एक और बेटी है 101 की कमांडर सदफ रानी, सलाम और सलूट पेश करता हूँ।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
1: उस्ताद मोहतरम अगर कोई गलती हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़ कर माफी करता
0: हूँ। चलें, कर दिया माफ, कोई नहीं।
1: पाकिस्तान जिंदाबाद, आजाद जिंदाबाद, जल का मिसला।
2: सर अब वाकई इन जैसे शहीदों के उस्ताद हैं।
0: मैं तो तुम्हारा भी फिर हिस्सा दूँ।
2: हाँ नहीं ये तो
0: अच्छा ही 4471 पे मैसेज है, सलाम है मोहब्बत, बिस्मिल्लाह करा, सदके जामा चांद कैसे हैं चंदा, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। आज कितने दिन बाद ट्यून किया, आप लास्ट वीक नहीं आए थे, सोचा था अब कभी नहीं एफएम सुनना। अच्छा जी, आज फिर से पागल दिल को इंतज़ार था आपका, आपको पता है आपके जस्ट फ्यू टाइम्स देखना है, बट इस कदर देखा है कि आज आप आए, आपने बोला ऑल राइट जी, और आपका प्यारा चेहरा, खूबसूरत आंखें मेरे सामने आ गई, बहुत बहुत बहुत दुआएं आपके लिए। अच्छा इतनी तारीफें, अल्लाह आपकी प्यारी सूरत, प्यारी स्माइल के लिए, ये खूबसूरत आंखों की चमक के लिए, क्या बात है जी। ये देखें ना आप, हर बंदे के दिमाग में खूबसूरती का मेयार है, जिन्होंने मैं भी चंगा लग रहा, और आपकी मेहरबानी है, आप इतना प्यार से मैसेज करती हैं, बहुत शुक्रिया अस्मा जी। अच्छा जी, सवाइबा, ये किस किस्म का नाम है, पहली दफ़ा सुना, बड़ा डिफरेंट नाम है, क्या यही नाम मैंने ठीक प्रोनाउंस किया या नहीं किया, मुझे इस पे आपने बताना, मुल्तान से।
2: इसका मतलब भी पूछे,
0: मैंने बता, इकबाल हमेशा देर से आता है, आरजे फॉक्स। अच्छा लिखा है आपने, फॉक्स। आपका अंदाजे गुफ्तगू बहुत अच्छा है, पहली बार आपको मैसेज किया है, लास्ट 2 ईयर से आपको सुन रही हूँ, बहुत शुक्रिया। आपको यक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या कहेंगे, जबकि आप जानते हो कि वो आपका नहीं हो सकता। मैं कहूँगा या मैं आपको लिख के पूरा एक किस्सा कहानी ना सुना दूँ, इस पर यकीन करें, एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या क्या कहूं मैं अब आपको, क्या क्या कहूं, डोंट आस्क मी। एक गालिब ने ठीक कहा था, एक आग का दरिया है और डूब के
2: जाना
0: है, यही है कुछ इसी तरह का, एक जबर मुसलसल है जिसमें आपको जिंदगी काटनी है और मुसलसल काटनी है, अगर मोहब्बत है तो, वरना क्या होता, वक्ती अट्रैक्शन होती है, आपकी जहाँ शादी हुई ख़त्म हुई, या कोई और बंदा आया ख़त्म हो गया, तो जहाँ पे आपके इमोशंस इस तरह से फ्लक्चुएट हो जाए ना, तो वहाँ आपने समझ जाना आपको पहले मोहब्बत हुई नहीं थी। बड़ा क्लियर कह रहा हूँ मैं फातिमा सर, खूबसूरती का पता सर फेस के नकूज से नहीं बल्कि इंसान के दिल और इखलाक से पता चलता है। अब दिल और इखलाक को जानने के लिए तो इंसान के साथ ताल्लुक में आना पड़ेगा, फिर ही जान पाएंगे। इसके बारे में क्या ख्याल है, आप लोगों के मैसेजेस लाइव वाले भी पढ़ता हूँ, पहले 4471 के मैसेजेस पढ़ लूँ। सर प्लीज जाने की बात ना किया करें, सर एक रिक्वेस्ट है, मेरी जिंदगी है तू नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में प्ले कर दें, इट्स अ डेडिकेशन टू यू। अच्छा ठीक है, ठीक है जी, ठीक है फातिमा। अब्दुल नूर हाशमी साहब रिवाज गार्डन से सलाम आदाब, तस्लीम जी तस्लीम। सीरत ना हो तो आरजो रुखसार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फकत रंग रह गया। वाह वाह बहुत अच्छा। चंदा माही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्स, कैसे हैं आप, बहुत दिनों के बाद आज आपकी स्वीट आवाज़ सुनी, अच्छा लगा सर, जो आँखों को प्यारा लगे वही खूबसूरत है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। सवाइबा मुल्तान से अर्ज किया है, दीदारे यार हसरत भी क्या चीज़ है साहिब, नज़रअंदाज जितना करो मुसलसल नज़र उसी पे पड़ती है। वाह वाह जवेरिया फ्रॉम इस्लामाबाद, शो अच्छा है आपका, थैंक यू जवेरिया, थैंक यू फॉर योर मैसेज। और अभी यहाँ पे कोई ट्रैक लगाते हैं और उसके बाद आते हैं, कौन सा सुनोगे इस्लाम ट्रैक। और सवाल मैं फिर से दोहराता जाता हूँ, सवाल जो हमने आपसे किया है वो ये है कि खूबसूरती का अगर कोई मायार आपको ना पता होता तो खूबसूरती क्या होती, इसके बारे में ये सवाल है यार मेरा, आई रियली वांट टू नो अबाउट इट। मुझे कोई अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ ज़रा रिकंस्ट्रक्ट करूँ अपने अंदर जो खूबसूरती के मैं आ रहा है, मैं सोचना शुरू करूँ अगर नाक की जगह होंठ होते, आँखों की जगह कान होते, कानों की जगह आँखें होती, फिर क्या होता, क्या मुझे खूबसूरत लगता कोई, मैं खुद भी अगर ऐसा होता, आप भी ऐसे होते, फिर कैसा होता,
2: तो शायद मायारा कुछ और होते,
0: मायार कुछ और होता ना। अक्सर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, एक साहब थे, उनको निकाल दिया गया ना उनके इलाके से, उन्होंने कोई खता की और बादशाह सलामत ने कहा इसकी नाक काट दो और निकाल दो,
2: नाक काट दो।
0: वो भाग गया वहाँ से, भाग गया और बच गया। वो एक ऐसे कबीले में पहुँचा जहाँ पे लोगों की नाक थी नहीं, वो गालिबन सारे वही थे कि सारों की नाक पहले कटी हुई थी। वैसे ही भी मज़ेदार है यदि नाक बड़ी ऊंची काट दे ना, नाक कटी हो ना नाक भी नहीं होगी, फड्डा भी नहीं होगा। वो साहब वहां पे पहुंचे तो लोगों ने देख के मजाक उड़ाना शुरू कर दिया,
2: इसकी नाक
0: ओके वो देखो नाक वाला,
2: नाक वाला आ गया।
0: वो पहले थोड़ा डिफेंड करता रहा, उन्होंने कहा तुम सारे पागल हो, ये सही चीज है, नाक होनी चाहिए,
2: मतलब ये खूबसूरती की,
0: ये खूबसूरती का मियार होता है। उन्होंने कहा तू पागल है, नाक नहीं होनी चाहिए, ये खूबसूरती का मियार है। बाय द टाइम क्या हुआ, उसने भी कहा अच्छा मेरी नाक काट ही दो,
2: उसने भी कटवा दी,
0: उसने फिर नाक कटवा दी, फिर वो उनमें उन जैसा हो गया,
2: वो भी खूबसूरत हो गया,
0: फिर वो भी खूबसूरत हो गया। सो दिस इज व्हाट खूबसूरती का मियार क्या है,
2: क्या बात।
0: आई वॉन्ट टू रिकंस्ट्रक्ट इट। कौन सा गाना सुनना पसंद फरमाएंगे सर
2: आज आप? अपना कोई फेवरेट लगा दे, जो आपका फेवरेट।
0: क्या लगाऊं यार, ये चलते हैं, यही सुनते हैं, तेरा मेरा प्यार
2: मुश्किल
0: है ना, ये सुनते हैं, या मेरी जिंदगी है तू, नहीं तेरा मेरा प्यार सुनते हैं। वक्त हो चुका है 11:21, 2 सितंबर 2026 के सन है, दिस इज आज डॉक्स प्रोग्राम नाइट थेरेपी, जिसमें आपका मेरे साथ होता है बुध और जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। और आज मैंने जो आपसे सवाल पूछा, अगर खूबसूरती का कोई मायार ना होता आपके भैया मेरे पास, तो खूबसूरती क्या होती? AR Elite Enterprises, जबरदस्त बॉस, जबरदस्त, यू डिजर्व दिस प्रेज सर, ममनून मशकूर, थैंक यू। सुलेमान चांडिया बलोच, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? सर इतनी तारीफ कहीं नजर ना लग जाए, है ना, नजर लग जाए। Anyways, gonna play this track. Don't go anywhere. I'll catch you back after this track. And I'll be waiting for your call 0422111001 0421100001. और अगर आपके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही है, आप मुझे SMS करके बता सकते हैं जी, कोई भी बात, कुछ भी एनीथिंग। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 101 लिखें, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम लिखें, इसको भेज दें 4471 पे। एंड यस, मेरी लाइव स्ट्रीम है RJ_DOX डॉक्स लिखेंगे, फेसबुक पे सर्च करेंगे, वहां पे आ जाएगी, हिट मी विद योर कमेंट्स
3: जैसा।
0: ओ या, एंड इसके अलावा मेरी पोस्ट है जी, पोस्ट पे भी आ सकते हैं, FM 101 लाहौर सर्च कीजिए, FM 101 चैनल पाकिस्तान, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ के आके कमेंट शामिल करते हैं। एंजॉय द नंबर, क्या बात है।

0: हाँ लॉयड जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:29 FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे नॉक्स, और आपके मेरे साथ होता है जी बुध और जुमेरात की शब रात 10 से 12 बजे तक। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लाम, और बात चल रही है, सवाल आपसे पूछा, अगर कोई स्टैंडर्ड ना होता, कोई मायार हमारे पास ना होता खूबसूरती को परखने का, जांचने का, जानने का, पहचानने का, तो फिर खूबसूरती क्या होती। एंड किसा फातवा सलाम किया द डॉक्स, वालेकुम अस्सलाम रिजवान सदीक, नो रिप्लाई। सर जी आपकी सर जी, लाइफ इज अ गेम, एक्ट लाइक अ नूब, प्ले लाइक अ हैकर। यार बड़ी पबजी वाली बात की है,
1: पबजी की बात आ रही है,
0: मैं पसंद आई ये बात है ना। मैं भी वैसे कोशिश करता हूँ ना, आई लव, मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक प्लेइंग गेम्स, यू नो, ट्रॉय, रोम, टोटल वॉर, और अभी पिछले दिनों में ट्रॉय भी खेल रहा था। पबजी तो खैर चलती रहती है, खेलता ही रहता हूँ। अभी मैं मैसेज करता हूँ फेसबुक के, फिर उसके बाद वापस आके आप लोगों की कॉल्स लेते हैं। एंड आज डॉक्स वाइब्स, थैंक यू फॉर योर मैसेज, पोस्ट अच्छी लगी, ओके। एम नईम टेलर हैं, गुड शो, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। कवल नाज हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से सुन रही हैं, थैंक यू। अवैस हैं, आपका पैगाम मिला था, और आपका शो बहुत अच्छा है, नाम बोलकर अनाउंस कर दीजिएगा, दिली खुशी होगी। आपका नाम अनाउंस किया मैंने आरफ भाई दो दफ़ा। मदीना बिलाल, नज़ीर खोसो, कैसर महमूद, सलाम किया। मिस मारिया फ्रॉम रावलपिंडी, मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। मैं हैरान होता हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हमने यही देखा था पढ़ते हुए ना, लड़कियों के आईडी के नीचे से लड़के निकल आते थे। मेरे शो में लड़कों की आईडी के नीचे से लड़कियां निकल रही होती हैं। अच्छा जी, सलाम दिया नईम साहब ने, तमाम आरजेस को बहुत शुक्रिया, पिंडी में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। हाँ मुझे पता चला है, आप बताइए मारिया, आपकी साइड पे सब खैर खैरियत है, कोई मसला, कोई मसाइल तो नहीं हुए? जो लोग अभी नॉर्दर्न जाने का प्लान कर रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैंने भी पेंडिंग किया, आप भी मत जाएं, क्योंकि वहाँ पे अभी अलर्ट जारी किया गया है, वहाँ पे जो बारिशें हैं उनके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं
1: लैंडस्लाइड
0: के, और क्लाउड ब्रस्टिंग यू नो वो भी एक बड़ा मसला है, तो अपने एहतियात करें। आर जे जिशान नासर, गुड टू सी यू, हाउ आर यू बडी, इस्लामाबाद आए हैं तो बताइएगा। हाँ आना है मैंने जिशान भाई, एक्सपेक्टेडली नेक्स्ट वीक, आई टेल यू, वुड लव टू।
1: सर इनको लाहौर बुलाएं, आपके साथ बड़ा मजे का शो हुआ था, सर जिया का भी, और वो सारे मिलके बैठे थे, बड़ा मजा आया।
0: नहीं इंशाल्लाह, अगर मैं अपने शोज के डेज में गया जिशान भाई, इंशाल्लाह मिलते हैं ना आपसे,
1: तो आप इनके साथ शो करके आएंगे फिर,
0: अगर उन देश में गया तो फिर शो कर रहा हूँ। आई होप यू आर वेल, यू आर फाइन, मामला ठीक चल रहे हैं, आप खुश हैं, खुश रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए भाई। अच्छा जी, रेड लाइन ग्राफिक्स, सर काफ़ी वेट करते हैं आपका, आप अपने फैंस को आपकी आवाज़ प्लस शो देखने के लिए ना जाने कितना इंतज़ार करना पड़ता होगा। आई एम रियली वेरी सॉरी, बस मैं कोशिश करता हूँ, मैं वक्त पे आऊँ, आइंदा से भी ये कोशिश करूँगा, तहे दिल से मैं माजत खाऊँ। एक सॉन्ग प्ले कर दें, कभी खाक हुए उनके कदमों की, कभी दिल को बिछा के रक्स किया। अच्छा ठीक है सर, ओके ठीक हो गया। एक कमेंट आए सन पाएं तुझे डिलीट करते ने, शौकत अली, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। लोग सोचने की जहमत नहीं करते, बस दूसरों के बारे में अपनी राय बना लेते हैं। अच्छा जी, निम्मी चौधरी माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अहमदुल्ला मलखेल हैं, बरकत रमदान जवाली साहब है, सर आई रिसेंटली स्टार्टेड वॉचिंग योर शो, ओ एम जी सो वंडरफुल, सारा फ्रॉम लाहौर, थैंक यू सारा, बहुत शुक्रिया। अच्छा और इसके अलावा जी किसका मैसेज है, मैं मैसेज सारे देख लूं फिर बाद में गिला रह जाता।
1: ये सर आपका शो वॉच कौन कर रहा था, वाचिंग योर शो,
0: सारा ज़ाहिर है लाइव स्ट्रीम चल रही है ना, वॉच हो रहा है ना जी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा। थैंक यू वेरी मच। और कोई है पैगाम रह गया, मैं देख लूँ फिर, हमें गिला हो जाता। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आपका प्रोग्राम सन सिटी मेहराबपुर से सुन रहा हूँ सर, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सर मैंने सवाल पूछा है, खूबसूरती के अगर मायार ही कोई ना होता किसी ने बताया ही ना होता बड़ी आंखें और खूबसूरत होंठ, रुखसार सेब के जैसे लाल या आड़ू के जैसे कर लें या टमाटर जैसे कर लें लंबी जुल्फें कर लें, गहरी झील झील जैसी गहरी आंखें कर लें, कुछ भी, ये अगर ना होता तो फिर किस तरह से खूबसूरती को जाना जाता। अच्छा जी, मुखलिस मोहम्मद हाशिम सोमरो शहजादा गुलफाम एंड शहजादा गुल सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। खूबसूरती का कोई एक फिक्स मयार नहीं है, ये वक्त, जगह और नज़र के साथ बदलता रहता है। शक्ल थक जाती है, फैशन बदल जाता है, उम्र असर दिखाती है, असल खूबसूरती हमारा किरदार है। ओके मारिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, दिस इज अनदर क्वेश्चन जी, और उम्र के साथ साथ भी खूबसूरती के मायार बदल जाते हैं। व्हेन यू आर इन योर अर्ली ट्वेंटीज़ या ट्वेंटीज़ में हैं तब आप और तरह से देखते हैं, फिर उसके बाद जब आप लेट थर्टीज़ में आते हैं फिर खूबसूरती और तरह से देखी जाती है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ना, बहुत सारे लोगों ने मुझे पैगाम दिए, एंड पे ही है, इसको कंक्लूडिंग रिमार्क्स बनाऊँगा, क्या खूबसूरती के मायार बदलते नहीं है उम्र के साथ?
1: बदल जाते हैं,
0: जहाँ पे चेहरे वहाँ पे फिर किरदार, जहाँ पे खूबसूरत नकूश वहाँ पे फिर अच्छा दिल। और खैर, ये उसकी रूह देखनी चाहिए, दिल देखना चाहिए, ये तो अर्ली एज से ही शुरू हो जाता है ना। इधर हम किसी के साथ बैठे, उसने मुझे हंस के कोई बात कह दी और कह दिया नहीं नहीं परेशान नहीं हूँ, नहीं तो दिल का बहुत अच्छा है
1: जल्दी अच्छा लग गया
0: बहुत अच्छा है, तो मैं क्या बता, वो ताड़ के बैठा हुआ, एक बार मैंने कभी सही अच्छा ना दस ना तेन तोड़ते कैसे हैं दिल को। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आई एम फाइन सर, आप
2: जी
0: बताइए।
2: आपने आज जो टॉपिक रखा बहुत अच्छा टॉपिक रखा है, लेकिन बात होगी कि खुद को लिहाज आपने के लिए कोई भी जो है ना किसी किस्म का कोई तराजू नहीं है, कोई पैमाना नहीं है।
0: सही कह रहे हैं आप, नहीं आप ठीक कह रहे हैं जी, कोई तराजू नहीं, हर किसी का तराजू अलग है। इस चीज को मैं बड़ा ऑनेस्टली बताऊं, मैंने इस चीज को कब समझा। हेलो
2: जी, जी जी,
0: मैंने इस चीज को तब समझा जब लोगों ने मुझे खूबसूरत कहा सिर्फ मैं पता चला अच्छा
1: ये खूबसूरती
0: अच्छा ऐसे भी मेयार हो सकते हैं लोगों के, मुझे भी खूबसूरत कह सकते हैं। ओके फाइन, ठीक है।
2: खूबसूरती पैमाना ही नहीं है, देखने जो देखने वाला है वो उसका पैमान उसका अंदर ही जान सकता है कि उसके दिल को सकता है, उसकी आंखें जैसे दिल से हो सकता है, ये पैमाना उसी को पता है, दूसरा आदमी कोई बता नहीं सकता उसका।
0: ओके, बिल्कुल ठीक हो गया सर,
2: सर बहुत शुक्रिया
0: सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। आपकी आवाज कट गई, सॉरी। सलाम है मोहब्बत, खूबसूरती असद हैं, आपकी अस्मा मेरी अस्मा। मैसेज है, देख लो फिर मैसेज ऐसे लिखा है, मैं ना भी चाहूँ तो मुझे कहना पड़ेगा आपकी अस्मा। शुक्र है उन्होंने ये नहीं आगे लिख दिया मेरी अस्मा, मैं भूलता ही फिर ये अच्छा, आज साहब लव योर शो, थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ आयशा, हेलो आयशा, हाउ आर यू, वांट यू टू प्ले जालिमा बाय हसन रहीम, वुड लव टू प्ले दिस, ऑलरेडी इन माय लिस्ट, डोंट वरी। सलाम है मोहब्बत चांद, आप जाने की बात मत किया करें, पढ़ लिया मैंने, थैंक यू। सलाम आदे डॉक्स भाई, कैसे हैं आप? निज़ामुद्दीन हैं, बहुत शुक्रिया। जैकबाबाद से सुन रहे हैं, डॉक्स भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको खुश रखे, माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। एक रिक्वेस्ट है सिंधी सॉन्ग के, हम सिंध में हैं, क्यों नहीं चला के जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। मोइज भाई, आपने बोला कि स्लिम गर्ल्स प्यारी होती हैं, लेकिन मुझे मोटो लड़कियां पसंद आती हैं, सो मेरा खूबसूरती का प्यार अलग है
1: मोटापा
0: मैंने ये नहीं कहा भाई, मैं बड़ा ऑनर बता रहा हूँ, मैंने नहीं कहा स्लिम प्यारी होती है, मैंने एक बात की कि स्लिम को खूबसूरत देखते हैं या हेल्दी को देखते हैं, मोटापे को देखते हैं। अब मोटापे का वर्ड भी ऐसा है, मैं नहीं, मैं नहीं बोल रहा,
1: आप नहीं कह रहे,
0: मतलब आप किस तरह फिजिकली देख रहे हैं, मतलब आपको चब्बी किस्म के फिजिक पसंद आती है, पतला नाक, मोटा नाक, बड़ी आंखें, छोटी आंखें, ये तो एक स्टैंडर्ड की बात की है। और उसमें फिर हमने बात ये की थी, हर किसी के स्टैंडर्ड अलग होता है। सो दिस इज वॉट आई सैड, मेरे ऊपर ना डाल दें बाद पता लगे मेरे नाल लड़ पैन, मैंने मैसेज आते हो कुड़ियाँ दे आपने मुझे मोटो कहा था। मैं कहा मैंने बिल्कुल नहीं कहा था, यकीन करें, मैं तो पूछ रहा हूँ कि मायार क्या है, क्या होता है, इसके ऊपर बात चल रही है ना, मायार क्या है खूबसूरती का। फिदा राजपूत आई हैं, इस्लाम क्या वालेकुम अस्सलाम। सर, मर्द की जब शादी हो जाती है उसके बाद उसको समझ आती है कि असल खूबसूरती क्या होती है, उससे पहले नहीं। अच्छा, बताएं ना फिर मड़ा, हमको भी बताओ ना यार, ये बता दे राज की बात क्या है, थोड़ा हमें भी जान जाओ, इस्लाम भी जान जाए, क्या है?

0: Okay, I wanted to play this track. मैंने कहा Iron Heart 2 की भी request थी, थोड़ा थोड़ा play करते जाते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
1: Hello. अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम जी.
1: फरा बात कर रही हूँ.
0: कैसी हैं फरा?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर?
0: मैं वैसे क्या वैसे ही हूँ.
1: माशाल्लाह, बहुत अच्छे.
0: क्या कहना चाहेंगी आप?
1: मैं ना बीच में कॉल में लाने लगी, तो वो शुरू वाले क्वेश्चन मुझे पता है आपका.
0: अच्छा जी.
1: तो क्वेश्चन थोड़ा सा वो कर देंगे, रिपीट कर देंगे.
0: वही सवाल है
1: कि कोई पैरामीटर ना होता तो क्या पैरामीटर
0: कैसे?
1: देखें, कोई पैरामीटर है ही नहीं. ये चीजें हमारी सेल्फ अजम्पशन है. इंसान को आदत है अज्यूम करने की. अब हर कोई अपनी नेचर के मुताबिक अज्यूम करता है.
0: Okay.
1: एक ही पैरामीटर डिफाइन है कुरान के अकॉर्डिंग, लकद खलकनल इंसाना फी अहसनी तकवीम.
0: जी.
1: अब हुआ ये कि उस अहसनी तकवीम पे हमने हर चीज को रख दिया.
0: जी.
1: लेकिन जैसे देखें, डिफरेंट जो है इंसान वेरी कर रहे हैं ना, उनका नेचर वेरी कर रहा है, वैसे ही उनका थॉट प्रोसेस वेरी कर रहा है, वैसे ही जो है ना उनकी अजम्पशन अबाउट ब्यूटी भी वेरी कर रही है. आप जितने मैच्योर होते जाते हैं ना, उतने ही जो है आपका जो ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिफरेंट होता है.
0: मायार बदलना शुरू हो जाता है. ये मेरा सवाल भी था.
1: Exactly.
0: वक्त के साथ साथ बदलना शुरू हो जाता है ना.
1: वो आपकी इनर मैच्योरिटी जो है ना वो बड़ी काउंट करती है आपके साथ लाइफ में एक्सपीरियंसेस. अब आपके इंटर्न वो जो आरजे हैं, इंटर्न और आरजे, उन्होंने ये पूछा कि जो ब्लाइंड है वो कैसे जो है देख के वो कर सकते हैं. ठीक है ना, उन पे तो ये बात पूरी नहीं आएगी कि ब्यूटी लाइज इनसाइड द आई ऑफ बियोल्डर. वो ब्यूटी ऑफ बिहेवियर्स देखते हैं. अगर क्योंकि देखें, अगर जो सामने वाला है, आपको मैं क्यों सुनती हूँ, मैं आपको इसलिए सुनती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरे साथ कनेक्ट करते हैं.
0: बिल्कुल.
1: आप बहुत हम्बल होके बहुत जो है नाइसली मेरी गलत बातों को भी बड़ा नाइसली मोल्ड कर देते हैं सही बात में. किस मतलब आपके अंदर डिनायल नहीं है
0: जी.
1: और डिनायल है तो वो इतना एक्सट्रीम पे नहीं है कि आप मुझे रिजेक्ट कर दें. इसलिए मुझे आपको सुनना अच्छा लगता है. तो ये आपकी ब्यूटी है, ये हमारे कनेक्शन की ब्यूटी है. और अगर मैं पेरेंट बात करूँ तो आपकी एज का ग्रेस आपके फेस पे आता है.
0: बिल्कुल ठीक है.
1: आपका वो ग्रेस आपके एटीट्यूड में आता है. आपके जो बाल हैं वो मेरे अब्बू के बालों से बहुत मिलते हैं, तो जब मैं आपके बाल देखती हूँ तो मुझे अपने अब्बू याद आते हैं.
0: नहीं करे.
1: हाँ
0: ना करे, आप
1: जसम से. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है.
0: कहेंगे फिर आपको अब्बू कह रही थी.
2: अब्बू जैसा.
1: नहीं नहीं मैं नहीं नहीं आपके आपके बाल जो है ना, आपके बाल सीरियसली, आपने अगर अब्बा की तस्वीर मेरे फेसबुक आईडी पे देखी हो तो अब्बा के और आपके बाल बहुत मैच करते हैं. तो वो उनकी शख्सियत का ग्रेस था ना, तो वो मुझे आप में नजर आता है. दूसरा, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे होते हैं कि वो आपको खूबसूरत बना देते हैं. अब वो जो एग्जैजरेटेड बातें हैं पोएट्स की के ऐसी आंखें और फलाना और दिमाग हो, तो आजकल तो एक फिल्टर तस्वीर ही पूरी ब्यूटी शो करा देती है.
0: मैं कह रहा हूँ, मैं तो फिल्टर वाली देख के खुश रहूंगा. ऐसा होना चाहिए मुंह के आगे भी वो डिवाइस लगी, 24 घंटे फिल्टर फेस है. आज मेरा दिल कर रहा है यार फलानी फला हीरोइन उस जैसा फेस बना लो, आज उस जैसा बना लो. और मैं कहूँ, मेरे से कोई पूछे तुम्हारी बंदी दिखती कैसी है, मैं कहूँ जैसा मैं चाहूँ वैसी
2: वैसे दिखती है.
1: तो ये तो आर्टिफिशियल चीजें हैं ना सब. ये आर्टिफिशियल जो जितनी भी आर्टिफिशियल चीजें हैं वो ह्यूमन सोल को एक हद तक ही प्लेजर प्रोवाइड करती हैं. उसके बाद जो है ना वो प्लेजर खत्म होना शुरू हो जाता है. आप जब जैसे आपने पिछले शो में जो है एग्जाम्पल दी थी अरेंज मैरिज की, ठीक है ना, हम उस एग्जाम्पल को यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं. देखें, जो आपका लाइफ पार्टनर होता है, जैसे हमारी मेरी जो अरेंज मैरिज थी, आई नेवर हैड मेट माय हस्बैंड, ना मैंने उनसे कभी बात की थी. हम लोग एक हफ्ते में ही हमारी शादी हो गई थी, तो हमें क्या एक दूसरे की खूबसूरती का कॉन्सेप्ट था, कुछ भी नहीं. लेटर ऑन जब हम साथ रहना शुरू हुए, हमें एक दूसरे की आदतें अच्छी लगी, कम्युनिकेशन डेवलप हुई, तो उसके बाद हमारा कनेक्शन बना, तो अब वही सबसे खूबसूरत है दुनिया में।
0: बिल्कुल सही है, वही बात है, शुरू में आपको खूबसूरत नहीं लगता कोई, लेकिन वक्त के साथ आपको वही शख्स खूबसूरत लगता
1: है। हमारे बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं वो क्या कहीं के बड़े हसीन लोग होते हैं, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स होते हैं, नहीं वो हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमें बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि वो हमसे इसी बेस पे मोहब्बत कर रहे होते हैं कि हम उनके साथ ऊट पटांग हर किस्म की हरकत कर सकते हैं, हमें फॉर्मल नहीं होना पड़ता, हमें फेक नहीं होना पड़ता, हमें कैजुअल रह के भी हम उनके साथ सब कुछ कर सकते हैं। तो जहाँ आपका कंफर्ट लेवल अच्छा होता है ना, वो चीज आपके लिए सबसे खूबसूरत होती है।
0: जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच फरा, आपने बहुत अच्छी बात की, थैंक यू वेरी मच,
1: थैंक यू हमेशा की तरह मुझे सुनने के लिए, थैंक यू,
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू,
1: जज़ाकअल्लाह, खुश रहे हमेशा, आमीन, अल्लाह।
0: Okay, that was Farah. Thank you very much for your feedback. I'm thinking I should have changed the topic. और मुझे कहना चाहिए था, फर्ज करें अगर हम सारे अंधे होते तो खूबसूरती का मैयार क्या होता, मतलब ये वर्ड भी चेंज करें, अगर हम देख ही ना पाते सबके साथ।

मेरे सिंधी भाई जो सुन रहे हैं उनके लिए। नवान नजीर ने सलाम किया और कहते हैं मैंने डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट पोजीशन आई। छा गए हो नवान, माय बेस्ट विशेस ब्रो, छा गए हो, खुश कर दिया तुमने लड़के। मजा तकरीर भेजना, मैं भी

0: वो लोग इतने खुश वैसे नहीं होते जैसे वो शो कर रहे होते हैं ना,
1: शो कर रहे
0: तो
1: होते
0: खुशी
1: हैं।
0: भी एक बहुत ही अंदर का जज्बा है,
1: जी
0: दुख भी एक बहुत ही अंदर का जज्बा है। जो लोग
1: बिल्कुल सही,
0: आप ही की तरह, आप उसको फील करें, आप ही की तरह उसको महसूस करें, वही मुझे लगता है कि वही खूबसूरत है।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत जबरदस्त आपने बात की मैडम, बहुत अच्छी बात की।
0: दो शेर
1: जी जी सुनाए ना।
0: आप
1: बिल्कुल, मैं तो मुंतजर हूँ अशार का।
0: जी नहीं तो मैं तो आपको बहुत कुछ
1: सुनाना,
0: सुना
1: दूं खरी खरी ना सुनाए, बाकी ठीक है।
0: नहीं नहीं शायरी की बात।
1: अच्छा, शायरी सुनाए।
0: शायरी की बात
1: जी।
0: अर्ज़े अलम बतर्ज़े तमाशा भी चाहिए
1: जी।
0: अर्ज़े अलम बतर्ज़े तमाशा भी चाहिए, दुनिया को हाल ही नहीं खुलिया भी चाहिए।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: ऐ दिल किसी तरह भी मुझे दस्तयाब कर, ऐ दिल किसी तरह भी मुझे दस्तयाब कर, जैसा भी चाहिए उसे जितना भी चाहिए।
1: वाह वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला।
0: दो शेर और
1: जी जी
0: सुनाती हूँ
1: जी, सुनाइए।
0: मैं इसलिए निकल आया हूँ दश्ते गम की तरफ, मुझे लगा था इधर रास्ता बना हुआ है, हमारे दिल में मुरम्मत के बाद आइएगा।
1: वाह वाह, हमारे दिल में मुरम्मत के
0: हमारे
1: बाद
0: हमारे दिल में मुरम्मत के बाद आइएगा, तुम्हें लगेगा ये बिल्कुल नया बना हुआ है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत गहरी बात है, बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। थैंक यू वेरी मच मैडम, बड़े अच्छे बाद आपकी कॉल आई, बहुत अच्छा लगा जी।
0: थैंक यू,
1: थैंक यू वेरी मच कॉल दी। अल्लाह
0: सभी सुनने वालों के लिए बहुत सी मोहब्बतें और बहुत सी नेक तमन्नाएं।
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, मोहम्मद खान साहब हाय किया है रो। ओके जी, मैडम नाहिद थे और कनाडा से कॉल थी, थैंक यू वेरी मच, और कहा खूबसूरत वही है जो मुयस्सर हो। खुदा ने तो आसन तकवीम के दर्जा पर खल किया और उसके बाद उसने बहुत खूबसूरत अंदाज में हम सब की खलकत की। और एक हदीस है जिसमें कहा गया कि खुदा तुम्हारी शक्लें सूरतें और इनको नहीं देखता, खालिक वो है, लेकिन वो जब जज करेगा तो कहा तुम्हारे आमाल और तुम्हारे कलूब, जिसे हम दिल में बदल देते हैं, बाहर कलूब को देखता है। तो इससे इंटायरली डिफरेंट हो जाता है कल्ब को देखना और आमाल को देखना। आमल क्या करते हैं आप, किस तरह से, कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। मैं भी बड़ी बातें कहता हूँ यकीन करें, लेकिन करता कोई भी नहीं। मैं भी बड़ी बड़ी गल्ला कर देना, होंदियाँ चीज़ें मुख्तलिफ हैं, कहने और करने में यकीन जाने फ़र्क है। तो खूबसूरती का कोई मियार नहीं होता, हर बंदे का मुख्तलिफ है। लेकिन मैडम सलमा ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैडम आप, खैरियत से हैं? ठीक हैं, मुंतजर रहा आपकी कॉल का और मैसेजेस का। अगर कोई ये जो डिफाइन किस्म का मियार है ना हमारे पास, ये चेहरे के नकूश, ये रंग, ये सूरत, ये होंठ, ये जुल्फें, ये आंखें, ये दांत, ये जिस्म की वजाहत, कता, ये पतला दुबला होना, मोटा होना, छोटा होना, लंबा होना, ये ना होता तो क्या होता। हैसियत है इंसान, जैसे मैंने वो एक मिसाल दी, एक टारजन, एक इंसान जो जंगल में पैदा हुआ ना, उसके लिए चीज़ें इंटायरली डिफरेंट होती। मुख्तलिफ क्या होती, यूनिवर्सली आई बिलीव कि कुछ होता या ना होता, शख्स वो खूबसूरत ज़रूर होता जो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आता, जो किसी को महफूज महफूज महसूस करवाता, वो ज़रूर खूबसूरत कहलाता और आज भी कहलाता है, जो किसी की बात तसल्ली से सुन लेता बोले बगैर, तसल्ली से, गुड लिसनर, नहीं है गुड लिसनर, वो जो ताकत रखे मगर फिर भी नरमी इख्तियार करे, चाहे तो कुछ भी कर दे लेकिन फिर भी नरमी इख्तियार करे, जो किसी कमजोर इंसान को कभी हकीर ना समझे, स्टैंडर्ड्स में डिफाइन ना करना शुरू कर दे चीजों को, जो माफी देना जानता

0: जो माफ़ी मांगना भी जानता हो। जैसे माफ़ी कहते हुए नाक कटती महसूस ना, अना का मसला ना बने, जिसकी जेब में छोटे छोटे से अना के बुत ना हो, जो निकाल के सामने रखे और उनकी परस्तिश करता रहे। गलती करे तो माफ़ी मांगना सीखे, जो दूसरों की खुशी से जलने के बजाय उनकी खुशी में खुश होना सीखे। खूबसूरती चेहरे की प्रॉपर्टीज नहीं होती हजूर, आपको कह रहा हूं मैं, चेहरे की प्रॉपर्टीज नहीं होती हजूर, ठीक है, रवैये की क्वालिटीज होती है। अगर आप तक या मुझ तक या मयार ना भी पहुंचे होते कि इस तरह की अगर आंखें हों तो खूबसूरत है, इस तरह के गाल हों टमाटर जैसे तो खूबसूरत है, लंबी जुल्फें हों तो खूबसूरत है, गहरी आंखें हों तो खूबसूरत है, तो ये रवैये की क्वालिटीज इंसान को ज्यादा खूबसूरत बनाती है। दिस इज द बेस्ट थिंग आई कैन से। दिस इज आज़िज़ डॉग साइनिंग ऑफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और आज़िज़ रहमान अनवर यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और मारिया गालिबन कैसर महमूद के आईडी से, कौन थी मारिया यार, वो जो आपने गाना गाया वो नहीं मिल रहा मुझे, कभी खाक हुए उनके कदमों की, अब ये मुझे किसी से पूछना पड़ेगा ना, तो मुझे जो है सिंगर के नाम कल भेजिएगा, देन आई विल सी कि प्ले हो सके। दिस इज़ आज़िज़ डॉग साइनिंग ऑफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुलाकात होती है कल, और अभी रहमान है, रहमान के साथ होंगे
1: इस्लाम,
0: तुम फेरोगे और अली, ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। और ये गाना किसी ने मुझे डेडिकेट किया था।

0: थोड़ी देर में जो है जो फाइबर होता है वो आपकी आंखें भी ठीक रहती है और जो है आपकी हड्डियां भी ठीक रहती है।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: This is FM 101.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: This is FM 101.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.

आपका पसंदीदा म्यूजिकल चैनल सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। FM 101, the sound of new millennium. सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। FM 101, the sound of new millennium. सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: FM 101, The Sound of New Millennium.
1: सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
0: FM 101, The Sound of New Millennium.
1: सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

तुम्हें अगर उसके होने पर यकीन है तो फिर किसी भी शय के होने की खुशी या ना होने का गम बेमानी है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं।

जहाजाद नीचे गली में तेरे दर के आगे ये मैं सोख्ता सर हसन कुजागर हूं। तुझे सुबह बाजार में बूढ़े तार यूसुफ की दुकान पर मैंने देखा तो तेरी निगाहों में वो ताबनाकी थी मैं जिसकी हसरत में 9 साल दीवाना फिरता रहा हूं। जहाजात 9 साल दीवाना फिरता रहा हूं। ये वो दौर था जिसमें मैंने कभी अपने रंजूर कूजों की जाने पलट कर ना देखा वो कूजे मेरे दस्ते चाबुक के पुतले गिलो रंगो रोगन की मखलू के बेजा वो सरगोशियों में ये कहते हसन कूजागर अब कहाँ है वो हमसे खुद अपने अमल से खुदावन बनकर खुदाओं की मानिंदा हुए करता। जहाजाद 9 साल का दौर यूं मुझ पे गुजरा कि जैसे किसी शहर मदफून पर वक्त गुजरे तगारों में मट्टी कभी जिसकी खुशबू से वारफ्ता होता था मैं संग बस्ता पड़ी थी सुराही ओ मीना ओ जामो सुबू और फानू सो गुलदा मेरी हेच माया मईशत के इजहार फन के सहारे शिकस्ता पड़े थे मैं खुद मैं हसन कूजागर पाबागिल खाकबर सरबराहना सरे चाक यौलीदा मुंह सरबजानों किसी गमजदा देवता की तरह वाहिमा के गिलौला से ख्वाबों के सयाल कूजे बनाता रहा था। जहाजाद 9 साल पहले तू नादान थी लेकिन तुझे ये खबर थी कि मैंने हसन कूजागर ने तेरी काफ की सी उफुकताब आंखों में देखी है वो ताबनाकी कि जिससे मेरे जिस्मो जहां अब्रो महताब का रहगुजर बन गए थे। जहाजाद बगदाद की ख्वाबगुं रात वो रौदे दजला का साहिल वो कश्ती वो मल्लाह की बंद आंखें किसी खस्ता जहां रंजबर कूजागर के लिए एक ही रात वो कोहरबा थी कि जिससे अभी तक है पैवस्त उसका वजूद उसकी जान उसका पैकर मगर एक ही रात का जौक दरिया की वो लहर निकला हसन कूजागर जिसमें डूबा तो उभरा नहीं है। जहाजाद बाजार में सुबह तार यूसुफ की दुकान पर तेरी आंखें फिर इस बार कुछ कह गई हैं उन आंखों की ताबिंदा शोखी से उठी है फिर तौदाए खाक में नमकी हल्की सी लर्जिश यही शायद इस खाक को गिल बना दे। तमन्ना की वसत की किसको खबर है जहाजाद लेकिन तू चाहे तो मैं पलट जाऊं अपने महजूर कूजों की जानिब गिलौला के सूखे तगारों की जानिब मईशत के इजहार फन के सहारों की जानिब कि मैं उस गिलौला से उस रंगो रोगन से फिर वो शरारे निकालूं कि जिनसे दिलों के खराबे हों रोशन।

0: गज़ल बाश ने क्या क्या खूबसूरत गुनगुनाया है ना। ऐसा लगता है जैसे ये मेरी ही कहानी है, मेरा ही फसाना है। कुछ लोग आपके दिल के अहवाल को अपने अल्फाज में इस तरह से बयान करते हैं कि एहसास ही नहीं होता कि उस तक मेरे दिल का अहवाल किस तरह से पहुंच गया। उसे कैसे पता है कि मैं भी इस तरह के मामलात से, इस तरह के हालात से गुजरा हूं। 12:40 हुआ चाहते हैं और इस प्रोग्राम में आप जानते हैं कि वक्त पर लगाकर उड़ता है और एहसास नहीं होता, बीतता चला जाता है और बहुत तेजी से गुजरता चला जाता है। लेकिन इस्लाम मुझे लगता है वक्त की सबसे खूबसूरत बात भी यही है कि वो रुकता नहीं है, वो बस चलता चला जाता है।
1: वक्त की शायद सबसे बड़ी खामी भी यही है कि ये गुजर जाता है,
0: गुजर जाता है।
1: अच्छा भी हो तो गुजर जाता है,
0: हाँ।
1: लेकिन फिर अच्छाई जो आपने बात की कि वो हो तो फिर भी गुजर ही जाता है। वो महमूद गजनवी ने जब वो फतह किया, अफगानिस्तान के ऊपर हमले किए, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसी अंगूठी बना के दी जाए जिसको जब मैं देखूं तो मुझे जो है वो डर लगे या अपने अंजाम की फिक्र हो।
0: वाह वाह।
1: तो एक अंगूठी बनाई और उसके ऊपर जो नक्श था उसमें ये लिखा गया,
0: ये वक्त भी गुजर जाए,
1: गुजर जाए।
0: यही मैं सुनाने लगा था। क्या बात है, क्या बात है। इस्लाम हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले नाइट थेरेपी में मेरे बहुत प्यारे से भाई आरजे डॉक्स, आजकल इतना ही कहना पहनना है, प्रोग्राम कर रहे थे। और इस्लाम, अभी इस वक्त अधूरी बातों में, ख्यालात के हसीन सिलसिलों में तुम्हारा वेलकम करते हैं,
1: खुश
0: आमदेद कहते हैं। और अली, अली तुम नीचे क्यों बैठे हो, वजह क्या है? अच्छा, डाउन टू अर्थ होना चाहिए, ठीक है। जरा थोड़ा सा एक बार डाउन टू अर्थ दोबारा होना। हाँ, कैसे?
2: डाउन टू अर्थ।
0: हाँ, डाउन टू अर्थ। अच्छा, मसला ये कि यहाँ पे हम कुछ और टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही माइक में।
2: अब आ रही?
0: हाँ, दोबारा से।
2: अब आ रही?
0: हाँ, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इसको, हाँ अब बोलो सर।
2: मैं कहता हूँ अब तो आ ही रही होगी।
0: कैसी यार, मतलब कि एक लॉन्डो वाली खूबसूरत सी आवाज है तुम्हारी, है ना।
1: सर ज्या कहते होते, कैसे कर लेते,
0: कच्चा कला। थैंक यू वेरी मच हाफिज जी। ये है MCR में मौजूद हाफिज आसिम गुजर साहब, हमारे एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि हमारी आवाज में हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम का सामना तो नहीं है। क्योंकि इस वक्त ये जो आवाज है ये पूरे पाकिस्तान में बल्कि 70 से ज्यादा ममालिक में फ्रीक्वेंसी के ऊपर सुनी जा रही है और इंटरनेट के ऊपर आप कहीं पर भी सुन सकते हैं, www.radio.gov.pk। और इसके साथ साथ रेडियो पाकिस्तान की एप्लीकेशन। अली, तुम्हारा सफर यहाँ पे रेडियो पे कैसा गुजर रहा है?
2: मेरा सफ़र 2 महीने पहले से शुरू हुआ था,
0: ठीक है,
2: और अब तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। मतलब पहले हम इंटर्न्स थे, तो बेसिकली मैं तो आपको ये क्लियर कट बताता हूँ कि मैं छोड़ने लगा था वेरी नेक्स्ट डे ऑफ माई फर्स्ट डे। वो इसलिए था कि मैंने तो नहीं आना था, मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे कहा कि मैं जा रही हूँ और रेडियो पाकिस्तान जा रही हूँ।
0: खैर,
2: रेडियो पाकिस्तान का जब मैंने लव सुना तो आई वाज लाइक यार एक दफ़ा तो मैंने भी जाना है, क्योंकि
0: यार नाम ही ऐसा है, फैसिनेट करता है।
2: एग्जैक्टली, फैसिनेट करता है, क्योंकि मैंने जब पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी पहली दफ़ा प्रेजेंटेशन दी थी, मैंने रेडियो पे दी थी। और रेडियो पाकिस्तान का तो आपको पता ही है कि फिर तुलुए सुबह आज़ादी, तो वो एक कहीं ना अंदर था। उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी रेडियो में भी था, तो मैंने उसको कहा कि चलना तू मेरा नाम भी दे दे। उसने आरजे डॉक्स को मेरा नाम दिया और उन्होंने कहा कि आजे। अगले दिन मैं आया, गया, मैं देखा बैठे हैं जिस तरह स्कूल में सेमिनार्स हो रहे हैं, तो मैंने कहा यार वही बोरिंग लेक्चर है, आप सुन रहे हो और चले जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगला हफ्ता आया, आपको एक असाइनमेंट मिली, मैंने की, काफ़ी अच्छी लगी, प्रेज भी हुआ मैं यहाँ पे। फिर उसके बाद एक नई असाइनमेंट मिली, फिर मैंने इंगेज होना शुरू हो गया।
0: पहले हफ्ते में हम सबका यही डिसाइड हुआ था कि फसली बटेरे जो है ना वो उड़ जाएंगे।
2: अच्छा, कहीं ना कहीं फिर मेरे माइंड में ये रहा कि अली लगा रहा।
0: हाँ,
2: मैं लगा रहा। दो हफ्ते गुजर गए, तीन हफ्ते गुजर गए, महीना गुजर गया। आई वाज लाइक यार अब इतना टाइम हो गया, एक महीना गुजर गया, एक महीना रह गया, लगे रहो। जब दूसरा महीना स्टार्ट हुआ तो हम बाकायदा ड्रामास पे आ गए, आरजेशिप पे आ गए, और हमारे इंटरेक्शंस जो थे, मतलब कि हम ऑन एयर भी जाने लग गए।
0: हाँ,
2: तो वो मुझे ना एक काफ़ी एक अजीब चीज़ लगी।
0: कि यार ये कैसे ऑन एयर कैसे कर सकते हैं, ये तो
2: exactly.
0: दूसरी साइड से शीशे के दूसरी तरफ से दिखाते, वो है माइक.
2: Yes.
0: अगर वहां तक पहुंचना चाहते हो तो इतने साल Yes. यहाँ पे तपस्या करनी पड़ेगी.
2: बिल्कुल ऐसे.
0: सब माया है, बनना पड़ेगा, है ना?
2: बिल्कुल,
0: ऐसा कुछ है?
2: बिल्कुल ऐसा. हाँ. क्योंकि मैं मीडिया में 5 साल से हूँ तो मुझे ये चीज पता है कि आपको पहले हाथ माइक नहीं पकड़ा दिया जाता, ना ही आपको कैमरा दे दिया जाता है. तो वो एक टर्म यूज करते हैं, एनू रगड़ा दे. तो मैं
0: आई वाज वेटिंग
2: फॉर दैट रगड़ा. मैं कह यार वो रगड़ा किधर है, ये तो माइक पे बिठा दिया इन्होंने हमें. तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि यार हैट्स ऑफ टू रेडियो पाकिस्तान के, उसने बकायदा इंटर्न्स को मतलब मैदानों में छोड़ दिया कि भागो दुड़ाओ अपने घोड़े जिस तरह दुड़ा सकते हो. तो अब जिस तरह मैं आपके सामने बैठा हूँ और अगर मैं कोई गलती करूँगा तो ऑब्वियसली आप हैं सिखाने के लिए, तो इट इज़ गोइंग वेरी गुड.
0: इसका कॉन्फिडेंस बड़ा प्यारा है यार, है ना, मज़े का है.
1: बहुत अच्छा.
0: और बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी खौफ के
1: लगी लिपटी.
0: तुम ना बहुत तरक्की करने वाले हो सच में, हर फील्ड में इंशाल्लाह, क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी है और इस तरह से बात करने का हुनर भी है कि दूसरे इंसान को लगे कि कितनी इज्जत से और रिस्पेक्ट से बात कर रहा. बाज़ुकात हमारी इस जनरेशन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि जैसे इज्जत में या अपने आप को शायद किसी तरीके से साबित करने में वो इस तरह से गुफ्तगू शुरू ऐसे करते हैं कि इज्जत तार तार हो जाती है. इस तरह से बात करते हैं कि लगता है कि जैसे बिल्कुल इसको पता ही नहीं है कि गुफ्तगू कहाँ कैसे और किस तरह से करनी. पता नहीं किसी किस्म का कोई ऐसा हेर फेर है, कोई ऐसा डर है, कोई ऐसा ट्रॉमा है, कोई ऐसी चीज़ है, या सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहने की वजह से. कह दो उसे अगर हाँ, कह दो कोई मसला नहीं. कार्डियम का उसे कह देना, हाँ उसे कहना ज़रा अच्छा मैसेज कर दो उसे. तो ये कोई ट्रॉमा है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो एकदम फट रहा है. मतलब वो बात नहीं करना चाह रहा, वो अपने अंदर के दुख को बयान करने की कोशिश कर रहा है कि यार मुझे आगे आने दो, मुझे बढ़ने दो. रोका गया उसे शायद, इस तरह से कभी कभी फील होता है. लेकिन तुमसे मिलकर और इस्लाम से मिलकर और यहाँ पे बहुत सारे इंटर्न से मिलकर ये अंदाज़ा हुआ कि बाज़ुकात तस्वीर का दूसरा रुख और भी हो सकता है और इंसान के अंदर सीखने की अलग. अब जब वो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में आए होंगे ये कहने के लिए कि हम इंटर्नशिप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप में से कौन कौन आना चाहते हैं, तो आप ख़ास तौर पे निकल कर सामने आए. वरना और भी वहाँ पे मैस कॉम में इतने सारे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने सुना होगा, जिन्होंने समझा होगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा नहीं यार हमने क्या करना वहां पे जाके,
1: फायदा क्या,
0: क्या फायदा है, अब रेडियो कौन सुनता है.
2: बिल्कुल ऐसे.
0: लेकिन यकीन करें,
2: कह रहे थे
0: हाँ ऐसे कहते हैं, वैसे घर वालों को तो नहीं कहना चाहिए था.
2: घर वाले भी है ना उस तरह चुप भी कर रहे थे. क्यों? क्योंकि मैं अभी ऑफिस भी जाता हूँ ना, तो मैं 89.4 में जाता हूँ. तो
0: ठीक है,
2: कहीं ना कहीं मेरा एक छोड़ने की वजह ये भी थी यार मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इंटर्नशिप क्यों कर रहा हूँ.
0: अरे हाँ हाँ नहीं, मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो एक जगह पे मौजूद ही हूँ, तो फिर मुझे अब यहाँ पे क्या करना. लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा अंदाजा,
2: बहुत डिफरेंट
0: चीजें चेंज हुई होंगी कि नहीं यार थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, और जरा माहौल भी मजे का है. मतलब कि आपको बिल्कुल इजी किया जाता है, आपको मुतमैन किया जाता है, डोंट वरी आप बोल सकते हैं, आप कर सकते हैं, बनाया जाता है. रेडियो पाकिस्तान का हमेशा से यही खास सारा है. बहरहाल हम ये बातें नहीं करेंगे, ये बातें बहुत हो चुकी हैं इंटर्नशिप की और इससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स की के किस तरह से हुआ. आप जो आएंगे सामने आ ही जाएंगे सबके सामने. तो हम जो है ना वो कुछ बातें करते हैं, एक ट्रैक उससे पहले प्ले करते हैं, उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. और टॉपिक पे आज मेरा दिल चाहता है आज यंगस्टर्स के साथ मैं मेरे वाले टॉपिक्स पे बात करूं, वो वैसे इनके ही टॉपिक्स होते हैं. चलो ठीक है, आज पता नहीं तुम्हारी बातें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी. यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा हैं, क्या करूं. तुम्हें पता है ना, चाहे किसी से भी गुफ्तगू हो रही हो तुम्हारा ख्याल ज्यादा रहता है. कुछ भी हो जाए दरमियान में कहीं ना कहीं रोशनी के अंदर भी, चाहे आंखें बंद करूं या खोल दूं, चेहरा सामने रहता है, आवाज रिस्क है जैसे सुनाई देती है. बोल कोई और रहा होता है लेकिन लग रहा होता है कि तुम हो. ठीक है, लेकिन तुमने परेशान नहीं होना है, पता है ना तुम्हें. सारी बातें तुम्हारी ही हैं।

दोबारा दूसरा जो ट्रैक है वो गजल बाश का ही। रात का समुंदर है रात भी मोहब्बत की, पता है ना तुम्हें। रात का समुंदर है रात भी मोहब्बत की, बात का उजाला है बात भी मोहब्बत की। कुछ चीजें तुम्हें कभी कभी पसंद आ जाती, घात की जरूरत है घात भी मोहब्बत की। नर्म गर्म खामोशी, सहज सहज सरगोशी, बिल्कुल ऐसे करके बात करना। चोर चोर दरवाजे, कौन कौन छुप के आया है, आरजू ने जंगल में रास्ता बनाया है। झेमते हुए आंगन ने दरख्त से मिलकर कुछ ना कुछ छुपाया है। आसमां की खिड़की में सुख भरी शरारत से चांद मुस्कुराया है, चांद मुस्कुराया है, चांदनी नहाई है, खुशबुओं ने मौसम में आग सी लगाई। अब तुम्हारी खुशबू का जिक्र करूंगा तो फिर कहीं अच्छा रहने देता हूं।

0: राइट जी, वन सेकेंड, वेलकम बैक। 1:01, देखा ऐसा ही होता है, बिल्कुल हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ। सवाल आज का ये है कि इंसान की असल हकीकत कब सामने आती है? गुस्से में सामने आती है, जब कोई उसे कोई इख्तियार दे दिया जाता है तब सामने आती है, जब उसे कमिटमेंट मांगी जाती है तब सामने आती है, मिलने का कहा जाता है मिलने के बाद सामने आती है। इंसान की हकीकत कब वाज़े होती है? ये सवाल है आज मेरा। इस्लाम और अली, क्या सोच रहे हो इस बारे में? इस सवाल को लेकर सबसे पहला ख्याल क्या जहन में आया? दोनों में से कोई भी बोल सकता है।
1: मेरे ख्याल से इंसान की असल जो चीज़ है वो आपके ज़रूरत के वक्त पे सामने आती है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत ही मुश्किल में फंसे हैं और आप अपने सबसे करीबी दोस्त, भाई, बहन, रिश्तेदार के पास आप जाते हैं कि मैं इस मुश्किल में फंसा हूँ, तो
0: तब उसकी हकीकत सामने आती है।
1: मेरे नज़र में तब उसकी हकीकत सामने आती है कि वो किस लेवल तक जाके आपकी मदद करना चाह सकता है या कर सकता है।
0: अगर बड़ा, बड़ा खूबसूरत पॉइंट।
1: अगर वो साहिब इस्तेताद है और फिर भी आपको थोड़ा पुश बैक कर रहा है, दैट मीन्स के वो एक वॉल क्रिएट कर रहा है आप दोनों।
0: कितने लोगों से तुमने उधार मांगा?
1: नहीं, उधार की बात नहीं है, सिर्फ ये पैसों की बात नहीं है, ये इमोशनल सपोर्ट की बात है। ये मैं ये नहीं कहता कि आपके साथ, अगर मैं सामने बैठा हूँ, मेरे साथ बैठे हो तो बात नहीं करते रहो, ज़रूरी नहीं है यार, आप बैठे रहो, चुप करके बैठे रहें, घंटा निकल जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन साथ।
0: प्यार हो गया मुझे इससे, प्यार हो गया। अभी मैं उससे भी यही कह रहा था,
1: मैं तुम
0: कि ज़रूरी नहीं है कि बात करें, हम खामोश भी रह सकते हैं, साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम की तरह, कि वो 4 घंटे बैठे हैं एक दूसरे को सिर्फ देख रहे हैं और जाते हुए सिगरेट की बाकी टुकड़ियां जो हैं वो अमृता प्रीतम साथ ले गई अपना, बस कोई बातचीत नहीं हुई। ये तुमने तो यार मुझे, वाह वाह वाह वाह,
1: मुझे भी मुझसे प्यार है।
0: नार्सिसिस्ट हो तो
1: बहुत ज्यादा
0: वाकई में। ये ना करना यार, ये अपने साथ जुल्म ना करना। कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा कोई भी चीज हो वो जहर की मानद होती है, ताल्लुक के अंदर भी, किसी भी चीज के अंदर। तुम क्या कहते हो, इंसान की असल हकीकत कब वाज़े होती है? इस्लाम,
2: कभी ए हकीकते मुंतजर
0: नजर आ
2: लिबासे मजाज में,
0: वाह वाह,
2: के हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीने नियाज,
0: तेरी जबीने नियाज में, वाह वाह वाह।
2: तो सर, हकीकत जो है वो हम उसको डिफाइन, हर इंसान मुख्तलिफ अपने तरीके से या अपने क्राइटेरिया के मुताबिक, एक्सपोजर के मुताबिक करता है।
0: हाँ,
2: आपके मुताबिक हकीकत की जो तारीफ है वो कुछ और हो सकती
0: हाँ,
2: है।
0: हाँ बिल्कुल।
2: मैं किसी इंसान को जब उसको गुस्सा आता है, मैं देख सकता हूँ कि ये गुस्से की हालत के अंदर अपने आप को दूसरों के साथ जो उसका बर्ताव है वो कैसे करता है।
0: हाँ, हाँ।
2: तब हम कह सकते हैं, हदीस के अंदर भी ये है, अगर हम मजहब की रूह से इसको देखें कि इंसान का पता तभी चलता है जब वो गुस्से की हालत के अंदर होता है, कि क्या उसको अपने आप पर कंट्रोल करना आता भी है, क्या फरते जज्बात में वो इतना तो नहीं बह जाता कि वो जो दूसरों के जज्बात हैं
0: मजरूह कर देता,
2: उसकी भी तोहीन कर
0: दे, तोहीन करते।
2: तो हम इसका अंदाजा उसके गुस्से की हालत से भी लगा सकते हैं। लेकिन ये कि हम इस हकीकत की डेफिनेशन या तारीफ इस तरह से भी कर सकते हैं कि इंसान जब खुश होता है,

0: तो तब उसकी खुशी के आलम में उसको क्या करना होता है, या वो असल में करता क्या है, क्या वो अपने रब के सामने शुक्रगुजार भी होता है,
1: हाँ,
0: या फिर वो अपने खुशी के आलम में सब कुछ भूल जाता है, अपने खुशी को लेकर तमाम कवायद,
1: यहां तक कि अपने आप को भी क्या भूल जाता है,
0: भूल जाए, तो नहीं होता ऐसे। तो पता चलता है कि हकीकत जो है वो इंसान के मुख्तलिफ हालतों से जो है वो हम देख सकते हैं, परख सकते हैं। आप क्या कहते हैं हकीकत के बारे में, कब उसका पर्दाफाश होता है?
2: बड़ा सवाल।
1: मुझे लगता है कि उसके साथ वक्त गुजारने से, या आपके साथ जब कोई वक्त गुजारता है, वो जो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वाला एक हम सुनते हैं ना हर जगह पे, मैं उसको नहीं मानता। वो बात किसी एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब के लिए हो सकती है कि आप एक कागज का एक पर्चा जो है उसको देखकर, उसकी क्वालिफिकेशंस को देखकर ये अंदाजा लगा सकें कि वो क्या कर सकता है, वो क्या हमारे लिए वो सूटेबल है या नहीं है। उसके अलावा बाकी बहुत बहुत चीजें पड़ी हैं, रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं, बहुत सी चीजें हैं आपके अंदर, बहुत सारे इमोशंस हैं। इंसान पहली मुलाकात में खुलकर सामने नहीं आता कभी भी,
0: एक ही निश्चित में नहीं होता,
1: एक ही निश्चित में, चाहे वो आपके साथ खाना ही क्यों ना खा ले। मैं एक बहुत बड़ी बात करने वाला हूं, हालांकि ये बात जो है बहुत से लोग ये कहते हैं कि सफर कर लिया जाए या फिर
0: खाना खा लिया जाए
1: उसके साथ सफर कर लिया जाए तो सामने आ सकता है, लेकिन पहली मुलाकात में नहीं,
0: काफी नहीं।
1: इंसान 6 महीने तक कम से कम अपने आप को, अपने उन तमाम असल चेहरों को छुपा कर रखने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि खौल जितने भी आपने अपने चेहरे पर चढ़ाए हुए हों वो ज्यादा देर पा नहीं हो सकते। आप अपनी असलियत किसी ना किसी जगह पे जरूर वाजे करते हैं,
0: या वो हो जाती है,
1: वो गुस्से का लम्हा भी हो सकता है, वो कोई मदद का लम्हा भी हो सकता है, वो कोई मुश्किल का लम्हा भी हो सकता है, वो मोहब्बत भी हो सकती है, वो नफरत का पहलू भी हो सकता है, वो किसी भी नजर में सामने आ सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ गुस्से से इंसान की असलियत का पता चलता है, नहीं, मैं ये नहीं मानता। बाज़ोकात गुस्सा बहुत सही जगहों पे सही वजहों से आता है,
0: जायज भी होता है,
1: बहुत जायज होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका मान इतना हो, आपका, चाहे आप बहुत पढ़े लिखे हो, आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी हो, आपका ज़र्फ बहुत आला मायार पे हो, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कभी भी कि अगर वही इंसान कभी गुस्से में भी आया है और वो अपने उस असल मायार को जो उसने बनाया हुआ था हमारे सामने वो उससे हटा भी है तो हम ये कहें कि ये इसका असल चेहरा, नहीं, मैं नहीं मानता। बाज़ोकात गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह जाता है, उसका वो मतलब नहीं होता है, वो कभी कभी बाद में बहुत गिल्ट भी महसूस कर रहा होता है कि यार अगर उसका असल हो तो वो गिल्ट क्यों महसूस करे फिर, उसे क्यों ऐसा लगे कि यार मैंने मैंने क्यों उसको इतना कह दिया, मैंने क्यों उसको इतना बोल दिया। हम ये नहीं कह सकते, ये सिर्फ आजकल की रील्स के अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे जो स्लोगन्स हैं व्यूज हासिल करने के लिए ये चीजें चल रही, नो, मैं इन चीजों पर बिलीव नहीं करता। कोई भी सवाल आता है तो मैं सबसे पहले उसको हर तरह से परखने की कोशिश करता हूं, अपने मायार पे रहते हुए भी और उसके मायार पे रहते हुए भी, कि कभी कभी ऐसा हो कि उसने गुस्सा कर दिया मेरे ऊपर और ये पहले कभी नहीं उसने ऐसे किया था, एकदम से उसने बोल दिया कि आज के बाद बात नहीं होगी, आज के बाद मुलाकात नहीं होगी, अल्लाह हाफिज। लेकिन मैंने उससे ये नहीं अंदाजा लगाया कि क्या वो वाकई में ऐसा चाह रहा, नहीं, मैंने कुछ देर के लिए वक्त दिया, मैंने कहा कोई मसला नहीं, तुम गुस्से में आए हो तो कोई वजह तो होगी, मेरे अंदर कोई खामी होगी, कुछ तो ऐसा होगा। लेकिन फिर बाद में वही इंसान सामने आकर ये कहने लगा कि यार उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने बहुत कुछ कह दिया था, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने कहा मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि उस वक्त सही थे या इस वक्त सही हो तुम। उसने कहा नहीं, मैं इस वक्त सही हूं। इस बात को थोड़ा सा और हम वास्ट करते हैं गुस्से में तलाक दे देते हैं लोग, एक छोटी सी बात पे कह देते हैं जाओ तुम्हें तलाक है, जाओ तलाक है, तलाक है, तलाक है, कह देते हैं लोग। और कुछ, मैं किसी मजहबी हवाले से बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक पढ़ी लिखी बात कर रहा हूं कि जब आप निकाह करते हैं तो क्या आपको गवाहान नहीं दरकार होते, क्या उनकी मौजूदगी नहीं दरकार होती?
2: होती।
1: तो जब आप तलाक दे रहे होते हैं तब आप क्यों नहीं ये सोच रहे होते? ये बहुत आराम से मामलात करने वाली, ये बात याद रखिए, जिसने तलाक देनी है वो चाहे काम डाउन हो जाए, चाहे वो गुस्से के बाद वापस आ जाए, अगर वो बना चुका है अपना मन तो उसने देनी ही है। तो बेहतर ये है आप उनको काम डाउन करें, उसके बाद आराम से उनसे पूछें क्या बात है, क्या तुमने जो कहा है वो सही है, क्या तुम यही चाह रहे हो? और फिर उसके बाद अगर उसका जवाब डिफरेंट हो तो नहीं हो सकते। हमारे बहुत से रिश्ते ऐसे टूटे हैं, बहुत से लोग बहुत सी जगहों पे मुख्तलिफ तरीके से रुले हैं जाके और अपनी जिंदगियों को तबाहो बर्बाद किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर गुस्से का यह मतलब नहीं होता कि वो वाकई में उस वक्त अपनी असल हालत में था, ऐसा नहीं है। आग जब होती है, पहले आग होती है वो फिर उसके बाद बुझ भी जाती है, उससे पहले एक शोला जलता है जिसका जिसका हमें नजर नहीं आता, वो बहुत सी हालतों में होती है। इंसान के बहुत से रंग हैं, बहुत सी हालतें हैं, और मैं ये समझता हूं कि बहुत सी हालतों में किसी एक रंग को ये मान लेना कि ये इसका असल रंग है वो नहीं है। एक इंसान कभी भाई होता है, कभी बेटा होता है, कभी बाप होता है, कभी शौहर होता है, बहुत सी हालतों से गुजरता है, तो हम कैसे उसको किसी एक जगह पे रख कर परख सकते हैं? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इतनी आसानी से नहीं खुलता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी लोग हमें सुनने वाले हैं, अगर आप समझते हैं मुतमइन करें ना मुझे, मुझे बताएं, ये लाइट ब्लिंक होती है तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि लोग सुन रहे हैं, कोई एकदा सुन रहा है। हाय वाह, ठीक है, अच्छा, टेलीफोन लाइन पे आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। और मुझे बताइएगा इंसान का असल कब वाजे होता है? आरजे डॉग्स होते तो लड़ाई हो जाती है अब तक। बहरहाल वो सुन रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आबाद रहें। कोई ट्रैक बताओ यार, कोई ट्रैक लगाएं और उसके बाद लोगों की कॉल्स भी शामिल करें और उनसे पूछें कि इंसान का असल कब जाहिर होता है, असल हकीकत, उसकी असल हकीकत कैसे हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। 0421111000101 हमारे और आपके दरमियान रबते का नंबर, 0423110101। इसके साथ साथ सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फैन पेज facebook.com/FM101 लाहौर, आप इसको सर्च करेंगे फेसबुक सर्च बार में जाकर या गूगल में जाकर लिखेंगे तो हमारा पेज आपको मिलेगा। 23,000 फॉलोअर्स वाला पेज है, लाइक कीजिएगा और इसके बाद फॉलो कीजिएगा, और फिर वहाँ पे एक पोस्ट भी पिन कर दी गई है आपके लिए, उस पोस्ट को भी लाइक कीजिएगा। आज का जो शेर है वो है, छोड़ने मैं नहीं जाता उसे दरवाजे तक, छोड़ने मैं नहीं जाता उसे दरवाजे तक, लौट आता हूं कि अब कौन उसे जाता हुआ देखे।
2: हाय
0: वाह, क्या बात। अब इससे आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, वैसे तुम्हें याद है। हाय हाय हाय हाय, अच्छा ठीक है,
2: केड़ा ट्रैक लाऊं,
0: मिल ही नहीं रहा मुझे कोई ट्रैक यार यहाँ पे। अच्छा कौन सा?
3: ला फिर एक बार वही,
0: ला फिर एक बार वही,
3: इकबाल का लिखा हुआ है, शबनम मजीद की
0: बात। ला एक बार,
3: ना ना ना ना, ला फिर एक बार वही,
0: ठीक है, शबनम मजीद का गाया हुआ ये ट्रैक। हाय हाँ ठीक है यार, ये वाला अच्छा लगेगा, दिल कर रहा है इसको सुनते हैं। और कितने है यार वो तुम्हारा वाला, किधर है? चल ठीक है फिर वो बाद में देखते हैं। शबनम मजीद की खूबसूरत आवाज इस ट्रैक को सुनते हैं, वापस आते हैं 1:15, इसके बाद आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। ट्रैक है
1: पांच मिनट और 57 सेकंड्स का इसके बाद वापस आएंगे तो आप यहां पे होंगे या नहीं। लाइट ब्लिंक होती रहनी चाहिए। 0421100101 हमारे और आपके दरमियान रबते का नंबर। लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, सरगोदा, सियालकोट, मुल्तान और इसके अलावा बिक्शा, आज़ाद कश्मीर और जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ सुनी जा रही, सभी सभी सभी खूबसूरत समातों को दिल की गहराइयों से रहमान अनवर वेलकम कहता है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अधूरी बातें। थोड़ा सा टेम्पो तेज है, बच्चे आज बैठे हुए हैं, इनके साथ बातें चल रही हैं, तो आज बर्दाश्त कर लें, कोई बात नहीं, ठीक है ना इस्लाम?
0: आज तुम बर्दाश्त कर
1: आज तुम बर्दाश्त कर लो।

0: ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کا براہ راست لاہور کا اسٹوڈیو میزبان رحمان انور آپ کے ساتھ ساتھ. میرے ساتھ موجود ہیں ہونہار ٹیلنٹڈ ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کی اپ کمنگ آر جیز. ایک ہیں علی. علی پورا نام کیا ہے؟ صرف علی ہے؟
1: علی احمد.
0: آر جے علی آپ کے ساتھ. آپ کا آر جے علی یہ بیسٹ ہے یار.
1: اچھا لگا سر. ایک دفعہ دوبارہ.
0: لیکن تم نے فاسٹ پروگرامس کرنے ہیں, تم ایسا سلو نہیں بول پاؤ گے وہاں پہ. جب بولنا ہو میرے پروگرام میں آ جانا کہ یار میں صرف علی بولنے کے لیے رحمان بھائی آپ کے پاس آیا. علی اچھا ٹھیک ہے. اسلام ہمارے ساتھ ہیں اور علی احمد ہمارے ساتھ ہیں. اسلام تم اپنے نام کے ساتھ کوئی اور نام رکھتے ہو یا پھر کاسٹ گجر تم یوز کر رہے ہو؟
2: نہیں سر, وہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ فیس بک کے اوپر ایسے لکھ دیا تھا. لیکن میں ویسے اسلام کہلوانا اچھا لگتا ہے.
0: صرف اسلام. واہ واہ ٹھیک ہے. بہت بہت پیارا نام ہے, بہت پیارا نام ہے. سو ہمارے ساتھ یہ دو آرجز بھی موجود ہیں اور بہت جلد آپ ان کو بھی سن پائیں گے انشاءاللہ. اور ان کے ساتھ ساتھ اور بھی میں نے سنا کہ 18 لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں. ارے واہ واہ واہ, سلاٹس فل ہونے والی ہیں. آپ کو مزہ آنے والا ہے, بلکہ مزے آنے والے ہیں. آپ
2: مزے
0: ایسے ایسے ایسا ٹیمپو آپ نے کبھی نہیں سنا نا اس پروگرام میں.
2: نہیں نہیں آوازیں آئیں گی.
0: آوازیں آئیں گی ٹھیک ہے. آوازوں کی ہی تو بات ہے ساری. ٹیلی فون لائن پہ پہلی کال. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی کون بات کر رہے ہیں جی؟
3: اداس رات کا لمحہ یہ ایک سا ہوگا. اداس رات کا لمحہ یہ ایک سا ہوگا. رحمان اڑی ہے نیند میری. اڑی ہے نیند میری وہ بھی جاتا ہوگا رحمان.
0: اچھا
3: وہ سادے محترم ریڈیو اینڈ ٹی وی پر کار گجر خان سے اشتیاق ملک سلام قبول کیجیے.
0: وعلیکم السلام, کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟
3: ہم انتظار کر رہے ہیں اور یہ بچوں کی باتیں بڑی اچھی لگی اے اسلام صاحب اور علی کی بڑی خوبصورت. اگر سوچا جائے
0: اچھا میں بچہ کہہ سکتا ہوں صرف. آپ نے کہنا ہے کہ یہ آر جے اسلام کی آواز اور آر جے علی کی آواز بڑی پیاری لگی.
3: آر جے
0: میرے چھوٹے بھائی ہیں تو میں بچہ کہہ سکتا ہوں. آپ نے نہیں کہنا ان کو اور آنے والے تمام کالرز نے نہیں کہنا ایسا.
3: یہ میرے بھی تو بچے ہیں نا. یہ
0: نہیں نا
2: وہ تقدس نہیں رہتا.
0: اچھا ٹھیک ہے یار, میں تو آپ سے مذاق کر رہا ہوں. بتائیں اور بتائیں کیا کہنا چاہیں گے.
3: میرے پوتے پوتیاں جو ہے وہ بھی شادی شدہ.
0: ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
3: میں ریڈیو کا آرٹسٹ ہوں اور میں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اگر سوچا جائے کہ آپ کی وکالت ہمیں بہت اچھی لگی, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہوا نظر آیا.
0: جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہم اس پیغام کو رہنے دیتے ہیں. آپ اپنے دل کی بات جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کر کے بتائیں نا مجھے.
3: جی دل کی بات ہو. آپ نے مجھے پہچان لیا استاد محترم؟
0: میں پہچان گیا ہوں استاد. نہ کہا کریں آپ, آپ بڑے ہیں. دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ پوتیاں بھی آپ کی شادی شدہ ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. ارے سلامت رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے. انسان کی اصل حقیقت کب واضح ہوتی ہے جناب, یہ بتائیے گا.
3: میں اصل میں یقین جانے میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو بیٹے آئے تھے دونوں آئے تھے, میں نے دیکھ کر مجھے اس پر غور کریں کہ اس کے پیچھے مجھے بہت بڑا ایک پیغام.
0: بالکل بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیا پیغام ہے؟ ہیلو, لگتا ہے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. اسلام علیکم جی.
4: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟
4: محمد آصف بات کر رہا ہوں.
0: جی آصف صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
4: الحمدللہ رحمان بھائی کی دعاؤں کے ساتھ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں.
0: ارے آباد رہیں شاد رہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟
4: آپ کے ٹاپک پہ آؤں گا میں.
0: ہاں بتائیے گا.
4: شک, شک جب شک شروع ہوتا ہے نا,
0: شک جب شروع ہوتا ہے.
4: ہاں اختلافات ہوتے ہیں.
0: کیا ہوتی ہے؟
4: اختلافات ہو جاتے ہیں.
0: ٹھیک ہے
4: لائف پارٹنر کے
0: وہ
4: شدت اختیار کرتے ہیں اور بندہ ایسا قدم اٹھاتا ہے फिर पूरी जिंदगी का पछतावा बस और कुछ नहीं रहता।
2: ठीक, मजा फरमाया आपने, लेकिन ये कि वो जिंदगी का जो पछतावा है उसको फिर हम कैसे अपने आप से जो है वो उसको पीछे या उसका पीछा जो है वो अपने आप से छुड़ा सकते हैं?
4: देखो, ये बर्दाश्त करनी पड़ती है। एक तो मर्द हजरात की एक गंदी ये आदत है कि उसकी सुनते नहीं बेचारी की।
2: क्या नहीं हुई?
4: सुनते नहीं।
0: क्या नहीं हुई? समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप। हेलो, अच्छा लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
5: सिद्रा कृषि मंदरा से भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं
0: जी? सिद्रा मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं
5: जी भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अली भाई और इस्लाम भाई को अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: हेलो जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो हेलो, लगता है कि कोई डिस्टॉर्शन है, दोबारा से कॉल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बीच में रह जाती है बात, है ना,
2: अधूरी बातें हैं ना, इसलिए।
0: कितनी कितनी अच्छी बात है, यही मैं कहने वाला था। ये देखो ये सिंक करता है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी।
6: वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके?
0: अल्लाह का बहुत करम है, बहुत एहसान है। कौन बात कर रहे हैं इतने मीठे लहजे वाले?
6: अदनान अलवी बात कर रहा हूँ सर, फैसलाबाद से।
0: अदनान, खुश आमदेद कहते हैं आपको। अदनान अलवी, बहुत बहुत खूबसूरत नाम, मीठा लहजा, क्या कहना चाहते हैं?
6: मैं सर आपको अपनी जिंदगी हकीकत भी बताना चाह रहा हूँ, तो
0: मैं सुनना चाहता हूँ। बताएं बताएं ऐसी बात बताएं कि जो हमारी बहन बेटियां घरों में बैठकर जितने भी लोग सुन रहे हैं वो बगैर किसी परेशानी के, बगैर शर्माए, बगैर उलझे हुए वो सुन पाए। जी बताइए
6: सर। ऐसी है कि मेरी जिंदगी में तो ये वाकया हो चुका है ना, तो बाकी मैं कहता हूँ कि किसी के साथ अल्लाह ताला ऐसा ना करे और ना ही होना चाहिए। मैं अरे, ये सोचता हूं, तो प्रोग्राम सुनता हूँ तो बंदे गिरोह काम जाते। सर वैसे कि मैंने सर शादी करवाई थी लव मैरिज ना,
0: ठीक है,
6: मेरी शादी की तकरीबन 4.5 माह चली है।
0: 4.5 माह
6: के बाद हालात ऐसे पैदा हुए बंदा सोच नहीं सकता।
0: इंसान की असल हकीकत बता रहे हैं।
6: मैं हकीकत बता रहा हूँ सर, हकीकत बता रहा हूँ मैं कि कोई मतलब ये नहीं होता कि एक सीन होता है ना फिल्मी। मैं इन चीजों को नहीं मानता था ना कि यार ये लोग कहते हैं ऐसा होता है ऐसा, मैंने कहा मैं किसी चीज को नहीं मानता था। तो मैं ना सर, मेरी ना मिसेज और मैं आए हुए थे, तो ना हम घूमने गए, मतलब हर जगह पे वोटिंग गए थे, तो घर वाले भी माशाल्लाह मेरे बहुत मतलब फैमिली ने साथ दिया कि यार चलो के यंग खैर कुछ नहीं होता। मजे की बात सर शॉर्ट करता हूँ, मुझे ना मतलब मेरी सास ने बुलाया, मैं बड़ा बिलीव करता था क्योंकि वो आलमा थी।
0: अच्छा।
6: तो जो आलमे होते हैं ना मतलब मेरे जो ससुराल वाले, तो वो हाफस है खुद, अल्लाह को प्यारे हो गए थे उसके बाद, मतलब मैं बहुत ज्यादा उनके ऊपर यकीन करता। तो उन्होंने कहा कि
0: यकीन करता है इंसान जब उसका बिलीव किसी चीज के ऊपर, यकीन किसी के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, किसी किताब के ऊपर पुख्ता हो जाता है तो वो फिर यकीन करता है।
6: मैं सर, मैं ना अपनी माँ से ज्यादा उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसको मैंने लाडलों की तरह रखा हुआ था।
0: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही करना भी ऐसे चाहिए, हर मर्द की खासियत ही होनी चाहिए।
6: जी सर, मैं कुछ उसके बाद मैं सर आर्मी में हूँ ना, तो मैंने घर वालों को बताया था कि मैंने कहा इसको कुछ नहीं कहना ना, तो वो अपनी मर्जी से मतलब नाश्ता करना उठ के कर लेना दिल किया तो, वरना भाई भी ख्याल रखते थे। सारी बात हो कि यार भाई अभी बहुत दूर है, तो इस वजह से तो घर वाले सब ख्याल रखते थे।
0: आप उसके लिए आइडियल थे, मैं समझ गया। ठीक है, इसके बाद?
6: अच्छा सर, जब मैं ना मतलब ससुराल गया ना, तो उनके पीर आए हुए थे ना, तो मैंने उनसे पूछा कि मम्मा ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारे पीर हैं।
0: अच्छा।
6: तो हमने आपके लिए स्पेशल बुलाए हैं, तो ये ना आपको मतलब जाहिर बात है कि आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा किसी ने काला इल्म किया हुआ। मैंने कहा अच्छा, मैं तो यकीन कर लिए, मैंने कहा मम्मा तो ठीक है। उन्होंने नाम शाम लेके कहा जी आपके ऊपर वाकई काला इल्म है दोनों के ऊपर,
0: ठीक है काला इल्म।
6: मैंने कहा मम्मा हमारे ऊपर तो कोई मारा मतलब की ठीक ठाक, मतलब हम जा रहे थे दोनों, मतलब हैप्पी थे, बहुत ज्यादा खुश थे।
0: अच्छा।
6: मतलब कि इस तरह का पहले मसला नहीं आया जिसके ऊपर लगे कहाँ वाकई काले इल्म हो सकता है।
0: अच्छा ठीक है।
6: मैंने मामा को कहा ठीक है, मामा ने कहा ठीक है, तवीज़ के नाम लिख के दिए कि चलो ये तवीज़ आपने पहनने भी है।
7: पानी पीना है और 21 दिन के अंदर आप लोगों ने बड़ा गोश्त नहीं खाना। मैंने कहा सही है। तो सुबह मैं उठाऊँ उठ के ना तो मामा ने कहा कि अदनान बेटा ये जाओ ना जाके ना ये कब्र का तवीज दफना के आओ। मैंने कहा मामा खैर तो है ये क्यों? कहते जी हमारे पीर देके गए वो कहते जी पहला काम ये है फर्स्ट है। तो मेरे खेल में ख्याल में भी नहीं आया। मैंने कहा चलो ठीक है हो सकते हाल में घर के दीनदार घर है हमसे ज्यादा पता है इनको तो बंदा ज्यादा करते है ना।
0: अच्छा
7: मैं गया हूँ मैं जाके मैं कब्रस्तान तवीज दफना के ना तो मैं वापस आ गया।
0: हेलो अच्छा कोई बड़ी गहरी बात थी
1: कॉल डिस्कनेक्ट हो।
0: सलाम अलैकुम जी।
8: वालेकुम सलाम मैं खालिद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से।
0: जी खुशामदीद कहते हैं खालिद भाई कैसे मिजाज हैं आपके खैरियत से?
8: अल्हम्दुलिल्लाह वो आपकी आधे घंटे से ट्रांसमिशन आ नहीं रही हैदराबाद में ना।
0: अच्छा
8: कॉल करके ट्राई करता हूँ।
0: MCR में अभी हाँ हाफिज साहब बैठे हैं वो अभी देख लेते हैं। ठीक है बहुत शुक्रिया।
8: वो सर माशाल्लाह आपका टॉपिक बहुत अच्छा है माशाल्लाह।
0: क्या टॉपिक है मेरा?
8: जो किसी को यानी के गुस्से का जो टॉपिक जो चल रहा था ना गुस्से का।
0: हाँ किसी को किसी की हकीकत कैसे वाजे हो सकती है?
8: हकीकत ऐसे वाजे हो सकती है कि सर के कहते हैं ना किसी का जर्फ आजमाना हो तो उसको मोहब्बत दो हद से ज्यादा।
0: बहुत खूबसूरत बात की है। हाँ ये भी है एक मायार किसी की किसी के जर्फ को परखने का मायार ये भी है। हाँ
8: जी हाँ सबसे असल यही है जो हमारी रिवायतों में ये किसी का जर्फ आजमाना हो तो उसको
0: अपने से ज्यादा और बहुत ज्यादा इज्जत दो। यस
8: इज्जत दो उसका असल जाहिर हो जाएगा।
0: ठीक है बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच।
8: थैंक यू सर ट्रांसलेशन देखिए
0: जी मैं अभी ट्राई करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये देखिए कितने अच्छे कॉलर हैं आते ही फॉरन टॉपिक पे बात करके ये जा वो जा। सलाम अलैकुम जी।
9: वालेकुम भाई कॉल कट गई थी।
0: हाँ कॉल कट गई थी क्या क्या वजह हुई थी क्या कहना चाह रहे थे आप? हेलो कुछ प्रॉब्लम चल रही है कुछ हमारी ना ये। सलाम अलैकुम जी।
9: वालेकुम सलाम
0: जी कौन बात कर रहे हैं जी? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही।
9: सर मैं इकबाल बात कर रहा हूं। इकबाल
0: जी इकबाल भाई खुश आमदीद कहते हैं क्या कहना चाहेंगे?
9: अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मैं आपको बहुत आप अच्छा चला रहे हो और आपकी आवाज बहुत अच्छी और आपका लहजा बहुत अच्छा और जो भाई बैठे हुए हैं अली और इस्लाम जिंदाबाद।
0: बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच।
9: और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बंदा मुझे एक बंदा मतलब दो बंदे हैं जो आपस के अंदर उनका रिलेशन है शादी शुदा है और मुझे एक को गुस्सा है तो दूसरे को ठंडा होना चाहिए। ये कोई छोटा सा मसला नहीं होता ये जो अल्लाह पाक मेरे में आता है ये बंदे को बड़ा संभल के साथ चलना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है हम थोड़ी सी बर्दाश्त भी हमारे अंदर होनी चाहिए।
1: बिल्कुल ऐसे
9: अगर जो वो ये मेरे सामने वाला जो बर्दाश्त नहीं ना कर रहा है मुझे चाहिए कि मैं बर्दाश्त कर जाऊं।
1: तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बर्दाश्त भी एक फैक्टर है कि इंसान की असल हकीकत कब सामने आती है?
9: बिल्कुल सर ऐसे ही है कि अगर जो एक बंदा
0: बर्दाश्त नहीं कर पा रहा।
9: हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है
1: बहुत शुक्रिया।
9: बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से कॉल भी ऐसी कॉल मिलती है जैसे 100 कमेटियों में से एक कमेटी खाली है।
0: बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच।
9: बहुत ख्याल आपकी सेहत तंदुरुस्ती करें जिंदगी
1: में आमीन सलामत रहें। ओके
0: अल्लाह हाफिज़ थैंक यू वेरी मच। अच्छा तो हकीकत को या किसी के असल को समझने के लिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे हैं अपने अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
10: दनान अलवी बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। सर कॉल ड्रॉप हो गई थी।
0: जी जी कहिएगा क्या कहना चाह रहे थे आप?
11: कह रहे हैं सर, सर जब हम तवीज लिए ना तो मैंने सर वो तवीज पहना ना तो मेरे सर में पेन होनी शुरू होगी ना तीन चार दिन के बाद ही, तो तकरीबन अभी 16 दिन हुए तो उन्होंने मेरे बाइक का एक्सीडेंट हो गया ना।
0: अच्छा।
11: तो फिर उसके बाद सर मेरी वालदा के पेट में पानी पड़ गया अचानक से, मैं परेशान हुआ तो मैंने अपनी मिसेस को बताया, उन्होंने मैंने कहा ये पता नहीं ये क्या वजह है ना, तो मैंने वो तवीज उतार के फेंक दिया ना।
0: ठीक है।
11: तवीज फेंकने के बाद ना सर हम दोनों में नफरत शदीद नफरत इतनी हुई कि हम एक दूसरे के मतलब जितने मोहब्बत करते थे ना उससे ज्यादा नफरत करनी शुरू कर दी हमने।
0: अच्छा।
11: उसने कहा कि जो मुझे आपसे ना अगर मर के बच्चे हो ना कभी कभी तलाक दो, जो मतलब कि कभी हम सोच नहीं सकते थे कि यार ये चीज कभी जिंदगी में लाएंगे।
0: हाँ।
11: तो बहुत ख्वाब देखे होते इंसान इंसान के क्या करता है, तो मैंने उस टाइम गुस्से में कुछ नहीं कहा ना, मैंने जिस तरह मेरी मतलब जुबान हर चीज बंद हो गई थी, मेरा जहन बंद हुआ पड़ा था, मतलब वो बोली जा रही थी और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा है, बस समझ रहा था कि कुछ हो रहा है।
0: ठीक है।
11: ये चीज महसूस हो रही थी तो वो ऐसे सर घर चली गई नाराज होके, तो उसके पेरेंट ने कहा कि जी हमें बस तलाक चाहिए, उन्होंने कहा अगर नहीं दोगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे।
0: अच्छा ठीक है।
11: डर लग गया कि जारी से बात भी क्यों मांग रहे हैं क्या वजह है सर, फिर ना उन्होंने इतनी जल्दी की ना कि जैसे उन्होंने तलाक मुझे कहा कि दो तो मैं उनके हुक्म के ताबे हो गया, जिस इंसान ताबे नहीं कर लेता कोई, तो मैंने उसी टाइम जाके ना मतलब साइन करके दे के आ गया, मतलब कि एक होती ना जबानी देना तलाक की यार डिवोर्स देते हैं कि अपनी मुतमिन से देना कि यार मैं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे कंडीशन समझ नहीं आई सर। फिर मतलब 2 माह गुजर गए ना इस चीज को, जब 3 माह गुजरे तो मैंने ना अपने मतलब किसी को बताया ऑफिस पर, तो उन्होंने कहा जी आपको बहुत बड़ा काले लंग था, तो मैंने जो तवीज निकाला मैंने कहा अच्छा सर मेरे पास वो तवीज पड़ा हुआ मैंने फेंका था तो बैग में दो मैं आपको दिखाऊँ, उन्होंने कहा जी ये तवीज ही बहुत ना खतरनाक है, ये मतलब कि आम बंदा नहीं पढ़ सकता, जो आम हाफिज या मौलवी होता है ना वो उनके बाहर है, तो उन्होंने अपने कोई बड़े उलमा कराम के साथ है उनको दिखाया, तो मैंने कहा
0: सही है, बड़ा बड़ा मसला है ये, बड़ा मसला है वैसे जादू टोना है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी जी जी जी जी
12: अच्छा कभी कॉल नहीं
0: कसम खाती।
12: अच्छा प्रॉब्लम ये है कि बाहर से किसी ने कह दिया कि यार तेरी बीवी ये अंदर आ
0: गई। हां ठीक है, ट्रैक एक सुनते हैं फिर वापस आते हैं, बस एक मिनट दे दे मुझे, मैं जरा चीजें जो हैं वो ठीक कर लूं थोड़ी सी, इसलिए मैं कॉल नहीं लेना समझ आएगा, इसलिए टॉपिक्स लेके चलते हैं हम।

अच्छा ये वाला जो ट्रैक है ना, ये वाला हमने नहीं लगाना था, ये थोड़ा सा मुझसे गलत ट्रैक मुझे शाद ने अभी बताया। इस्लामाबाद से मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं और उनके साथ मेरे एक और बहुत प्यारे से भाई आए हैं, उनका नाम है बदर शफीक, मेरे मेरे बहुत बहुत प्यारे से भाई हैं। इसको मैं ऐसे करता हूँ कि मैं दोबारा कहता हूँ, है ना, फिर ये याददाश्त हो जाएगी। सो मेरे पास इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं शाद यूसुफ, अक्सर आप प्रोग्राम में उनका नाम सुनते रहते हैं और वो शामिल भी होते रहते हैं, मुख्तलिफ़ बातें भी करते रहते हैं। और मेरे साथ शाद के साथ साथ मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं बदर शफीक, वो मेरे इस वक्त इस वीडियो के अंदर पीछे नज़र आ रहे हैं और आपको सुनाई दे रहे हैं, वो नहीं मैं। एक नज़्म की फरमाइश है शाद की तरफ से, सो

अब उसने ये फरमाया, ये वाले बीजीएम के ऊपर पढ़ते हैं, कहां हो तुम, कहां हो तुम, कहां हो तुम, तुम्हारे नाम का दिल में जो हिस्सा है, किसी गुमनाम वीरानी से भरता जा रहा है। और यहां पर जो रिवायत सी है लम्हों के नए आबादकारों की, मेरे एहसास की सख्ती फसीलों से फिसलती घर की दहलीजों के अंदर आ गिरी है।

कहाँ हो तुम? किताबे जाम में मेरी तुम्हारे नाम का रंगीन वर्क अब तो कई दिन से बहुत सादा नजर आने लगा है और शिकस्ता भी बहुत ज्यादा नजर आने लगा है और किनारों से जरा सा मुड़ गया है। प्यास की शिद्दत में तड़पे और तड़प के मर गए होंठों की सूखी जल्द की मानिंद कहाँ हो तुम? तुम्हारे नाम का दिल के सुनहरे दश्त में तन्हा तनावर पेड़ था जो अब बहुत कुमला गया है। जर्द शाखों पर नए पत्ते हैं न बेचारे तने पर छाल जिंदा है, फकत बीमार और बिछड़ा हुआ एक साल जिंदा है। करीबुल मर्ग दुखिया की तरह तड़पे न रो पाए न सो पाए न दिल से दाग धो पाए न मिल पाए न कभी खुद से खो पाए। कभी ढूंढे कभी थक हार के सोचे यहां हो तुम वहां हो तुम। कहां हो तुम कहां हो तुम कहां हो तुम कहां हो तुम कहां हो तुम। ये ट्रैक शाद की फरमाइश पर उसके लिए और बदर शफीक भाई के लिए काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं और चेहरे पर स्माइल बरकरार रखने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। 1:46, 14 मिनट बाकी।

0: नजरें फिर गईं हमसे। ये दुख भी एक बड़ा दुख है इस्लाम कि जब हम वो नजरें हमेशा से अपने लिए देखना चाह रहे हों और हों भी पहले वो हमारे साथ, है ना अली?
1: बिल्कुल।
0: और फिर एक वक्त ऐसा आए कि वो नजर फेर ले, बताए भी नहीं कि क्या जा चुके हो तुम, क्योंकि नजर फेर ली है तो जा चुके हो तुम। अब ये नहीं कह सकता कि जाने वाले हो तुम, जा चुके हो तुम। ऐसी सूरत हाल में इंसान जो है ना वो कोशिश कर रहा होता है कि ये ना सोचे कि वो टूट गया है। ऐसी सूरत हाल में इंसान कोशिश कर रहा होता है कि मुझे भी अपने साथ ये ले जाए। कुछ लोगों तो मैंने यहां तक भी देखा है कि अच्छा कोई और नजर में आ गया है तो अभी फिल वक्त के लिए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझे भी छोड़ दो तुम, अभी कुछ देर के लिए रहने दो साथ। कहां हो तुम? हकीकत चाहे सामने आ गई हो, वाजे हो गई हो शकल के, अच्छा ये है यहां तक है। चाहे उस वक्त जितने भी कॉल, जितने भी करार या फिर इकरार जहन में आ रहे हों कि ये कहा था वो कहा था, किसी ने ये कहा था कि जहां तक कोई साथ चले वहां तक उसका शुक्रिया, लेकिन उस लम्हे में ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मैं अभी इन तमाम बातों को नहीं मानना चाहता, मैं इन तमाम बातों को नहीं मानना चाहती, अभी अभी मुझे छोड़कर मत जाओ, अभी दूर नहीं जाओ। facebook.com/fm101 लाहौर के ऑफिशियल फैन पेज के पैगामात शामिल करूंगा, 4471 के पैगामात शामिल करूंगा। अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर आप लिखेंगे 101 स्पेस देकर अपना नाम, अपना पैगाम और उसे भेज देंगे 4471 4471। और फातिमा हमारे साथ मौजूद। भाई हसन कुजागर का मफहूम या तशरीह तो बताइए कि फिर सुनने में मजा आए। अच्छा ठीक है, किसी दिन बताऊंगा के नीचे गली में तेरे दर के आगे ये क्या होता है, इन तमाम बातों का मतलब।
2: किसी दिन ज़ियान जम साहब को बिठा ले, उनसे मतलब समझ।
0: बड़ा आसान सा मतलब है अगर गौर से सुना जाए, अगर ये ना कहा जाए कि लफ्ज बहुत मुश्किल है। बड़े आसान लफ्ज हैं, यकीन करें। कुछ लफ्ज मुश्किल हो सकते हैं, जैसे पाबा गिल खाक बर सरबराहना। पाबा गिल यानी गीली मिट्टी में नंगे पांव। कभी ऐसे चले हैं आप? आबला पाई का कभी हुनर सीखा है आपने? अच्छा चलें ठीक है, हाँ सिखाऊंगा सारे मतलब सिखाऊंगा, क्लास दूंगा पूरी उर्दू की। डॉक्स वैसे बड़े गुस्से में रहते हैं इस बात से, और क्यों इतनी मुश्किल उर्दू बोलता रहता है। अच्छा मैंने उसके बाद कहा है कि नहीं, अब मैं मुश्किल उर्दू नहीं बोलता। प्रोग्राम का स्टार्ट वेरी नाइस। लाहौर से अभी महबूद हमारे साथ, अमल हबीब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमान, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम मरीना। अस्सलाम वालेकुम आरज रहमान, वेलकम मरीना फ्रॉम लाहौर। अमल कह रही हैं वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयदा भाभी हमें सुन रही हैं, कह रही हैं इतनी खामोशियां क्यों होती हैं तेरी आगोश में ऐ कब्रिस्तान, लोग तो अपनी जान देकर तुझे आबाद करते हैं। जैन बुखारी। जैन ये क्या तुम किस तरह के शेर लिखने लग गए? तुम्हारी सैयदा से शादी हो चुकी है और तुम इस तरह के शेर लिखोगे अब हैं? मेरा बहुत प्यारा सा भाई है, बहुत बहुत पुराना लिसनर है। 101 पे जब प्रोग्राम स्टार्ट किए थे मैंने 10 से 12 के प्रोग्राम, उसमें याद है ना जैन, तुमने मुझसे नंबर लिया था एक शख्स का, यही है वो शख्स। जैन थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, खुश रहो आबाद रहो। भाभी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू का। आपने एस साजिदा, अच्छा दूसरी तरफ दरअसल लाइट ऑन नहीं है, तो वसीम साहब तशरीफ ला चुके हैं, आरजे वसीम अहमद 3 मिनट के बाद आपके साथ प्रोग्राम कर रहे होंगे। गुंचा इस शौक और मैं जल्दी से मैसेज पढ़ के आपसे इजाजत चाहूंगा और टॉपिक को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अधूरा छोड़ के जाऊंगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में कल आके शायद डिस्कस करें इसको। इसके बाद साजिदा जहूर साहिबा कह रही हैं वेलकम जी, हेलो आरजे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। किंजा उस्मान हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिदा जहूर साहिबा फैसलाबाद से पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट कहा है आपने, गुड नाइट। हेलो लाहौर, अमल हबीब ने बहुत से गुलाब भेजे हैं मुझे, ठीक है।

खूबसूरत बातें करते हैं, ऐसी बातें जो दिल को मोह लेती हैं, दिल को अपने हिसार में ले लेती हैं। वसीम भाई एक मिनट, बस एक मिनट दे दे। नहीं, मैंने खोल दिए हैं सारे रास्ते, कहीं से भी आ सकते हो। कोई बात बुरी लगी हो तो तिफले मकतब समझकर, ये सोच करके अभी सीखने के अमल में हो, दरगुजर कर दीजिएगा या फिर माफ कर दीजिएगा, बड़े लोग हैं आप। लेकिन अगर कोई एक बात किसी एक इंसान के लिए भी मशाल रहा हो गई, यहां पे आने का, प्रोग्राम करने का, बात करने का मकसद पूरा हो जाता है। और फिर आखिर में मैं जमीन से एक दिन आसमां को आऊंगा, तुम पहले आसमां पे मेरा इंतजार करना। अल्लाह हामिद नासिर।

आंखों को इल्तबास बहुत देखने में थे, आंखों को इल्तबास बहुत देखने में थे, कल शब अजीब अक्स मेरे आईने में थे। आंखों को इल्तबास बहुत देखने में थे, कल शब अजीब अक्स मेरे आईने में थे, हर बात जानते हुए दिल मानता ना था, हर बात जानते हुए दिल मानता ना था, हम जाने एतबार के किस मरहले में थे। हर बात जानते हुए दिल मानता ना था, हम जाने एतबार के किस मरहले में थे, वसलो फराक दोनों हैं एक जैसे नागुजीर, वसलो फराक दोनों हैं एक जैसे नागुजीर, कुछ लुत्फ उसके कुर्ब में कुछ फासले में थे। सहले जमा की मौज का हर बार सह गए, वो दिन जो एक टूटे हुए राब्ते में थे, सहले जमा की मौज का हर बार सह गए, वो दिन जो एक टूटे हुए राब्ते में थे, गारत गरी के बाद भी रोशन थी बस्तियां, गारत गरी के बाद भी रोशन थी बस्तियां, हारे हुए थे लोग मगर हौसले में थे, हारे हुए थे लोग मगर हौसले में थे, हिर फिर के आए नुक्ते आगाज की तरफ, हिर फिर के आए नुक्ते आगाज की तरफ, जितने सफर थे अपने किसी दायरे में थे, आंधी उड़ा के ले गई जिसको अभी अभी, मंजिल के सब निशान उसी रास्ते में थे, छूले उसे कि दूर से बस देखते रहे, छूले उसे कि दूर से बस देखते रहे, तारे भी रात मेरी तरह मखमसे में थे, जुगनू सितारे आंख सबा तितलियां चिराग, जुगनू सितारे आंख सबा तितलियां चिराग, सब अपने अपने गम के किसी सिलसिले में थे, जितने थे खत तमाम का था एक जाविया, जितने थे खत तमाम का था एक जाविया, फिर भी अजीब पीछ मेरे मसले में थे, अमजद किताबें जहां को वो पढ़ता भी किस तरह, अमजद किताबें जहां को वो पढ़ता भी किस तरह, लिखने थे जितने लफ्ज अभी हाफिजे में थे, अमजद किताबें जहां को वो पढ़ता भी किस तरह, लिखने थे जितने लफ्ज अभी हाफिजे में थे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामेईन, 101 एफएम पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से एफएम 101 के नेटवर्क पे आवाज़ है आपकी जानिब जानी, आपके अपने मेज़बान आरजे वसीम अहमद की। तमाम खूबसूरत सवातों को प्रोग्राम गुंजे शौक में मेरा बहुत बहुत मोहब्बत भरा, खुलूस भरा, प्यार भरा सलाम कबूल हो। कि ये ठीक ठाक है ना, खैरियत से है ना, आज का दिन यकीनन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। और इस वक्त जो आप हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपके साथ मौजूद हैं, हम पूरा यकीन करते हैं और यकीन रखते हैं कि हमारा ये जो वक्त है एक दूसरे के साथ, ये भी बहुत ही शानदार और बहुत बढ़िया और बहुत ही आला गुजरेगा। और जो हमारे दिलों के अंदर बातें मौजूद होती हैं उनको भी हम निकाल पाएंगे, कह पाएंगे, कुछ बातें जो हम कभी नहीं कह पाते और कुछ बातें ऐसी जो कि हम कहना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास अल्फाज मयस्सर नहीं होते।
और हम अल्फाज को ढूंढते रहते हैं, अल्फाजों को इकट्ठा भी कर लेते हैं, तब भी हम बात नहीं कह पाते। मगर शायरी एक ऐसी चीज़ है कि हम कुछ भी कहना चाहें, हम इसकी ज़ुबान में सब कुछ कह जाते हैं, कह सकते हैं। कुछ लोग ज़िंदगी में सिर्फ मिलते नहीं, वो दिल में उतर जाते हैं। अचानक मुलाकात हो गई। अच्छा, कभी हम मिले भी नहीं होते, कभी हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं होता, बस एक दिल के अंदर एक आस, एक उम्मीद होती है कि कोई ऐसा शख्स हमारी ज़िंदगी में आएगा जो हमारे दिल में उतर जाएगा। और ऐसे लोग हमारे तसव्वुर में आते हैं, हमारी ख्वाबों में आते हैं। जब कभी वो हमारे सामने आ जाते हैं तो उसी वक्त वो अपनी उस जगह पे आन मौजूद होती हैं जो जगह उनके लिए बिल्कुल खाली होती है हमारे दिल में। फिर उनकी एक मुस्कुराहट पूरा दिन खूबसूरत कर देती है। जो लोग हमें सिर्फ मिलते नहीं, जो हमारे दिल में उतर जाते हैं, उनकी जो मुस्कुराहट होती है पूरा दिन क्या पूरी जिंदगी को खूबसूरत कर देती है। उनकी आवाज़, जादू सा जगाती हुई आवाज़ दिल की धड़कन बन जाती है। उनकी आवाज़ सुनते ही, उनको देखते ही दिल धक धक धक धक धक धक करने लग जाता है। उनका नाम लिखते ही लफ्ज़ जो होते हैं वो एक सीक्वेंस में आ जाते हैं, एक खूबसूरत लड़ी में पिरोज जाते हैं, वो लफ्ज़ शायरी बन जाते हैं। और जब कभी उनकी याद आती है तो खामोश रातों की सबसे हसीन गजल बन जाती है। शायद इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। किसी का ख्याल आते ही बेख्तियार मुस्कुरा देना, ऐसे ही हवाओं में, खलाओं में देखते हुए बेख्तियार मुस्कुरा देना, किसी को तलाश करना हवाओं में, फिजाओं में, और ऐसे ही दीवारों की तरफ देखते हुए, आसमान की तरफ देखते हुए, नज़ारों की तरफ देखते हुए, उन नज़ारों को अपने दिल के बहुत करीब महसूस करना, बहुत खूबसूरत महसूस करना, बिल्कुल ऐसे ऐसा महसूस करना कि हमारा महबूब जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो हमारे बिल्कुल सामने खड़ा है। जैसे हम चांद को तकते हैं अपने महबूब को अपनी नज़रों के सामने लाते हुए, और बेख्तियार मुस्कुरा देते हैं, बगैर कहे उसकी बात समझ लेते हैं। वो कुछ कहे ना कहे हमें समझ आ जाती है, और हम भी कुछ कहे ना कहे उनको समझ आ जाती है, और दूर रहकर भी उसे अपने दिल के सबसे करीब महसूस करते हैं। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ ना? आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि दूर रहते हुए भी हम उसको अपने करीब महसूस करते हैं और दिल के बहुत करीब महसूस करते हैं। वो सारी बातें जो हम कहना चाहते हैं, वो सारी बातें जो हम सुनना चाहते हैं, वो बगैर कहे, बगैर आमने सामने बैठे हम एक दूसरे को सुनाई भी दे रहे होते हैं, हम एक दूसरे को दिखाई भी दे रहे होते हैं। यही मोहब्बत की पाकीज़गी है और यही मोहब्बत की खूबसूरती है। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि मोहब्बत के बारे में भी बात होगी, मगर आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में बहुत खूबसूरत पोइट्री लेके आएंगे। अगर मोहब्बत से जुड़ी हुई पोइट्री लेके आएंगे तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर ना आपने आज के प्रोग्राम में हमें ये ज़रूर बताना है कि आप अपनी पसंद का कौन सा शेर है जो आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं किसी के लिए। जब भी वो शेर आपके होंठों पे मचलता है तो किसी का चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाता है। जिंदगी की बहुत सारी खूबसूरतियां, बहुत सारी रानाइयां जो हैं वो हमारे साथ साथ चलती रहती हैं, हमारी जिंदगी हमारे साथ चलती रहती है, और हम कभी कभी उन रानाइयों से, उन खूबसूरतियों से नजर चुरा भी लेते हैं। कहते हैं जनाब आज मेरा मूड ठीक नहीं है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी कहते क्या हुआ आज, क्या मसला क्या है, अपने आप से बात करके देखते हैं, पता चलता है कि आज तो दिल बहुत उदास है।
ये दिल भी कमाल की चीज़ है, कभी ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कभी ये बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। ना ही इसकी खुशी के पीछे जाना चाहिए और ना ही इसकी उदासी के पीछे जाना चाहिए। अगर हम इसकी खुशी और उदासी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो यकीन मानिए हम अपने दिल के हाथों तो पहले ही मजबूर होते हैं और ज़्यादा मजबूर हो जाएंगे। सीना दहक रहा है तो क्या चुप रहे कोई, सीना दहक रहा है तो क्या चुप रहे कोई, क्यों चीख चीख करना गला छील ले कोई। साबित हुआ सुकून दिलो जान नहीं कहीं, साबित हुआ सुकून दिलो जान नहीं कहीं, रिश्तों में ढूंढता है तो ढूंढा करे कोई, तरके ताल्लुकात कोई मसला नहीं, तरके ताल्लुकात कोई मसला नहीं, ये तो वो रास्ता है कि बस चल पड़े कोई। दीवार जानता था जिसे मैं वो धूल थी, दीवार जानता था जिसे मैं वो धूल थी, अब मुझको एतमाद की दावत न दे कोई। मैं खुद ये चाहता हूं कि हालात हों खराब, मैं खुद ये चाहता हूं कि हालात हों खराब, मेरे खिलाफ जहर उगलता फिरे कोई। ऐशक साहब तो मुझको सभी कुछ कबूल है, शख्स अब तो मुझको सभी कुछ कबूल है, ये भी कबूल है कि तुझे छीन ले कोई। खूबसूरत शेर है, दोबारा से पेश करूंगा आपके लिए। और ये सारी जो पोएट्री आप सुन रहे हैं ये जॉन एलिया का कलाम है। ऐ शख्स अब तो मुझको सभी कुछ कबूल है, ये भी कबूल है कि तुझे छीन ले कोई। हाँ ठीक है मैं अपनी अना का मरीज हूं, हाँ ठीक है मैं अपनी अना का मरीज हूं, आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई। एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश उस जबान दराज का मुंह नोच ले कोई। सीना दहक रहा हो तो क्या चुप रहे कोई, क्यों चीख चीख कर न गला छील ले कोई। उन्होंने एफएम पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन, आवाज आपकी समातों तक पहुंच रही है, आपके अपने मेजबान वसीम अहमद की। जिन लोगों ने अभी अभी 101 FM पाकिस्तान को ट्यून इन किया उनको हम बताते चलेंगे आप ये प्रोग्राम नेटवर्क पे सुन रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान FM 101 के जितने भी स्टेशन हैं सब पे आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। और जिन लोगों ने मेरे इस प्रोग्राम को, मेरे इंजीनियर्स ने सारे स्टेशनों पे जहाँ जहाँ भी जो हमारे मददगार हैं जिनकी वजह से आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उन सबको मेरा सलाम है, मोहब्बत, और उनका बहुत सारा शुक्रिया कि उन्होंने आपके साथ मुझे कनेक्ट किया रेडियो के ज़रिए। उसके साथ साथ आप रेडियो पाकिस्तान की जो मोबाइल ऐप है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन पर रेडियो पाकिस्तान के तकरीबन सभी चैनल्स जो हैं वो आप सुन सकते हैं 24 आवर्स। आप किसी न किसी चैनल को भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। और इसी तरह से आप हमारे रेडियो पाकिस्तान की जो वेबसाइट है www.radio.gov.pk, इस पर जाके आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को भी इंजॉय कर सकते हैं। प्रोग्राम में आपका शामिल होना यकीन मानिए बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे बहुत ही प्यासे शख्स को बहुत मीठा ठंडा पानी जो है वो पीने के लिए मिल जाए। सहरा के अंदर जिस तरह से हम कहते हैं कि हमें जनाब नखलस्तान मिल गया, बिल्कुल वैसे ही है। आपके मैसेजेस का मुझे इंतज़ार रहता है और बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने मैसेजेस हम तक भिजवाते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, मतलब आपके जो कमेंट्स हम तक पहुँचते हैं, कमेंट भेजने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर आएंगे www.facebook.com/FM101Lahore। उसके साथ साथ आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम पैगाम लिखिए और उसे भेज दीजिए यानी सेंड कर दीजिए 4471 पे यानी 4471 पे। और इसी तरह से आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं 042-111-0101 पे।
और पाकिस्तान से बाहर से अगर आप कॉल करना चाहें तो 00092 मिलाइए, उसके बाद 42 मिलाइए और 111-000-101 को मिलाइए, तो आपकी कॉल हम तक पहुंच जाएगी। रात का ये खूबसूरत पहर है और रात का खूबसूरत के साथ साथ आखिरी पहर है, और चांद जो है अभी मैं स्टूडियोज की जानेब आ रहा था तो आसमान के ऊपर चमक रहा था। अच्छा, मौसम चूंकि गर्मी, अजीब सी गर्मी है, बहुत ही तड़पा देने वाली गर्मी है, उस गर्मी के अंदर भी रात के वक्त भी बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे जो वक्त है वो थमा हुआ है, सूर्य गुरूब भी हो जाता है फिर भी जो तपश है वो मौजूद रहती है। मगर जब मैं आ रहा था तो यकीन मानिए चांद को देख के ठंडक का एहसास हो रहा था। एक खूबसूरती गो के 14 तारीख गुजर चुकी है, 14वीं का चांद नहीं था, नहीं है, आज गुजर चुका है मेरा ख्याल, और बिल्कुल गुजर चुका है, मगर फिर भी अभी अमावस की जो रातें हैं वो नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चांद घटता चला जाएगा और अंधेरी रातें भी आएंगी। और चांद को देखते हुए यकीन मानिए मुझे आप सब लोगों का ख्याल आता था, आ रहा था कि मेरे जो लिस्टनर्स हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं जिस तरह चांद दिन का इंतज़ार कर रहा है, या चांद सितारों का इंतज़ार कर रहा है, या चांद शहर का इंतज़ार कर रहा है, या चांद मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो आपके लिए प्रोग्राम हम पेश करते हैं, तो आपके अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो यकीन मानिए चांद जो है वो अकेला आसमान पे घूमता रहेगा। आप क्या समझ रहे हैं कि मैं अपने आप को चांद कह रहा हूँ? ऐसे ही समझ लीजिए, आप भी चांद बन जाइए, अकेले मत घूमिए, मैं आपके साथ सितारा बन के चलूँगा, आप मेरे साथ सितारे बन के चलिए और भरपूर तरीके से प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप कर सकते हैं, आपके पास फैसिलिटी है और आपको नींद नहीं आ रही और आप मेरे प्रोग्राम को सुनने के लिए जाग रहे हैं, ज़बरदस्ती जाग रहे हैं, तो आपका बहुत सारा शुक्रिया। और अगर आपको नींद नहीं आ रही और आपने मेरे प्रोग्राम को ट्यून इन कर लिया, अचानक से कर लिया, तो आपको दिल की गहराइयों से वेलकम कहता हूँ, और आपने डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम में अपने मैसेजेस भिजवाने हैं और अपने कमेंट्स हमें भिजवाने हैं। और कमेंट भेजने के लिए आप कहाँ पे आएंगे? www.facebook.com/fm101 लाहौर पे आप आएंगे, और इस पेज पे आके आपने पेज को भी लाइक करना है और मुझे अपने ढेर सारे कमेंट्स जो हैं वो आपने भिजवाने हैं, ताकि आपकी जो पार्टिसिपेशन है वो भरपूर तरीके से प्रोग्राम में शामिल हो सके। लाइव कॉल्स का सिलसिला भी करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम पोइट्री बेस्ड है, ज़्यादातर इसमें हम शायरी ही आपके लिए शामिल करते हैं, तो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में ज़रूर शायरी लेके आएंगे, और जब आप शायरी लेके आते हैं तो प्रोग्राम की जो खूबसूरती है वो बिल्कुल आपकी स्माइल की तरह और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, यानी जिस वक्त आप मुस्कुराते हैं तो आपका चेहरा और ज़्यादा दिलनशीन और खूबसूरत हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह हमारा प्रोग्राम भी खूबसूरत हो जाता है। कुछ बातें ज़िंदगी में बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं और कुछ बातें जो हैं वो कुछ लम्हे हमारी ज़िंदगी में आके ठहर से जाते हैं, कुछ बातें बीत जाती हैं, मगर गुजरती नहीं है। बातें बीत जाती हैं मगर बातें जो हैं वो गुजरती नहीं है। जिंदगी रुक सी जाती है मगर जिंदगी चलती रहती है, वही सब कुछ होता है और नहीं होता तो वो नहीं होता जो हम चाह रहे होते हैं। जो बातें बीत जाती हैं वो पलट के नहीं आती, मगर वो गुजरती भी नहीं है, वो वहीं पे मौजूद रहते हैं, वो शख्स वहीं पे हमारे सामने मौजूद रहता है जो हम में नहीं है, वो लम्हा वहीं पे मौजूद रहता है जो बीत चुका है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? ऐसे लम्हे जिंदगी में हमारे आते हैं जो बीत चुके हैं मगर फिर भी गुजरे नहीं। हम उन्हीं लम्हों के पीछे भागते रहते हैं, उन्हीं लम्हों के अंदर जिंदा रहते हैं जो गुजरते नहीं, हम उन्हें गुजरने नहीं देते, या वो गुजरते नहीं है, आप क्या कहते हैं? ऐसा ही है ना, जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि वो वक्त, वो समां, वो गुजर जाता है, वो बीत जाता है, मगर वो हमारे दिल के निहा खान में ठहर सा जाता है।
वहाँ से ना हम आगे निकल सकते हैं ना हम पीछे जा सकते हैं, हम उसी एक लम्हे के होके बैठ जाते हैं। शायद ज़िंदगी इसी का नाम है, शायद ज़िंदगी इसी को कहते हैं। मगर वो जो बीत नहीं रहा, जो हमारे साथ मौजूद है, हमारे दिल में मौजूद है, शायद वही लम्हा है हमारी ज़िंदगी का जिसमें हम जी रहे होते हैं, जिसमें हम जिए थे। कुछ लोग जी रहे होते हैं, कुछ लोग जी चुके होते हैं, बस हम भी जी चुके होते हैं उन लम्हों में जो कि बीत चुके होते हैं मगर हमारे दरमियान मौजूद होते हैं, गुजरे नहीं होते हैं। रंजे फिराक के यार में रुस्वा नहीं हुआ, रंजे फिराक के यार में रुस्वा नहीं हुआ, इतना मैं चुप हुआ कि तमाशा नहीं हुआ। रंजे फिराक के यार में रुस्वा नहीं हुआ, रंजे फिराक के यार में रुस्वा नहीं हुआ, इतना मैं चुप हुआ कि तमाशा नहीं हुआ। ऐसा सफर है जिसमें कोई हम सफर नहीं, ऐसा सफर है जिसमें कोई हम सफर नहीं, रास्ता है इस तरह का जो देखा नहीं हुआ। मुश्किल हुआ है रहना हमें इस दियार में, बरसों यहां रहे हैं ये अपना नहीं हुआ। मुश्किल हुआ है रहना हमें इस दियार में, बरसों यहां रहे हैं ये अपना नहीं हुआ। वो काम शाह शहर से या शहर से हुआ, जो काम भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। मिलना था एक बार उसे फिर कहीं मुनीर, मिलना था एक बार उसे फिर कहीं मुनीर, ऐसा मैं चाहता था पर ऐसा नहीं हुआ। मिलना मैं चाहता था, मिलना था एक बार उसे फिर कहीं मुनीर, मिलना था एक बार उसे फिर कहीं मुनीर, ऐसा मैं चाहता था पर ऐसा नहीं हुआ। रंजे फिराक के यार में रुस्वा नहीं हुआ, इतना मैं चुप हुआ कि तमाशा नहीं हुआ, इतना मैं चुप हुआ कि तमाशा नहीं हुआ।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

लग रही है मुझे आज सारी फिजा अजनबी अजनबी। ओके जी, अंजुमन फिल्म का ये खूबसूरत गीत आपने सुना अहमद रुश्दी की आवाज़ में, और म्यूजिक था निसार बुज़मी ने। और हमारे प्रोग्राम में शामिल है सबसे पहले नंबर पे मोहम्मद शहजाद, और प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहजाद। हम किसी भी वक्त आए आप हमारे साथ मौजूद होते हैं और अपने प्रोग्राम की तारीफ़ की है, और कहा कि मैं लाइव कॉल्स में आपके साथ आऊँगा, बात करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, ज़रूर आइएगा। रोज़ी रिजवाना साहिबा की ऑफ़ एयर कॉल हम तक पहुँची और प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं, और हमने इनसे कहा कि जी आप जब लाइव आएंगी ना, तो इन्होंने कहा जी मैं आऊँगी तो आप आँखें हमें खूबसूरत शायरी सुनाइएगा। तो इन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया है कि हमें, हमारी बात हुई उनसे, तो इन्होंने कहा कि जी मैं आपको शायरी सुनाऊंगी बहुत अच्छी। महबूब अली हमारे बहुत अच्छे बहुत प्यारे भाई हैं, और उन्होंने रूना लैला के गाने की फरमाइश की है, तो अगर वो गाना ना मैं प्ले कर सका तो रूना लैला की आवाज़ आज के प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँगा। कह रहे कि मैं आपका पूरा प्रोग्राम सुनूंगा। महबूब अली आप जीते रहिए, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल हमीद फारूकाबाद से प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं, और हमारे सभी प्रोग्राम्स के ये रेगुलर जो लिस्टनर हैं अब्दुल हमीद, आपने बहुत सारी दुआएँ दी, आपका बहुत शुक्रिया। आप जीते रहिए, आप इस वक्त भी माशाल्लाह बड़े फ्रेश ताज़ा दम हमसे होके बात कर रहे थे, और दिल खुश हुआ आपकी आवाज़ को सुन के, आपकी मोहब्बत को देख के, और आप इस तरह से हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में, बल्कि सब लोगों का मशहूर हूँ कि रात के इस पहर में भी मेरे प्रोग्राम में लोग शामिल हो रहे हैं। रोज़ी रिजवाना का मैसेज है जनाब, कमेंट हमारे प्रोग्राम में फेसबुक पे जो मैसेजेस है वो शामिल करने लगा हूँ, आप भी ज़रूर फेसबुक पे अपने कमेंट्स भेजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो रोज़ी रिजवाना ने कहा कि जी नाइस शो और क्लैपिंग का एक इन्होंने आइकॉन भेजा है। हमीद गुल साहब, वाह वाह वाह, हमीद गुल साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, कहते कि अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहें हमेशा, बहुत शुक्रिया। और कहते कि गरचे कोई भी लम्हा सदा पास नहीं रहता, गरचे कोई भी लम्हा सदा पास नहीं रहता, तुम साथ हो तो वक्त का एहसास नहीं रहता। क्या बात है जनाब, आप जब हमारे साथ होते हैं ना, तो यकीन मानिए वक्त का बिल्कुल भी एहसास, वाकई में वक्त का एहसास बिल्कुल नहीं रहता। हमीद गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और उसके बाद हैं जुगनू जूनियर, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, नाइस एंड वंडरफुल प्रोग्राम, तमाम खूबसूरत समातों को दिल की गहराइयों से वालेकुम अस्सलाम, और जिनका नाम रह जाए पहले ही माजरत, सज्जाद अली लाडला, मोहम्मद शहजाद, नीला आबी, मारिया शहजादी, तारक भाई, हमीद गुल साहब, उस्मान मुगल, और जितने भी हमारे प्यारे कॉलर हैं सबको सलाम अलैकुम। और इन्होंने भी क्लैपिंग भेजी है। ताहिरा मसूद साहिबा हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं, कह रही हैं कि अस्सलाम अलैकुम, किन्जा उस्मान अस्सलाम अलैकुम, सब सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम, आपका सलाम सब सुनने वालों को पहुँच गया, मैं बोलने वाला हूँ किन्जा आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मलक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी, माशाल्लाह बहुत उमदा बहुत उमदा प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। ताहिरा मसूद साहिब ने हमें पोइट्री से नवाजा है, तो जनाब मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूँ, वही जख्म सा वही गर्द सी वही दाग से, वही जख्म सा वही गर्द सी वही दाग से, तेरा दस्त मिलता है किस कदर मेरे बाग से, कोई ऐसी राख भरी है मेरे वजूद में, ये चिराग जलता नहीं किसी भी चिराग से, तुझे इसलिए मैं उड़ेलता नहीं दफतन, कहीं तू छलक ही ना जाए दिल के अयाग से, कोई बात भूलनी हो तो क्या है तरीकेकार, कभी पूछ मेरे लिए भी अपने दिमाग से, ये झगड़ती आंखें उलझती नींद बिगड़ते ख्वाब, ये महवियत थी बली थी ऐसे फराग से। वाह वाह वा, क्या बात है, ये झगड़ती आंखें, ये झगड़ती आंखें उलझती नींद बिगड़ते ख्वाब, कभी कभी नहीं अक्सर अक्सर इन सारी चीज़ों से मेरा पाला पड़ा होता है। ओके जी शेरी, ओके जी बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में ताहिरा मसूद आपने इजाफा किया, किन्जा उस्मान कहते कि वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र खैरियत से हैं, और किन्जा ने कहा है कि जी सही कह रहे हैं आप, वक्त कुछ ऐसा होता है गुजर कर गुजरता नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बात को मेरी बात को उसके ऊपर आपने अपने कमेंट दिए और उस बात को माना है,
कि वाकई जो वक्त जो लम्हे बीत जाते हैं वो बीत तो जाते हैं मगर गुजरते नहीं हैं। आप क्या कहते हैं इसके बारे में, यही समझ लीजिए कि आज के प्रोग्राम का टॉपिक है। और मुंडा सियालकोटी कह रहे हैं कि जी मतलब जनाब मलक वसीम ओवान मुंडा सियालकोटी की तरफ से आपको और आपकी टीम को सुनने वालों को सबको सलाम अलैकुम। और चाय का एक कप इन्होंने भेजा है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जुगनू जूनियर, बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं कि जी बददुआ से डरते हैं पर किसी के सब्र से नहीं। ओके जी, इन्होंने लोगों की बात की कि लोग बददुआ से डरते हैं और किसी के सब्र से नहीं डरते। और मैं भी देखता हूँ लोगों को हंसते हुए चेहरे और यही दुआ करता हूँ कभी उनको मोहब्बत ना हो। मलक वसीम ओवान ने कहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है, जुगनू जूनियर ने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, खूबसूरत पोइट्री आपकी आ रही है, मगर मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने क्या करना है कि अपने कमेंट्स भेजने बंद नहीं करने, चाहे रात का कितना ही पहर क्यों ना हो जाए। जैसे जैसे रात गहरी होती है, बीकती चली जाती है, वैसे वैसे दिल जो है वो हमारे साथ ज़्यादा सच बोलने लगता है, ज़्यादा खूबसूरत बातें करने लगता है, ज़्यादा सच्ची बातें करने लगता है। रोज़ी रिजवाना ने प्रोग्राम को लाइक किया, किंजा उस्मान ने प्रोग्राम को लाइक किया, आर के मुगल ने प्रोग्राम को लाइक किया, आर के मुगल आपकी पोइट्री नहीं पहुँची, हमीद गुल साहब ने प्रोग्राम को लाइक किया, जूनियर जूनियर ने प्रोग्राम को लाइक किया, मलक वसीम ओवान ने प्रोग्राम को लाइक किया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने के लिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। प्रोग्राम आपका जाना पहचाना गुंजा शौक, मैं आपका मेज़बान वसीम अहमद आपके साथ खूबसूरत पोइट्री आपकी नज़र कर रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर में हम अपने लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे और फिर आपसे सुनेंगे आपकी जो चॉइस है, जो आपकी पसंदीदा पोइट्री है, जो आपकी पसंदीदा बातें हैं वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जिन लोगों से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनके बगैर हम रह नहीं सकते, वही अचानक से बदले बदले से लगते हैं, लगता है कि कुछ कुछ कुछ कमी है, कहीं कुछ ना कुछ कोई गड़बड़ जरूर है, कहीं ना कहीं कोई फासला कायम हो रहा है। ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ, कभी महसूस हुआ आपको कि आपका कोई बहुत ही करीबी, जिसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, जिसके बगैर आप एक लम्हा रहना भी नहीं चाहते, आपको उस शख्स की बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है, उससे दूर नहीं रह सकते, वही आपको बदला बदला सा लग रहा है, वही आपको अपने आप से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बात करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए, क्या मसला है। अरे कौन बताता है कि क्या मसला है, जब कोई दूर होने लगता है, जब कोई अपने दिल में आपकी जगह को कम कर रहा होता है, आपको अपने दिल में से निकाल रहा होता है, तो फिर कौन बताता है कि वो क्यों निकाल रहा है, क्या वजह हो गई। अगर वो ये कर देगा तो फिर तो वो बदलेगा नहीं ना, वो तो फिर बदल गया, अपने आप को बदल लिया, और फिर उसने हमारी बात भी रख ली कि हमें बता भी दिया। ऐसे लोग बताते कब होते हैं जो बदलने वाले होते हैं, ये तो आपका दिल आपको बता देता है कि वो बदल गए हैं, वो ऊपर से कभी भी नहीं कहते कि हम बदल गए हैं, वो कहते नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल वैसी हूँ, कोई मसला नहीं है किसी भी तरह का। मगर कहते हैं कि अगर किसी के दिल की बात जाननी है तो उसकी आंखों में जाके देखिए। कुछ लोगों की बहुत ही खूबसूरत आंखें होती हैं, दिलनशी, खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, स्या आंखें, मगर फिर भी वो सच नहीं बोल रही होती। और जब उनको गौर से देखा जाता है, उनके अंदर झांका जाता है, तो पता चल जाता है कि उनके दिल में क्या है, क्योंकि आंखें झूठ नहीं बोलती, आंखें हमेशा सच बोलती हैं। हमें लगता है कि वो सच नहीं बोल रही, मगर वो सच बोल रही होती हैं। इसलिए अगर किसी के दिल की बात को अगर जानना है, पहचानना है, तो उसकी आंखों में झांक के देखिए, यकीनन दिल की सारी बातें आप तक पहुंच जाएंगी। और कुछ बात अगर किसी को कहनी है तो जरूरी नहीं कि आपके पास अल्फाज हो, आपके पास लफ्जों का जखीरा हो, आपको ऐसा माहौल मयसर हो, ऐसे ऐसा मौका मिल जाए जिसमें आप बात कह सकें। अगर तब भी नहीं कह सकते तो आपकी आंखें वो सब कुछ कह रही होती हैं जो बात आप कहना चाह रहे होते हैं। आजमाइश शर्त है, बल्कि क्या मैं आपको कहूँ, आजमाइश शर्त है, ये आजमाई हुई बात है आपकी भी मेरी भी,
ज़रूरी नहीं कि सारी बातें ज़ुबान से कही जाएं, बेशुमार बातें हम सिर्फ आँखों से कह देते हैं और जिसको कह रहे होते हैं उसको भी बखूबी पता होता है कि हम उसको क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ प्यास है उस हुस्न को भी मेरी नजर की, कुछ प्यास है उस हुस्न को भी मेरी नजर की, कुछ हुस्न का प्यासा है मेरा हुस्ने नजर भी। क्या इश्क है क्या हुस्न है क्या जानिए क्या हो, क्या इश्क है क्या हुस्न है क्या जानिए क्या हो, महशर है इधर भी तो क्यामत है उधर भी। तू चश्मे इनायत से जरा रुख तो इधर कर, तू चश्मे इनायत से जरा रुख तो इधर कर, काफी है तेरी एक मोहब्बत की नजर भी। कुछ फर्क दुरुस्त और गलत में नहीं बाकी, कुछ फर्क दुरुस्त और गलत में नहीं बाकी, हर बात पे कुछ लोग इधर भी हैं उधर भी। खींचा है कहां तक तुझे बाहों की कमां में, खींचना है खींचना है कहां तक तुझे बाहों की कमां में, तू दिल के लिए है तो मेरे दिल में उतर भी। कुछ प्यास है उस हुस्न को भी मेरी नजर की, कुछ हुस्न का प्यासा है मेरा हुस्ने नजर में। अदीम हाशमी का खूबसूरत कलाम आपकी समातों की नज़र किया, यकीन आपको खूबसूरत लगा होगा। प्रोग्राम में हम ज़्यादातर पोइट्री शामिल करते हैं, ज़्यादातर शायरी शामिल करते हैं। कुछ और आपके SMS हैं, ये हैं सलमा DHA लाहौर से, वसीम बहुत उम्दा कलाम जॉन एलिया का, आप जॉन एलिया का प्लीज़ अमजद इस्लाम अमजद की पोइट्री सुना दे जी। मैंने अमजद इस्लाम अमजद की पोइट्री से ही प्रोग्राम का आगाज़ किया था, मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोबारा से सुना दूँ। तो अब्दुल कयूम, अच्छा इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सलमा आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। आपके SMS का बहुत शुक्रिया, क्योंकि SMS के ऊपर थोड़े से पैसे भी खर्च होते हैं आपके, तो आपको दिल की गहराइयों से हम वेलकम कहते हैं। आइंदा भी मेरे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल रहिएगा और मैं कोशिश करूँगा, बल्कि आप कोशिश कीजिएगा कि कोई एक आधा शेयर भी अगर आप भेज सकें, एक और SMS कर सकें या फेसबुक पर आ सकें तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए हमें और प्रोग्राम में शामिल रहिए। अब्दुल कयूम आर्मी पर्सन खोशाब से ऑन ड्यूटी, भाई बहुत प्यारा प्रोग्राम है जी, हाँ बहुत प्यारा प्रोग्राम है जी, अताउल्लाह का गाना सुना दे। चलें जी, अब्दुल कयूम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप आर्मी पर्सन हैं, खुशाब में इस वक्त मौजूद हैं और प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपको हम दिल की गहराइयों से वेलकम कहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई अताउल्लाह का गाना प्रोग्राम में कोई पोजीशन बनी, कोई सूरत हाल बनी ऐसी, तो उसमें शामिल कर सकूँ तो ज़रूर करूँगा। तो अब्दुल कयूम आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, ड्यूटी पर मौजूद हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, सरहदों पर मौजूद हैं और पाकिस्तान की आर्मी जिंदाबाद हम कहेंगे। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, तमाम फौजी भाइयों का बहुत शुक्रिया जो हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जो कॉल कर रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, और जो कॉल नहीं कर रहे सिर्फ सुन रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अब्दुल नूर हाशमी रिवाज गार्डन से हमारे बहुत ही रेगुलर लिसनर हैं, कॉलर हैं और कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं। अब्दुल नूर हाशमी कहते हैं कि जी डियर वसीम जी, आदाब जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल नूर हाशमी, आपने हमें SMS किया। तो अब्दुल नूर हाशमी, अब्दुल कयूम खुशाब से और सलमा DHA लाहौर से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई, आप लोगों का बहुत सारा ढेर सारा शुक्रिया और आपके लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मोहब्बतें आपके लिए 101 की तरफ से और मेरी तरफ से, कि आप प्रोग्राम सुनते रहें, आबाद रहें, खुश रहें और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहें और प्रोग्राम में शामिल रहें। अभी हम लाइव कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे तो उसमें भी आपने ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। कुछ और आपके कॉमेंट्स मुझ तक पहुँचे हैं, उन्हें अगर आप इजाज़त दें तो प्रोग्राम में शामिल कर लूँ।
बिल्कुल जनाब, आपकी इजाज़त मिल गई मुझे। आर के मुगल का पैगाम हम तक पहुँचा है कि वक्त की सबसे अच्छी बात ही यही है, वक्त जैसा भी हो, वक्त बस गुजर जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वक्त कैसा भी हो और कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो बिलाखिर गुजर जाता है। मगर क्या है कि कुछ चीज़ें जो भी हमने पहले डिस्कस की थी कि वक्त कुछ चीज़ें बीत जाती हैं, कुछ बीत जो जाती हैं मगर गुजरती नहीं है। मोहब्बत की बात ले लीजिए, मोहब्बत के अंदर जब इंसान मोहब्बत में मौजूद होता है, जब दोनों शख्स एक दूसरे के करीब मौजूद होते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, एक जगह पे मौजूद होते हैं, तो उस वक्त चाहे वो कितना बड़ा मेला क्यों ना हो, कितना बड़ा आपके इर्द गिर्द शोर हो, ट्रैफिक हो, मेला हो, झूले हो, अनाउंसमेंटें हो रही हो, कहीं पे कोई वैन जा रही हो, हॉर्न बज रहा हो, सब कुछ खामोश हो जाता है, सब कुछ रुक सा जाता है, सिर्फ आप होते हैं, आप और वो होता है जिससे हम मोहब्बत करते हैं, बाकी सब कुछ साइलेंट होता है, स्टिल हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, वही एक लम्हा जो कभी नहीं बीतता। और मजे की बात यह है कि जब भी हम चाहें उस लम्हे के अंदर हम चले जाते हैं, और वो लम्हा कहाँ मौजूद होता है, दिल के अंदर मौजूद होता है। दिल की जानब निगाह उठाइए, थोड़ा सा दरवाज़ा नॉक कीजिए, उसी वक्त खुल जाएगा। दिल के अंदर वो लम्हा मौजूद है, वो नहीं बीतेगा। आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी शोर मचा लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि वो लम्हा बीत जाए, मतलब गुजरेगा नहीं, बीत चुका था, गुजरेगा नहीं, वहीं रुका हुआ, उसी के अंदर मौजूद हैं हम। कैसी बात है, वहीं पे मौजूद रहते हैं। कुछ लोग वहीं रहना चाहते हैं, आप भी वहीं रहना चाहते हैं, मैं भी वहीं रहना चाहता हूँ, मगर क्या है कि जिंदगी आगे बढ़ती चली जा रही है, हम वहीं के वहीं रुके हुए हैं। हर दिल के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लम्हा मौजूद है जो ठहर चुका है। ठहर क्या है, अमजद इस्लाम अमजद की चंद अशआरा आपके लिए दोबारा से पेश कर देता हूँ। मैसेज हम तक पहुँचा था सलमा का, हाँ जी सलमा का, सलमा के लिए, सलमा साहिबा आपके लिए। आंखों को इल्तमास बहुत देखने में थे, कर्शप अजीब अक्स मेरे आईने में थे, हर बात जानते हुए दिल मानता ना था, हम जाने एतबार के किस मरहले में थे। बस कर्शप अजीब अक्स मेरे आईने में थे, हर बात जानते हुए दिल मानता ना था, हम जाने एतबार।

0: अल्लाह से जो कॉल होती है ना बहुत ही मज़ेदार कॉल होती है, और आपने भी सुना, आपको भी मज़ा आया होगा इनकी बातें सुन के, और ये हमारे दिन के प्रोग्रामों में भी शामिल रहते हैं, बहुत शुक्रिया। और ताहिरा मसूद कहते हैं कि वही जख्म सा वही घर सी वही दाग से तेरा दस्त मिलता है किस कदर मेरे बाग से। ओके जी, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके कलाम जो आपने भेजा था वो पढ़ा था। आर के मुगल ने कहा कि जी ज़बरदस्त शो, और किन्जा उस्मान वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र खैरियत से हैं। सही कह रहे हैं आप, कुछ वक्त ऐसा होता है कि गुजर कर गुजरता नहीं है, ठीक हो गया। और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं जनाब मलिक वसीम अवान और जुगनू जूनियर, और इससे पहले मुझे कुछ और नाम भी नज़र आए थे। ये हैं जनाब, ये इतनी लंबी, हाँ, आर के मुगल ने हमें एक पोइट्री भेजी है, उसे प्रोग्राम में शामिल करते हैं। थोड़ी सी लंबी है मगर मैं करता हूँ प्रोग्राम में शामिल। आर के मुगल, आपका बहुत शुक्रिया। लिखा है, क्या हुआ बहुत कुछ, क्या हाल बेहाल, क्या कर रहे हो अफसोस, क्या हो गया है तुम्हें, बुखार, कैसा बुखार, खतरनाक बीमारी का, कौन सी बीमारी का, इश्क की बीमारी का, इश्क किससे, दुनिया के सबसे बेरहम इंसान से, बेरहम कैसे, हर लिहाज से, क्या कहता है, हुक्म देता है, कैसा कैसे हुक्म, बिछड़ जाने का, इंतज़ार का, तो इंतज़ार नहीं कर सकते, मुंतज़िर तो बचपन से हूँ, तो फिर अब नहीं होता तो क्या होता है, बेचैनी बेसकूनी, कैसे मिलेगा सुकून, जब वो मिलेगा, उसने यकीन दिलाया, उसने यकीन दिलाया, अब नहीं होता तो क्या होता है, बेचैनी बेसकूनी, हाँ जी, उसने यकीन दिलाया, शायद पता नहीं क्यों, क्या मुनहसर खुद को, क्यों किया मुनहसर खुद को, उसने कर दिया, क्यों बना लिया खुद को बेबस, उसने बना दिया, एक काम करो, क्या करूं, जाने दो उसे, जाने ही तो दिया है, तो फिर वो भी तो जाने दे, कहाँ से उसके पिंजरे की कैद से, किस चीज़ ने कैद की, उसके वादे ने, कैसा वादा जो उसने किया ही नहीं, ये तो वाकई बीमारी है, खतरनाक बीमारी, लाइलाज बीमारी, लाइलाज लाइलाज बीमारी। बहुत शुक्रिया आपका आर के मुगल, खूबसूरत आपका मैसेज, खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ, और मैंने भी कोशिश की कि उसको सही तरह से पढ़ दूँ। हाँ, आबिद अली जापा, जिस रात महकती हैं किसी रात की यादें, उस रात गुजरती ही नहीं रात हमारी, वाह वाह वाह वाह, आबद अली JAPPA मकैनिकल एट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्टडीज UET टेक्सला। ओके जी, आबद अली जापा, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपका शेर दोबारा से पढ़ता हूँ, जिस रात महकती हैं किसी रात की यादें, उस रात गुजरती नहीं रात हमारी, क्या बात है, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त शेर आपने भेजा। आप भी खूबसूरत इजाफा कीजिए ना, आप हमारे फेसबुक पेज पे आइए, www.facebook.com/FM101Lahore, और हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर से बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम,
1: क्या हाल चाल है भैया जी?
0: जी शुक्र है, लगा बिल्कुल ठीक ठाक। कौन
1: पहचान है आपकी? पुरानी से पुरानी हूँ मैं, जो आपको कॉल करती हूँ।
0: अच्छा, पहचानू?
1: जी बिल्कुल, पंजाबी शो में भी करती हूँ, पंजाबी ने टंगा तोड़ देनी है मैं।
0: अच्छा पता है क्या, मैं इसलिए नहीं पहचानता कि अगर नाम गलत हो जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता।
1: मैं ताड़े उत्ते जुर्माना नहीं लांदी, तुसी गलत भी ले लो कोई गल नहीं।
0: तुसी अपना नाम भी दस दो।
1: मैं रिमशा जो लाहौर से आपको कॉल करती थी।
0: कौन?
1: रिमशा।
0: रिमशा, अच्छा रिमशा जी क्या हाल है आपका, ठीक ठाक?
1: जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। देखें आप मुझे भूल गए हैं।
0: नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं भूला रिमशा, आप मुझे हमेशा याद रहती हैं और आपकी कॉल्स ना सिर्फ मेरे प्रोग्राम में बल्कि दूसरे प्रोग्राम में भी आती हैं, तब भी मैं आपको सुन रहा होता हूँ, घर में भी कहीं भी गाड़ी में इधर उधर जहाँ भी मैं हूँ मैं सुनता रहता हूँ रेडियो, तो आप लोगों के मैसेजेस आपके पैगाम, आप कभी कभी सलाम भी दूसरे आर्टिस्ट को भेजते हैं वो भी मुझ तक सुनता रहता हूँ मैं आपके सभी जो कॉल्स होती हैं आपकी। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं?
1: जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इस टाइम तो मैं रावलपिंडी की साइड पे और इस्लामाबाद हूँ मैं, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, आपको पता था ना?
0: हाँ बिल्कुल, हाँ अब मुझे याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। अच्छा रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ हैं आप? जबरदस्त
1: जी बिल्कुल, क्योंकि पहले मैं गुजरावाले में थी तो सही से मैं शो सुन नहीं पा रही थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे नेट का बहुत ज्यादा इशू था, यहाँ पे आके मैं सुन पाती हूँ आप।
0: अच्छा अच्छा, चले अब आप इस्लामाबाद में रहती है?
1: जी बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि मैंने कहा इतनी खुश हूँ, मैंने दुआ मांग रही थी, मैंने कहा या तो मुझे लाहौर शिफ्ट करो या तो मुझे इधर शिफ्ट करो, एक जगह मानो, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे नेट नहीं आता, मैंने कहा सब कुछ ठीक है सिर्फ नेट नहीं आता।
0: और ये प्रोग्राम तो वैसे भी नेटवर्क भी होते हैं, आप आम रेडियो पे भी इस्लामाबाद के स्टेशन को ट्यून करेगी ना वहाँ भी मेरी आवाज आ रही होगी आपको?
1: नहीं पंजाबी का शो भी सुन सकती हूँ मैं आपका।
0: हाँ वो नेट पे तो आप सुन सकती हैं सारे स्ट्रीमिंग पे
1: जी, क्योंकि रेडियो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो ही चलता है, मैं रेडियो पे नहीं सुनती ज्यादातर, अब मैं मोबाइल पे सुनती
0: हूँ। हाँ उसपे आवाज ज्यादा क्लियर आती है। और कुछ कहेंगी प्रेम के हवाले से?
1: और मैं यही कहूंगी कि आप इसी तरह बड़का शड़का मारते रहा करो, तो पट्टे शिट्टे जो है ना चुकते रहा करो।
0: बहुत
1: शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया रिमशा जी, थैंक यू वेरी।
1: और जाते जाते मैं सलाम दे सकती हूँ?
0: जी जरूर।
1: मोदी जट अंकल, शिजाद अंकल, बर्फी वाले अंकल, मारिया आपी, अनिल आपी, मशाल आपी, साजदा, सुलेखा, हमना, और वो जो आते हैं रिवाज गार्डन से अंकल आते हैं
0: जी जी,
1: अब्दुल हाशमी अंकल, उनको सलूट है, मेरा सलाम भी है
0: जी जी।
1: और आप इसी तरह हंसते और मुस्कुराते हैं। वैसे अनिल आपी की कॉल अभी नहीं आई है ना?
0: जी अभी नहीं आई।
1: ठीक है अनिल आपी, मेरे लिए आपने जब भी कॉल अपने करनी है ना तो मेरे लिए कोई बड़का शकरा तुसी भी मेरे वास्ते मेरा नाम लेके मारनी है ना वसीम भैया,
0: तो हम पंजाबी शो में मारेंगे ना, ये तो अदबी प्रोग्राम है इसमें हम शायरी
1: पढ़ रहे हैं। कोई गल नहीं, सुबह के टाइम भी थोड़ी सी रौनक होनी चाहिए ना। अब मैं कह रही हूँ तो थोड़ी सी रौनक लगाए ना, आपने मेरे लिए एक शेर भी डेडिकेट करना है।
0: पूरा शेर जंगले में से खोल के ना पिंजरे में से आपके पीछे छोड़ देता हूँ पूरा शेर,
1: खा जाएगा।
0: ओके रिमशा थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
1: ओके
0: जी, रिमशा हमारी बहुत अच्छी लिस्टनर हैं और बहुत अच्छी कॉलर हैं और ख़ास तौर पे हमारे पंजाबी प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और ये चूँकि पोइट्री बेस्ड प्रोग्राम है, हम कोशिश करते हैं कि अपने बड़े बड़े शोरा का कलाम आप तक पहुँचाएँ और आपके आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप खूबसूरत अशआर चाहे एक शेर चाहे एक मिसरा आप भेजें, आप ज़रूर भेजें, क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन से ही जो ताली है ना दोनों हाथों से बजती है तो अच्छी लगती है। हेलो।
2: हेलो
0: जी, अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम अस्सलाम, वसीम भाई रोजी बात कर रही हूँ लाहौर से।
0: जी रोजी जी, कैसी आप, ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं?
2: जी अल्लाह का शुक्र मैं खैरियत से ठीक ठाक, आपकी क्या खैरियत से?
0: जी जी शुक्र अल्लाह का। जी क्या कहेंगी?
2: बस ये है कि कुछ प्रोग्राम मिस हुए तो बस कभी हो जाता है, कुछ ऐसी मसरूफियत होती है, लेकिन ये होता है कि रिकॉर्डिंग सुनने की कोशिश करते हैं वो फिर समझ में नहीं आता कहाँ से सुने आपको ना।
0: जी जी
2: तो बस बहरहाल, तो एक शेर पहले आपके लिए के सुबह चमन की शोख अदा के सफीर है, सुबह चमन की शोख अदा के सफीर है, आप लोग रोशनी की सदा के सफीर है।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत
2: आप लोग रोशनी की सदा के सफीर है, जो भी सुनेगा दिल में उतर जाएंगे, उसने अदा के हरफे नवा के सफीर हैं।
0: बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच,
2: थैंक यू। और ये के भरोसा ही नहीं मुझे किसी पर, मुनीर नियाजी का शेर है
0: जी।
2: भरोसा ही नहीं मुझे किसी पर, किसी को राजदा कैसे करूं
0: मैं।
2: अच्छा अब एक गजल है, इसका मुझे याद नहीं कि पोएट का नाम नहीं याद, लेकिन आपको सुन के शायद अच्छी लगे कि तुम नजर से नजर मिलाते तो, बात करते ना मुस्कुराते तो, तुम नजर से नजर मिलाते तो, बात करते ना मुस्कुराते तो।
0: वाह बहुत अच्छे।
2: इख्तिलाफ होते रहते हैं, इख्तिलाफ होते रहते हैं, आना जाना था आते जाते तो। दोस्ती में अना नहीं चलती, दोस्ती में अना नहीं चलती, खुद ना आते कभी बुलाते तो।
0: वाह।
2: चांदनी रात सिसकियां भरती, चांदनी रात सिसकियां भरती, तुम जरा अपनी छत पे आते तो।
0: वाह जी वाह क्या बात है।
2: आ भी जाओ कि हम बुलाते हैं, आ भी जाओ कि हम बुलाते हैं, तुम बुलाते जो हम ना आते तो। और माना तुमने बहुत कमाया है, माना तुमने बहुत कमाया है, लेकिन इसमें से कुछ बता कुछ बचाते तो। जी ये पोएट्री थी और मुझे ये पोएट का नाम तो बिल्कुल भी नहीं याद है, तो अगर किसी को याद हो तो जरूर। और आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि वक्त जो होता है कोई ठहर जाता है, वक्त का काम तो गुजरना है, वैसे तो वो गुजर जाता है, लेकिन कुछ लम्हात कुछ वाकयात कुछ टाइम ऐसा होता है जो इंसान के नजर में इंसान के जहन में इंसान के दिल में दिमाग में ठहर जाता है, और वो जब चाहे उस मंजर को आंखें बंद करके फिर उसी टाइम में पहुंच जाता है। ये एक अल्लाह मियां ने खास हमें एक सहूलत दी है यूं कहना चाहिए।
0: सही बात है, सही बात है। और वो खास तौर पे जिन लोगों से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जो वो लम्हे वो खास लम्हे खास लोग खास जमाना जो है वो हमारे साथ मौजूद रहता है।
2: जी हाँ, और फिर स्पेशली जब वो फर्स्ट टाइम कोई बात होती है ना, जब हम छोटे होते हैं छोटे से बड़े हो रहे होते हैं और बड़े होने की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिंदगी के नए तजर्बात को देख रहे होते हैं समझ रहे होते हैं, नए एहसासात को समझ रहे होते हैं, मतलब दुनिया की में पढ़ रहे होते हैं यूं कहना चाहिए, स्कूल का कॉलेज का टाइम यूनिवर्सिटी का टाइम, उस टाइम पर जो कुछ आपके साथ फर्स्ट टाइम होता है वो तो वैसे भी नहीं भूलता ना, वो तो हमारी और मेरे ख्याल में हर इंसान की एक खूबसूरत और सुनहरी यादें होती हैं जो कभी भी किसी को नहीं भूलती।
0: बिल्कुल ठीक है, उनको उनको हमेशा अपने दिल में संभाल के रखना चाहिए। अच्छा कुछ लोग उन बातों को उन यादों को कर याद करके उदास हो जाते हैं, अगर हम उदास रहेंगे ना तो अपनी जो प्रेजेंट लाइफ है उसको हम खराब करेंगे, उसको डैमेज कर देंगे। हमें वहां पे जाना चाहिए, वहां पे जाके बात करनी चाहिए अपने दिल से, उस लम्हे से मुलाकात करनी चाहिए, फिर वापस पलट
2: के समझाना चाहिए,
0: वापस पलट के आ जाना चाहिए,
2: वापस पलट के आए समझाना चाहिए कि क्या बेहतर है और क्या नहीं बेहतर, और अपने आप को सबके साथ दुनिया के साथ अपने मुस्तकबिल के साथ अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश जरूर करनी
0: मतलब
2: चाहिए।
0: हम
2: मैं यही समझती
0: बिल्कुल
2: हूं।
0: सही बात, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया रोजी जी, बहुत
2: जी बहुत खुश है आप भी, और आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं, और कोशिश यही होती है हमेशा कि आपको अच्छी तरह से सुना जाए हमेशा ही रेगुलरली, लेकिन कभी ये होता है कि कुछ प्रोग्राम्स कभी नहीं सुन पाते
0: ये तो कि मतलब कोई ना कोई जी टाइम भी थोड़ा सा अजीब है, नींद का टाइम होता है, ये भी मतलब आपकी मेहरबानी है कि आप सुन रहे हैं।
2: अब ना जी अब ना हमें ये टाइम वाइम नहीं हमारे लिए कोई मानी रखता, जब हमने आपको सुनता है तो हमने आपको सुनना है, ये बात
0: है। ये तो है, ये तो है, आपकी नवाजिश आपका गरम आप लोगों की
2: खुश चाहिए,
0: बहुत
2: खुश चाहिए, अल्लाह हाफिज़,
0: अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, ओके ओके, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मुझे शौक अपने आरजे वसीम अहमद के साथ, मोहसिन नकवी का कलाम है, खुद अपने दिल में खराशें उतारना होंगी, खुद अपने दिल में खराशें उतारना होंगी, अभी तो जाके रातें गुजारना होंगी, खुद अपने दिल में खराशें उतारना होंगी, अभी तो जाग के रातें गुजारना होंगी, तेरे लिए मुझे हंस हंस के बोलना होगा, मेरे लिए तुझे जुल्फें सवारना होंगी, तेरी सदा से तुझी को तराशना होगा, हवा की चाप से शक्लें उभारना होंगी। अभी तो तेरी तबीयत को जीतने के लिए दिलो निगाह की शर्तें भी हारना होंगी। तेरी सदा से तुझी को तराशना होगा, हवा की चाप से शक्लें उभारना होंगी। अभी तो तेरी तबीयत को जीतने के लिए दिलो निगाह की शर्तें भी हारना होंगी, तेरे वसाल की ख्वाहिश के तेज रंगों से। ब्यूटीफुल, क्या बात है जनाब। मिसरे पे गौर कीजिए। तेरे वसाल की ख्वाहिश के तेज रंगों से तेरे फराक की सुबह निखारना होंगी। ये शायरी, ये किताबें, ये आयतें, दिल की निशानियां, ये सभी तुझ पे वारना होंगी। खुद अपने दिल में खराशें उतारना होंगी, अभी तो जाग के रातें गुजारना होंगी। और साहब एक और बहुत ही खूबसूरत शेर मुझे याद आ गया, प्रवीण शाकिर साहिबा का। कौन से फूल थे कल रात तेरे बिस्तर पर, कौन से फूल थे कल रात तेरे बिस्तर पर, आज खुशबू तेरे पहलू से अजब आई है। उन्होंने एफएम पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन। और जनाब अगले कॉलर से बात करते हैं। वक्त बताता चलूं, 3:23 और 4 बजे तक मेरा आपका साथ है। हेलो, हेलो,
3: वालेकुम व रहमतुल्लाह।
0: वालेकुम अस्सलाम हमीद गुल साहब, वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
3: आप ठीक है सर, आपको वेलकम सर।
0: बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, बहुत शुक्रिया।
3: हाँ, बारिश हो रही है।
0: अच्छा, वाह वाह वाह वाह वाह। यहाँ आज जिसको बिल्कुल बारीक फवार कहते हैं ना, वो लाहौर में होती रही है, मगर हब्स और गर्मी काफी ज्यादा थी।
3: बारिश तो काफी दिनों से इस टाइम में शुरू हो जाती है।
0: हाँ, मुझे न्यूज मिली थी, खबर मिली थी। हाँ, कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में ना जो बारिशें वगैरह हैं वो हो रही है।
3: बारिश, अल्लाह खैर वाली रखे,
0: आमीन।
3: हाँ, मैं आपको नज़म सुनाता हूँ अपनी
0: जी,
3: लेकिन उससे पहले 2-4 शेर हैं अब्दुल हमीद आजम के
0: जी।
3: अब्दुल हमीद आजम का एक शेर बड़ा मशहूर हुआ के आदम होशियार लोगों से लोग मुनकर नकीर होते हैं।
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
3: हाँ जी, अब्दुल हमीद आजम की गजल के चंद शेर हैं कि वो मेरे इस कदर करीब हुआ,
0: वाह,
3: वो मेरे इस कदर करीब हुआ उससे मिलना ना फिर नसीब हुआ।
0: वाह, ब्यूटीफुल।
3: और जिस कदर सोचता हूँ हंसता हूँ, जिस कदर सोचता हूँ हंसता हूँ, आज एक माजरा अजीब हुआ।
0: बहुत अच्छा।
3: और आपसे अब कोई मलाल नहीं,
0: वाह,
3: शुक्र है कुछ सुकून नसीब हुआ।
0: वो कहते हैं कि तुम रूठे हम छूटे।
3: आप पहुंच गए, आपसे अब कोई मलाल नहीं, शुक्र है कुछ नसीब, कुछ सुकून नसीब हुआ, और देख आया है आज खुद भी उन्हें।
0: वाह,
3: क्या खूबसूरत शेर है कि देख आया है आज खुद भी उन्हें, आज कुछ मुतमईन तबीब हुआ।
0: वाह, क्या बात है, आज कुछ मुतमईन तबीब हुआ। वाह,
3: आज कुछ मुतमईन तबीब हुआ, और मैं तो चुप ही रहूंगा मैशर में।
0: वाह,
3: मैं तो चुप ही रहूंगा मैशर में, वो परिवश अगर करीब हुआ।
0: क्या क्या बात है, क्या बात है जनाब, जबरदस्त।
3: असल में मैं अगर तबसरा करना शुरू कर दूं ना शायरी पे, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा,
0: मुश्किल हो जाएगा। और वो वाकई सही बात है, ये मुश्किल लफ्ज उसको कवर कर रहा है आपकी बात को।
3: हाँ, कि मैं तो चुप ही रहूंगा मैशर में, वो परी वश अगर करीब हुआ। और देखे मकता है कि पूछती है अदम जिसे दुनिया, पूछती है अदम जिसे दुनिया, कौन इतना बड़ा अदीब हुआ।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: और फिर देखिए मकता है कि दो ही बाजौक आदमी है अदम, दो ही बाज़ौक आदमी हैं आदम, मैं हुआ मेरा रकीब। आप यहाँ देखें रकीब को कितनी खूबसूरती के साथ बांधा गया इस शेर में।
0: क्या बात है सर, क्या बात है, मजा आ गया, क्या बात है।
3: हाँ, कि मैं हुआ, मैं आपने लम्हों की बात कर रही थी
0: जी,
3: तो मैं आपको एक कथा भी सुनाता हूँ, एक मुख्तसर सी नज़म भी अपनी सुनाता हूँ
0: जी।
3: बल्कि मैंने जो ये कथा सुना रहा हूँ उसको तो बड़ा खूबसूरत गाया उन्होंने, क्या खूबसूरत अंदाज में नीला साहब ने बड़ा उसको गुनगुनाया भी था कि वो लम्हे खास होते हैं, वो लम्हे खास होते हैं वो जब भी पास होते हैं, वो लम्हे खास होते हैं वो जब भी पास होते हैं, और क्या ही खूब लगते हैं, क्या ही खूब लगते हैं वो जब नाराज होते हैं।
0: वाह,
3: मैं एक छोटी सी नज़्म है
0: जी,
3: जिसका उन्वान है वो एक लम्हा।
0: सही।
3: अच्छा, ये मैंने लिखी 3 दिन पहले है।
0: अच्छा, बिल्कुल ताज़ा कलाम है, जबरदस्त,
3: बिल्कुल ताज़ा, मैंने नहीं पढ़ा कहीं।
0: अच्छा अच्छा,
3: आपके साथ शेयर करूं, उन्वान है वो एक लम्हा।
0: बहुत अच्छे जी।
3: देखिएगा कि समाज कीजिएगा कि वो लम्हा वो एक लम्हा,
0: वो लम्हा वो एक लम्हा,
3: हाँ हाँ वही एक लम्हा,
0: वाह,
3: वो लम्हा वो एक लम्हा, हाँ हाँ वही एक लम्हा, जो उजलत में मुझसे हाथ चुरा कर बहुत पीछे रह गया है। मैं उसकी तलाश में हूँ सरगर्दा, मैं उसकी तलाश में हूँ सरगर्दा, वो एक लम्हा बहुत से लम्हों का हमराज है, वो एक लम्हा बहुत से लम्हों का हमराज है, कोई टूटा साज है।
0: बहुत अच्छे।
3: कोई टूटा साज है जिसे मैं जोड़कर नई धुन बनाना चाहता हूँ।
0: वाह, कोई टूटा साज है जिसे मैं जोड़कर नई धुन बनाना चाहता हूँ।
3: हाँ, वो टूटा, कोई टूटा साज है जिसे मैं जोड़कर नई धुन बनाना चाहता हूँ, मैं गुनगुनाना चाहता हूँ।
0: बहुत अच्छे।
3: मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, मैं एक बार फिर से जीने का बहाना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर से जीने का बहाना चाहता हूँ, मैं मुस्कुराना चाहता हूँ, मैं मुस्कुराना चाहता।
0: बहुत अच्छे अमीर गुल साहब, जीते रहिए, बहुत बढ़िया।
3: सर खुश रहें। अभी एक गजल पढ़ेगी, पर मुझे बड़ा दुख होता है कि जब मैं गजल पढ़ता हूँ कोई भी, उसे सुन के भी अगर लोग ना पढ़ सकें तो मुझे बड़ा दुख होता है उसका। तो मैं देखे, मैं उर्दू अदब में ना, मैं यकीन करें, मैं बाज़ पास मुझे बड़ा, मैं देखता हूँ, मैं बहुत सारी शायरी में पढ़ते हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग लोग मुख्तलिफ चैनल्स पे लोग पढ़ रहे होते हैं।
0: अच्छा।
3: मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे उस वक्त बड़ा दुख होता है कि जब वो गजल का बिड़ा गर्क हो जाता है। इसमें एक शेर था कि इख्तलाफ नहीं होते, इख्तलाफात होते रहते हैं। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं ना, वो मतलब पुराने लोग हैं और कहने वाले पढ़ने वाले
0: जी जी,
3: और मुझे दुख होता है इस बात का जाहिरी तौर पे। मैं मतलब मुझे किसी से जाती रंज कोई नहीं है
0: जी जी,
3: तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है उर्दू में उसमें यार, हम बड़ी मुश्किल से, ये मेरी तकलीफ थी जब मैंने गजल पढ़ी ना नमाज देवबंदी की
0: जी जी,
3: तो ये मेरी तकलीफ थी तो की
0: ये किसने पढ़ी थी, अभी हमारे प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम की बात कर रहे हैं?
3: अभी आपके प्रोग्राम में पढ़ी थी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: देखिए मैं इस गजल को पढ़ता हूँ, आप देखिए इस गजल की, इस गजल में क्या कमाल है
0: जी।
3: जो लखनऊ में तो है ना, उसके अपना अंदाज है, मैंने ये दरियाफ्त की
0: जी,
3: ठीक है ना। गजल थी कि तुम नजर से नजर मिलाते तो, अब देखते आप तो को देखते जाए कि मैं किस तरह के, तुम नजर से नजर मिलाते तो, बात करते ना मुस्कुराते तो, इख्तलाफात होते रहते हैं, आना जाना था आते जाते तो।
0: बिल्कुल ठीक, आपने ये सुनाई है इसीलिए मैंने पहले आपका नाम मेरे ज़हन में आया था, एकदम से क्लिक किया था।
3: हाँ, हाँ, आना जाना था आते जाते तो, और इसमें एक शेर है कि जिसे मैं कहता हूँ, मैंने एक शर्त रखी उस पे, मैं कहा इसको इस रिदम में कोई पढ़ के बताएगा तो मैं कहूंगा कि किसी ने कोई शायरी पढ़ी है। इसमें एक शेर था, वो बड़ा मुश्किल शेर है कि आप भी जाओ के हम बुलाते हैं, इसका तेवर देखें कि आप भी जाओ कि हम बुलाते हैं, हम बुलाते तुम ना आते
4: तो वाह बिल्कुल ठीक,
3: इसका इतना रिदम है, रिदम से हार जाते हैं।
4: तुम ना आते तो,
3: हाँ तुम ना आते तो वो माना कि तुमने बहुत कमाया है। मैं आज आपके काम के तवज्जो से एक बात कर रहा हूँ, मुझे कोई गर्रा कोई कद कोई वो नहीं है,
4: तो
3: मैं ये कह रहा हूँ खुदा ना खास, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं ये स्पेशली सारे सुनने वाले के लिए, देखा करें कि शेर के तेवर क्या कह रहे हैं। अगर आपको शेर का तेवर ही नहीं समझ आएगा ना, आप शायरी नहीं पढ़ सकेंगे,
4: नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक,
3: ठीक है ना। तो मैंने बात थोड़ी सख्त की है, लेकिन मेरा इतना हक जरूर बनता है कि मैं कम से कम आप तो तस्दीक करते नहीं है
4: जी,
3: वरना मजा आता था वो नासिर महमूद खान के प्रोग्राम में। ओ हो आप यकीन करें
4: वो असल में ना पता क्या होता है, फिर वो किसी और तरफ चल पड़ता है प्रोग्राम करना, जो रिदम जो है।
3: नहीं नहीं रिदम की बात नहीं है सर, आपको पता है हमने गुंजा शौक उस वक्त सुना क्योंकि अब तो उसमें एक नई जनरेशन आ गई, मतलब आप देखे ना एक नई पीढ़ी आ गई, मुश्किल हो जाता है।
4: ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश किया करूंगा कि मैं वहीं पे कुछ ना कुछ इसको तसीह करने की कोशिश करूँ,
3: को लफ्जों की तसीह करें सर जी, और गुंजा शौक का ना मतलब एक फॉर्मेट है उर्दू का।
4: सही बात।
3: आज मैं बात साजिश का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उनसे सवाल किया गया कि हमारी उर्दू जो है, उन्होंने कहा वो बड़ी पीछे रह गई है।
4: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा अमितगुल साहब, आरजे नयाब का मैसेज मुझ तक पहुंचा, अभी मेरे सामने आ गया एकदम से। इन्होंने लिखा है कि जी खूबसूरत नज्म हमीद गुल साहब की, बहुत आला।
3: बड़ी मेहरबानी, क्या वो हमारी जो तुकबंदी होती है सर, मैं आपको सही बात
4: बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद, आरजे नयाब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मैसेज किया और इस वक्त मैसेज किया, इसके लिए आपका और ज़्यादा शुक्रिया। आपने कहा कि खूबसूरत नज़्म हमीद गुल साहब की, बहुत आला। और आगे इन्होंने लिखा है कि जी वसीम साहब बहुत अरसे के बाद आपको सुना, बहुत अच्छा लगा। आरजे नयाब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है जब भी आप करती हैं, और बहुत दिन हो गए आपको मैंने नहीं सुना, तो इंशाल्लाह जैसे ही आपका प्रोग्राम मुझे मौका मिलेगा, जिस वक्त आपका प्रोग्राम होगा तो मैं उसको ज़रूर सुनूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे मैं उसमें पार्टिसिपेट भी करता होता हूँ, आपको याद होगा, ठीक है ना। तो आरजे हमारी, आरजे नायाब हमारी वन वन की बहुत खूबसूरत आवाज़, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने के लिए और प्रोग्राम में अपना कमेंट करने के लिए, आपको दिल की गहराइयों से मैं वेलकम कहता हूँ। ओके जनाब, आगे बढ़ेंगे। हर पल ध्यान में बसने वाले लोग फसाने हो जाते हैं, कुछ लोग हमारे दिल में हमारे रूह में समाये होते हैं, हमारी रूह में समाये होते हैं, हमारी हर बात का हिस्सा होते हैं, हमारी आदत बन चुके होते हैं, हम रोज़ मिलते हैं, किसी दिन हम नहीं मिलते तो अपने आप को अधूरा फील करते हैं, हमारे इतने करीब होते हैं। ये अमजद इस्लाम अमजद का कलाम है। सलमा अगर आप सुन रही हैं, DHA से आपका एक मैसेज आया था, सलमा ये आपका नाम है, मैंने चेक कर लूँ, जी जी, तो आपको भी अच्छा लगेगा। अमजद इस्लाम अमजद की पोइट्री शामिल कर रहा हूँ और बात हो रही है कि हर पल ध्यान में बसने वाले लोग फसाने हो जाते हैं, ऐसे लोग जो कि हमेशा हमारे दिल के करीब होते हैं, दिल की धड़कन की तरह होते हैं, वो हमसे दूर हो जाते हैं। आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, ख्वाब पराए हो जाते हैं, हर पल ध्यान में बसने वाले लोग फसाने हो जाते हैं, आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, ख्वाब पुराने हो जाते हैं, सारी बात ताल्लुक वाली जज्बों की सच्चाई तक है, सारी बात ताल्लुक वाली जज्बों की सच्चाई तक है, मैल दिलों में आ जाए तो घर वीराने हो जाते हैं, मंजर मंजर खिल उठती है पैराहन की कौसे कजा, मौसम तेरे हंस पड़ने से और सुहाने हो जाते हैं, झोपड़ियों में हर एक तलखी पैदा होते मिल जाती है, झोपड़ियों में हर एक तलखी पैदा होते मिल जाती है, इसीलिए तो वक्त से पहले तिफल सयाने हो जाते हैं,
0: मौसम इश्क की आहट से ही हर एक चीज बदल जाती है। मौसम इश्क की आहट से ही हर एक चीज बदल जाती है। रातें पागल कर देती हैं, दिन दीवाने हो जाते हैं। दुनिया के इस शोर ने अमजद क्या क्या हमसे छीन लिया है। दुनिया के इस शोर ने अमजद क्या क्या हमसे छीन लिया है। खुद से बात के लिए भी अब तो कई जमाने हो जाते हैं। खुद से बात किए भी अब तो कई जमाने हो जाते हैं। दोबारा से पढ़ूंगा शेर, इसमें के लिए मैं बोल गया था, मैं दोबारा इसको सही तरह से पढ़ता हूँ। दुनिया के इस शोर ने अमजद क्या क्या हमसे छीन लिया है। खुद से बात किए भी अब तो कई जमाने हो जाते हैं। हर पल ध्यान में बसने वाले लोग फसाने हो जाते हैं। आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, ख्वाब पुराने हो जाते हैं। आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, ख्वाब पुराने हो जाते हैं। वरुण एफएम से आवाज़ आपकी समातों तक पहुंच रही है, आपके अपने आरजे वसीम अहमद की। वक्त के गुजरने की बात हो रही है, वक्त के बीतने की बात हो रही है, वक्त के ठहरने की बात हो रही है, ज़िंदगी के बढ़ने की बात हो रही है, और ज़िंदगी का जो खूबसूरत लम्हा है वो उसके ठहरने की बात हो रही है। अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
5: हेलो।
0: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम
0: जी। शमीम जी, क्या हाल है आपके?
5: जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं?
0: जी शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। शमीम जी, आप खैरियत से इस वक्त जाग रही हैं, आप आपकी बड़ी मेहरबानी।
5: जी जी जी जी, मैंने कहा आज मैंने भी प्रोग्राम सुन के ही सोना है।
0: बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
5: बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हमेशा की तरह होता है आपका
0: जी।
5: तो क्योंकि शायरी, आप शायरी करते हैं ना,
0: तो
5: मुझे शायरी सुनने का सिर्फ शौक है।
0: जी जी,
5: सुनने की हद तक है वैसे शायरी।
0: जी जी जी जी, जी। हाँ जी। मतलब जो सुनते हैं ना वो भी कमाल करते हैं। पहले बंदा सुनता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो करने भी लग जाते हैं, है ना?
5: हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाकी सब सुनने वालों को जान आता कि मेरी आपकी आवाज आ रही है, सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। तो गाने तो खुद ही आप बहुत प्यारे प्ले कर रहे हैं
0: जी। ये गाना है मेरे पास अभी, रूना लैला का, मैं लगाऊंगा अभी।
5: कौन सा वाला? कौन सा वाला?
0: मैं लगाऊंगा, सस्पेंस है वो। ठीक है,
5: चले।
0: ओके ओके, अल्लाह हाफिज।
5: अल्लाह हाफिज।
0: ओके जी, शमीम हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई। और ओके जी, आरजे नायाब आपका एक दफा फिर बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जनाब। सच है हमी को आपके शिकवे बजाना थे, फैज अहमद फैज का कलाम है। सच है हमी को आपके शिकवे बजाना थे, बेशक सितम जनाब के सब दोस्ताना थे। हाँ जो जफा भी आपने की कायदे से की, हाँ जो जफा भी आपने की कायदे से की, हाँ हम ही कार बंदे असूले वफा न थे। हाँ हम ही कार बंद असूले वफा न थे। आए तो यूं के जैसे हमेशा थे मेहरबान, भूले तो यूं के जैसे कभी आशना न थे। क्यों दादे गम हमी ने तलब की, बुरा किया हमसे जहां में कुश्ता गम और क्या न थे। गर फिक्र जख्म की तो खतावार हैं कि हम, क्यों महवे मत है खूबी ये तेगे अदा न थे। हर चारागर को चारागरी से गुरेज था, पर ना हमें जो दुख थे बहुत लादवा न थे। काबिल गौर शेर है, हर चारागर को चारागरी से गुरेज था, वरना हमें जो दुख थे बहुत लादवा न थे। लब पर है तलखिए मैं अयाम वरना फैज, हम तलखिए कलाम पे मायल जरा न थे। सच है हमें को आपके शिकवे बजाना थे, बेशक सितम जनाब के सब दोस्ताना थे। 042-111-0001 हमारा टेलीफोन नंबर। 3:41 हो चुके हैं। हेलो
6: हेलो, अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, अब्दुल हमीद फरकाबाद।
0: क्या बात है अब्दुल हमीद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
6: जिन्हें ना सईद माफी ने कहा अभी भी सुनना लिया चाहिए अब्दुल हमीद, हमीद गुल साहब दी शायर सुनदा दिल करदा हुंदा ते नीला पे दी काल सुनांदे।
0: बहुत शुक्रिया
6: बहुत सारियां दुआवां ताडे। आप ही आ नया आप ही सुनदी पई आ, तू आ नहीं रही अजकल।
0: जी
6: ये सुनदी पई आ ते इंशाल्लाह के प्रोग्राम दा इंतजार हुंदा है ते ओ आ नहीं रही अजकल भाई।
0: अनीला जी
6: नहीं नहीं नयाब अपनी
0: नयाब जी
6: ओदा प्रोग्राम नहीं अजकल चलदा।
0: अच्छा,
6: बड़ा पिछले टाइम सुनीदा है ते अभी नहीं, अभी जो सुनदे पे ते आजो अपना प्रोग्राम करया करो।
0: जी जरूर इंशाल्लाह।
6: ठीक है, नीला पे दी काल दा इंतजार है।
0: ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह
6: हाफिज़।
0: ओके जी, हमीद गुल साहब के बाद कॉल हम तक पहुंची जनाब अभी अब्दुल हमीद की फारुखाबाद से। तो जनाब नामवर पंजाबी उर्दू शायर कलमी नाम जो कल वो भी मैं आपको बताता हूँ, और फिल्मी कहानी नवीस और नगमा निगार अहमद राही की तारीख़ वफात जो है वो 2 सितंबर, अभी तो मेरे ख्याल है कि 3 सितंबर हो चुकी है, हमने 2 सितंबर उनकी तारीख़ वफात थी, और फिल्मों के बहुत खूबसूरत गीत उन्होंने लिखे। असल नाम जो था वो उनका था जनाब ग़ुलाम अहमद जी, असल नाम उनका था जी ग़ुलाम अहमद, और पैदाइश उनकी थी 12 नवंबर 1923 को, और अमृतसर में जब मुश्तरका पाकिस्तान जब था, इंडिया था मतलब हिंदुस्तान में पाकिस्तान पार्टीशन से पहले की यानी 1923 में, तो बहुत सारा उनका शेरी कलाम जो है वो मौजूद है। द्रिंजन में उनकी जो किताब थी शेरी मजमू था आपके लिए, उनके अगर हम गीतों की बात करें तो बेशुमार गीत उन्होंने लिखे, जैसे मुझे इस वक्त जो याद आ रहा है वो फिल्म हीर रांझा के गीत याद आ रहे हैं। वैसे तो बेशुमार गीत उनके हैं और एक से एक बढ़ के खूबसूरत, और ना सिर्फ गीत बल्कि मुकालमा नवीसी भी उन्होंने की थी, और कहानी नवीसी भी उन्होंने की थी। तो हम इस वक्त एक मेरे पास उनका खूबसूरत कलाम मौजूद है, मैं प्रोग्राम शामिल करना चाहता हूँ। अहमद राही साहब की बात हो रही है। दिल पे जब दर्द की उफ्तात पड़ी होती है दोस्तों वो तो क्यामत की घड़ी होती है। जिस तरफ जाएं जहां जाएं भरी दुनिया में रास्ता रोके तेरी याद खड़ी होती है। जिसने मरमर के गुजारी हो ये उससे पूछो हिचर की रात भला कितनी कड़ी होती है। जिसने मरमर के गुजारी हो ये उससे पूछो हिचर की रात भला कितनी कड़ी होती है। हंसते होंठों से भी झड़ते हैं फसाने गम के, हंसते होंठों से भी झड़ते हैं फसाने गम के, खुश्क आंखों में भी सावन की झड़ी होती है। जब कोई शख्स कहीं जिक्र वफा करता है दिल को ऐ दोस्तों तकलीफ बड़ी होती है। इस तरह बैठे हैं वो आज मेरी महफिल में जिस तरह शीशे में तस्वीर जड़ी होती है। दिल पे जब दर्द की उफ्तात पड़ी होती है दोस्तों वो तो क़यामत की घड़ी होती है। ये ट्रिब्यूट था अहमद राही साहब को, जिनकी वफात 2 सितंबर को हुई थी सन 2002 में। देखते हैं जी अगले कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन?
7: मोहम्मद मोई सलीम इस्लामाबाद से।
0: मोहम्मद सलीम
7: मोहसलीम जी, कैसे हैं भाई? ठीक है आप?
0: जी मोहम्मद सलीम, बहुत शुक्रिया, आप इस्लामाबाद से हमें कॉल कर रहे हैं, आपको हम वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं
7: जी, अल्लाह का लाख शुक्र है। मैंने कहा आपके भी 2-4 शेर सुना दूं।
0: जी बिल्कुल, 2-4-6 शेर सुनाएंगे आप।
7: रास्ता भी कठिन, धूप में शिद्दत भी बहुत थी।
0: वाह।
7: रास्ता भी कठिन, धूप में शिद्दत भी बहुत थी, साए से मेरे मुझको वहशत भी बहुत थी।
4: वाह।
7: खैमे न कोई मेरे मुसाफर के जलाए, जख्मी था बहुत पांव, मुसाफत भी बहुत थी।
4: वाह वाह।
7: और कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे आस न आए, और कुछ मेरे खून में बगावत भी बहुत थी।
4: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
7: और एक मोहसिन नकवी का वो एक दो लेने, मोहसिन वो सानिया तो उसे याद भी नहीं, मोहसिन वो सानिया तो उसे याद भी नहीं, जिसे हमने उम्र की निशानी बना लिया। गुजरे थे तेरे बाद भी कुछ लोग उधर से,
4: वाह,
7: लेकिन तेरी खुशबू न गई रहा गुजर से।
4: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
7: तो बहुत मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा इतनी अच्छी शायरी हो रही है तो जिससे ये इसका प्रवीण चाकर का, वो तो खुशबू है हवा में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवा में बिखर जाएगा, मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा।
4: वाह जी वाह, क्या बात है, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा,
7: बिल्कुल। मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा, उसने खुशबू की तरह मेरी परसाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी परसाई की,
4: पजीराई की, जी
7: परसाई की। बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की। मैंने कहा आपके चेहरों पे मुस्कुराहट भी बखेर दूं ना,
4: खुशबू की तरफ पजीर आई की, ये तो रुसवाई कहां से आ गई दरमियान।
7: पैदाई की बात तो सच है लेकिन बात है, लेकिन शायरी में वजन है ना।
4: वो आगे तो नहीं, आपके मिसरे आगे पीछे हो गए हैं
7: ये, वो थोड़ा सा तो आप इतने दिनों के बाद मैं खुश हुआ हूँ और मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत पोएट्री मैं खुद भी लिखता था, मैंने जला दिया।
4: अच्छा, ओए होए होए।
7: ना, मैंने बुक्स की बुक लिखता था, मैंने सब जला दी।
4: ओए क्यों?
7: बस आपको पता है, एक दो दोस्त लेके गए कापियां, उन्होंने अपने नाम से करके अपनी किताबें बना ली, तो मैंने बाकी मैंने कहा ये किसी के हथे लग जाएंगी तो इनको आग लगा दो। तो फिर मैंने वो सब कुछ खत्म कर दिया। तो उस अदम का मैं आपको एक सुनाता हूँ। उसने कहा मुझे खरीदार चाहिए, सारे शहर के लोग खरीदार हो गए। उसने कहा मुझे एक वफादार चाहिए, सारे शहर के लोग वफादार हो गए। उसने कहा अदम आके मेरा हाथ थामना, चारों तरफ से हाथ नमूदार हो गए। किस किस का थामे।
4: बहुत अच्छे जीते रहे मोहम्मद सलीम, बहुत शुक्रिया।
7: बस है, और आपके बहुत अच्छे इंसान है, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे।
4: आमीन।
7: और आपके लिए मैं दवा गाऊं और इंशाल्लाह अब आपके प्रोग्राम में आऊंगा और अच्छे अच्छे आपको शेर सुनाऊंगा। और आप भी कहेंगे कि बहुत बेहतरीन शायरी, मतलब जो अहमद है बेहतर आपकी, जो अभी 1937 की आप बात कर रहे थे, वो मेरी आज की नौकरी पर ही तेरे लिए। तो मैं आपको पूरी ये कथा सुनाऊंगा। पहले तो मुझे जुबानी पानी की तरह याद थी, जब से मैंने वो खत्म की है ना तो फिर मैंने छोड़ दिया। चंद तस्वीरें बना, चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। तो मैंने
4: चंद तस्वीरें बुता, ठीक है ना,
7: चंद हसीनों के खतूत,
4: हाँ,
7: बाद मरने के मेरे घर से। पर उसके अलावा एक नाम क्या लिखा तेरा सहरा की रेत पर, फिरों भर हवाओं से मेरी दुश्मनी रही, लिख कर मेरा नाम जमी पे मिटा दिया, तुम्हारा तो खेल था मुझे खाक में मिला दिया। मतलब ऐसे जबरदस्त जबरदस्त शेर, जो वक्त और मौके के, जिस वो मर्दन ही जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो, उस हाल में जीना लाजिम है।
4: अच्छा मुझे अब ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं ना आपके लिए एक ना महफिल मुशायरा का ना इंतजाम करूं,
7: और जिसमें
4: जिसमें सबसे बड़ा शायर आप ही हों और आप सुनाते जाएं और हम सुनते जाएं, ऐसा ही है ना।
7: देखे वो तो डॉक्टर इकबाल साहब की मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। वो तो इकबाल है, हालात के कदमों में कलंदर नहीं झुकता, टूटे जो सितारा वो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, दरिया में मगर कोई समंदर नहीं गिरता।
4: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ओके जी, 101 FM पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन। वो सामने था मगर ये यकीन आता था, वो आप है कि मेरी ख्वाहिशों का साया है, वो आप है कि मेरी ख्वाहिशों का साया है। ओके जनाब, प्रोग्राम में शामिल है कैसरा और हुमैरा और फौजिया, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल नूर हाशमी ने हमें SMS किया है, कहते हैं कि रात यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहराओं में होले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुल नूर हाशमी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में अपना हिस्सा डाला, आपको दिल की गहराइयों से मैं वेलकम कहता हूं, और आपका मैसेज बल्कि दूसरा मैसेज हम तक पहुंचा है। और इसी तरह से हमें जनाब आपके कुछ और पैगामात मिले हैं और उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमीद गुल साहब ने लिखा है, जनाब दर्द सर है मोहब्बत वबाल है मियाँ, और ये तुम कह रहे हो कमाल है मियाँ। वाजी वाह, क्या बात है। और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में शामिल है रोज़ रिजवाना, और आपके कुछ और कमेंट्स हैं उनको भी प्रोग्राम में शामिल करूं। आरजे नायाब ने हमें मैसेज किया, सलामत रहें सर, आप सलामत रहिए, हमारी बहुत अच्छी आवाज़ है। आरजे नायाब, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखें, और इसी तरह आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होती रहें और ख़ुद भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम करती रहें। हमीद गुल साहब हमारे प्रोग्राम में फिर शामिल हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहें, गरचे कोई भी लम्हा सदा पास नहीं रहता, तुम साथ हो तो वक्त का एहसास नहीं रहता। वाजी वाह। और आरजे नायाब ने कहा कि इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, इंशाल्लाह जी ज़रूर जल्द मुलाकात होगी, अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। ताहिरा मसूद कहती है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जुगनू जूनियर ने हमें सलाम भेजा है, बहुत शुक्रिया जुगनू जूनियर आपका भी। किन्जा उस्मान हमारे प्रोग्राम में सब सुनने वालों को सलाम दे रही हैं, और इसी तरह से अरशद महमूद हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। इश्क ने कच्चे गड़े दी किस्मत, क्या लिखा आपने, डूबना की ते तरना की, सायल सचिया तेरा कासा, डुलना की ते परना की। अच्छा, मुनसिब ते गल आनड़ खलोती, आन खलोती, मुनसिफ ते गल आन खलोती, जितना की ते हरना की, सरदा साईं रुस जावे ते जीनड़ा की ते मरना की। बहुत शुक्रिया अरशद महमूद, मैं माजरत चाहता हूँ कि अगर कोई मैंने गलत पढ़ दिया तो उसके लिए आप बुरा नहीं मनाएंगे। आर के मुगल ने कहा कि वक्त की सबसे अच्छी बात यही है कि वक्त जैसा भी हो वक्त बस गुजर जाता है। बहुत शुक्रिया। और ताहिरा मसूद, वही जख्म सा वही गर सी वही दाग से, तेरा दस्त मिलता है किस कदर मेरे बाग से। अब मैं दोबारा बल्कि तीसरी दफ़ा पढ़ रहा हूँ। ओके जी, किन्जा उस्मान ने कहा, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कि सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। जुगिन जूरिया ने चाय का कप मुझे भेज दी है, ये जुल्म है यार, इस वक्त मुझे चाय का कप दिखा रहे हो, पिलाओ तो फिर मज़ा आए ना। और किन्जा उस्मान ने कहा कि इजाज़त हो तो तेरा नाम लिख लूँ, मेरे दिल का वर्क अब तक सादा है। वाजी वाह, क्या बात, ब्यूटीफुल शेर आपने भेजा। और मुझे याद आ गया जनाब, एक शेर मुझे याद आया कि कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी, कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। फैज़ का शेर है जो मैंने आपको सुनाया। अब्दुल हमीद अदम का शेर है कि हर खुश अदा की जुल्फ में अटका हुआ है दिल,
0: हर खुश अदा की जुल्फ में अटका हुआ है दिल। हमीद गुल साहब आप भी जरा सुनिएगा, तवज्जो दीजिएगा। अब्दुल हमीद अदम, हर खुश अदा की जुल्फ में अटका हुआ है दिल, हर महजुबी के हुस्न पे कुर्बान आंख है। यकीन आपको पसंद आया होगा। बासाबिश तुझे करीब समझते थे घर में बैठे हुए, तेरी तलाश में निकले तो शहर फैल गया, तेरी तलाश में निकले तो शहर फैल गया। आखिरी कॉलर, ओहो आखिरी कॉलर आए भी और चले भी गए। ओके डियर लिसनर्स, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और आखिरी कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
8: वालेकुम सलाम, आप उठाएंगे
4: जी? मैंने आपने कोई वक्फा देखा है कि मैंने दरमियान में रखा हो?
8: नहीं, मेरी 7 दफा 8 दफा कर ली, आपने उठाए ही नहीं।
4: अच्छा अच्छा, कैसी रिजवाना जी, आप खैरियत से हैं?
8: बस मैं जाग रही हूँ ना, मैंने तहज्जुद पढ़ी है, बस आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ।
4: नहीं, आपको प्रोग्राम नहीं सुनना चाहिए था, आपको तहज्जुद पढ़नी चाहिए थी।
8: बस मैंने कहा चलो आज मैं सुन लेती हूँ आपका प्रोग्राम, आप पढ़ लेती हूँ, और बहुत अच्छा, और वो दिन वाला प्रोग्राम सही होता है, आप कॉल उठा कर लेते हैं ना।
4: नहीं नहीं, अभी भी देख लिया, आपकी बात हो रही है मेरे साथ।
8: नहीं, 10 दफा मैंने मिली है आपने, 28वीं आपकी के बाद भी मिली है, वो रोजी रजवाना के बाद भी मिली है, उसके बाद भी मिली है, आपने उठाई
4: नहीं। नहीं नहीं, वो असल में मैं कुछ कर रहा हूँ ना, सुना रहा हूँ आपको, शायरी सुना।
8: हाँ जी हाँ जी,
4: चलिए बहुत शुक्रिया।
8: मैं भी करती थी तो वो आप वो दुआ आदमी है ना
4: जी,
8: उनकी वो किताब है फ्रेम से बाहर
4: जी,
8: तो वो रखी हुई है, तो वो कैसे दूँ?
4: अच्छा चले, वो आपसे फिर बात करेंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल एक एक दो मिनट रह गए हैं प्रोग्राम के, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे बात होगी ना, फिर आपसे किताब।
8: पीर वाले दिन, पीर वाले दिन आप वो अस्पताल लेते नहीं है ना आप?
4: चले फिर आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह, अभी टाइम बड़ा थोड़ा। बहुत शुक्रिया,
8: अल्लाह आपको जिंदगी दे, आपकी हालत देखे मैं जाग रही हूं।
4: आप जीती रहिए, आप खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपका बहुत शुक्रिया, आप जीती रहिए। थैंक यू वेरी,
8: बहुत बढ़िया, बहुत प्रोग्राम आप अच्छा करते हैं,
4: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़,
8: अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्त दे, खुदा हाफिज़,
4: अल्लाह हाफिज़। ओके जी, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा और यकीनन आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा, अगर कोई आपको बात अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। और प्रोग्राम के आखिर में कहूँगा कि अपने मेज़बान यानी मुझे आरजे वसीम अहमद को दो में डेढ़ दफ़ा याद रखिएगा, मैं भी आपको डेढ़ दफ़ा याद रखने की कोशिश करूँगा। कोशिश इसलिए कि कोशिश अक्सर कामयाब होती है। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। एक पल बगैर देखे उसे क्या गुजर गया, ऐसे लगा कि एक जमाना गुजर गया। सबके लिए बुलंद रहे हाथ उम्र भर, अपने लिए दुआओं का लम्हा गुजर गया। कोई हजूम दहर में करता रहा तलाश, कोई रहे हयात से तन्हा गुजर गया। मिलना तो खैर उसको नसीबों की बात है, देखे हुए भी उसको जमाना गुजर गया। बाकी बस एक नामे खुदा रह गया अदीम, सब कुछ बहा के वक्त का दरिया गुजर गया। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।